तो दोस्तों, शिव और साधना यानी शिव और शक्ति, इनका अगर हम दैनिक जीवन से जुड़ाव देखते हैं तो कैसे देखते हैं? शिव जी की साधना है शक्ति यानी माँ पार्वती। शिव जी की साधना बहुत सरल है, ना कोई दिखावा ना कोई भव्यता, बस एक सच्चा मन, थोड़ी सी श्रद्धा और एक लोटा जल। भोले बाबा तो इसी इतने में खुश हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हमें एक आत्मिक शांति मिलती है और इससे ये सीख मिलती है कि अहंकार को बहाना है और जीवन को सरल बनाना है। जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं होती। यही है शिवत्व।

अब चलते हैं उस ओर। शिव, शिव यानी ये जगत, ये विश्व, हर कहीं है शिव। और प्रकृति, प्रकृति यानी पार्वती, यानी वो शक्ति जो शिव की शक्ति कहलाती है। चलिए इन दोनों का संबंध क्या है इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। महादेव का हर रूप हमें प्रकृति से जोड़ता है। जटा में गंगा यानी कि जल का महत्व, गले में सर्प यानी कि भय पर नियंत्रण, शरीर पर भस्म यानी जीवन की सच्चाई। शिव कहते हैं प्रकृति के साथ रहो, तभी जीवन संतुलित रहेगा। बेशक अगर आज की दुनिया से इसे हम जोड़ के देखें तो आधुनिक दुनिया आजकल कहीं ना कहीं मोबाइल में ही सिमट के रह गई है, जबकि असली जीवन हमें मिलता कहाँ से है? प्रकृति से, नेचर से, इस प्रकृति की गोद से।

0: तो दोस्तों आज की पहली किरण में बस इतना ही याद रखिए, शिव बाहर नहीं आपके भीतर हैं, बस उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है। और जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं यानी शिव और शक्ति को एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। अब चलते हैं भोलेनाथ के कुछ नामों की ओर और उनका अर्थ क्या है, आखिर में इनका इतना बहुरूपी नाम क्यों है। हर नाम अपने भीतर एक गहरा अर्थ और जीवन जीने का तरीका छुपाए हुए है। चलिए आपको से रूबरू कराते हैं भोलेनाथ। भोले यानी सरल, निष्कपट भाव वाले भगवान। ये नाम हमें ये सिखाता है कि जीवन में सरल और सच्चे रहो, चालाकी से नहीं, दिल से जीने वाले ही सच्चे सुखी होते हैं। महादेव, देवों के देव, सबसे महान। महान बनने के लिए दूसरों को छोटा नहीं करना पड़ता, असली महानता विनम्रता और सेवा में है। नीलकंठ, जिसने विष को अपने गले में धारण किया, जीवन की नकारात्मकता को अंदर रोककर दूसरों तक ना फैलाना, ये है नीलकंठधारी का असली मतलब। हर कड़वाहट को सहन करना और सकारात्मकता में बदलना। योगेश्वर, योग के स्वामी, ध्यान के देवता। रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालना, मन को शांत रखकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्वरूप अगर आज के दौर की बात करें तो उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालें और अपने मन को उस ओर अग्रसर करें जहां आपके मन को शांति की प्राप्ति हो। रुद्र, क्रोध और विनाश के देव। क्रोध बुरा नहीं होता दोस्तों, अगर वो अन्याय के खिलाफ हो। गलत के खिलाफ खड़े होना भी जरूरी है। चंद्रशेखर, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, जीवन में शांति और संतुलन रहना जरूरी है। तो ये गुण सीखते हैं हम भोलेनाथ के चंद्रशेखर स्वरूप से। पशुपतिनाथ, सभी जीवों के स्वामी, हर जीव के प्रति दया और प्रेम रखना, प्रकृति और जीव जंतु का सम्मान करना। शिव के हर नाम में एक सीख छुपी है, अगर हम इन नामों को केवल जपने के बजाय जीने लग जाएं तो हमारा जीवन शिवमय हो जाएगा।
1: सम्मान करो इसका, शुक्र करो, क्योंकि प्यार
2: से खूबसूरत कुछ भी नहीं है इस दुनिया में।

दोस्तों, शिव पूजन में वेल पत्र का विशेष स्थान है। इसके पीछे एक सुंदर भावपूर्ण कथा जुड़ी है, माता पार्वती और भगवान शिव की। मान्यता है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब उन्होंने जंगल में रहकर अत्यंत सरल जीवन अपनाया। तब के दौरान वे अक्सर बेल यानी बिल्व वृक्ष के नीचे ध्यान करती थी। कहा जाता है कि पार्वती जी के तप, पसीने और तप ऊर्जा से वेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस वृक्ष में देवी का अंश माना गया। जब शिव जी पार्वती जी से प्रसन्न हुए तो उन्होंने इस वृक्ष को वरदान दिया, जो भी मुझे वेल पत्र अर्पित करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। वेल पत्र की तीन पत्तियां दर्शाती हैं कि वेल पत्र आमतौर पर तीन पत्रियों वाला यानी त्रिपत्र वाला होता है, जो बहुत गहरा संदेश देता है। पहला त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, दूसरा त्रिगुण सत्व रज तम। ये तीनों ही गुण हम इंसानों में यानी आप सभी में और हम में पाए जाते हैं। जो जैसा कर्तव्य करता है यानी जिसके जो कर्म होते हैं उसी हिसाब से उसके ये गुण उसमें निहित माने जाते हैं। त्रिशक्ति यानी इच्छा ज्ञान और क्रिया। और एक और सुंदर भाव, ये तीन पत्तियां शिव शक्ति जीव के मिलन का प्रतीक भी मानी जाती हैं। बेलपत्र की शीतल प्रकृति शिव के उग्र रूप को शांत करती है। ये सरलता और पवित्रता का प्रतीक है जो शिव को सबसे अधिक प्रिय है। पार्वती जी का अंश होने के कारण ये शिव शक्ति का मिलन दर्शाता है। शिव को बेलपत्र इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें प्रेम, तप और समर्पण छुपा है। अगर हम भी अपने कर्मों में सरलता, शुद्धता और सच्चा भाव जोड़ दें तो हमारा हर काम भी भगवान को अर्पण हो जाएगा।

दोस्तों, आपने कभी एक बात पे गौर फरमाया है? हो सकता है आपने नहीं गौर फरमाया हो, तो चलिए मैं आपको उस ओर लेके चलती हूँ। कभी आपने देखा है कि जो हमारा शिव परिवार है, यानी माता पार्वती, भोलेनाथ, कुमार कार्तिकेय और हमारे गोलू मटोलू जी, यानी कि हमारे गणपति जी, इन सभी की सवारी पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक दूसरे के कहीं ना कहीं दुश्मन पक्ष माने जाते हैं। जैसे कि माता रानी यानी पार्वती जी का जो वाहन है वो है सिंह, और वहीं पे अगर हम भोलेनाथ की बात करते हैं तो उनका जो सवारी है वो है वृषभ, और वहीं पे दूसरी ओर देखें यानी उनकी सवारी मूषक, और कुमार कार्तिकी उनकी सवारी मयूर यानी मोर। ये सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपक्ष को दर्शाते हैं, पर इससे जो शिक्षा निकल के आती है वो ये है कि हम कहीं भी रहें, कैसे भी समाज में रहें, हमें कैसे रहना है, शांत होकर रहना है। हमें अगर हमारा उग्र स्वरूप भी है तो वो नहीं दर्शाना है, क्योंकि शांति ही वो चीज़ है जो हमारे जीवन को सरल बनाती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उम्मीद है कि इस छोटी सी बात से आपको आज बहुत बड़ी वाली सीख मिली होगी।

श्रोताओं, शिव शब्द आखिर में क्या क्या समाहित करके रखता है, चलिए आपसे इस पे भी बात करते हैं। शिव एक छोटा सा शब्द नहीं, बल्कि इसका अर्थ असीमित है। संस्कृत में शिव का मूल अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभ, यानी जो हर स्थिति में भलाई, संतुलन और शांति लाए, वही शिव है। आदि अनादि की बात करें तो आदि यानी शुरुआत, जब सृष्टि का कोई रूप नहीं था, तब भी जो शुद्ध चेतना थी वो थी शिव, अनादि जिसका आरंभ ना हो। शिव समय, जन्म और मृत्यु से परे हैं, एक सनातन सत्ता, इसीलिए शायद सनातन हमारे धर्म को कहा जाता है, क्योंकि शिव इन सभी से परे हैं, यानी कि मृत्यु और जन्म के उस पार। इसलिए शिव केवल देवता नहीं, बल्कि अस्तित्व की मूल चेतना है। वैदिक और उपनिषद की दृष्टि की अगर बात करें तो वैदिक ग्रंथों में शिव का संबंध रुद्र से मिलता है, जो विनाशक नहीं बल्कि रक्षक और परिवर्तक है। उपनिषदों में शिव का भाव ब्रह्म यानी अल्टीमेट रियलिटी से जुड़ा हुआ माना जाता है। मतलब साफ है, जो सब में है, सबके परे है और सबको जोड़ता है, वही शिव है।

दोस्तों, अब मैं दर्शन शास्त्र की बात करती और वहाँ पे शिव शब्द का क्या महत्व है आपको समझाती। भारतीय दर्शन में शिव को अलग अलग रूपों में समझा गया। अद्वैत दर्शन, शिव यानी ब्रह्म यानी आत्मा, यानी मैं और ईश्वर अलग नहीं है, ये दोनों ही एक हैं, यानी के आप और आपकी आत्मा और उसमें ईश्वर का जुड़ाव, सभी एक हैं। कश्मीर शैव दर्शन की बात करें तो शिव यानी चेतना, शक्ति यानी उसकी ऊर्जा। बात साफ है कि शिव माने भोलेनाथ और शक्ति माने माता पार्वती, यानी जो लोग चेतना में हैं उनकी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, उन्हें शक्ति से। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं और शक्ति बिना शिव के अस्तित्वहीन है। यानी जब हम स्त्री और पुरुष की बात करते हैं तो जब तक दोनों एक साथ नहीं होते तो होते तो हैं लेकिन अस्तित्व विहीन होते हैं। होते तो हैं लेकिन उनमें चेतना पूरी नहीं मानी जाती है। हम होते तो हैं पर हमारी ऊर्जा में कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है। अब तंत्र दर्शन की बात करें तो शिव यानी शुद्ध साक्षी, ध्यान और जागरूकता का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है शिव को। शिव का रूप हमेशा सामाजिक संतुलन सिखाता है। भस्म रमाए साधारण वेश सिखाता है कि सादगी से जीवन कैसे यापन करें। गली में सर्प सिखाता है कि भय और बाकी चीजों पर कैसे नियंत्रण प्राप्त करें। नंदी, गंगा, चंद्रमा यानी प्रकृति से सह अस्तित्व, ये हमारे प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाते हैं। शिव समाज को बताते हैं ऊंच नीच, अमीर गरीब सब एक समान है। आधुनिक युग में अगर शिव के अर्थ की बात करें तो आज के समय में

तो दोस्तों आज की पहली किरण यहीं समेटते हैं, जहां हर बात में था शिव का अर्थ, एक एहसास में था शिव का स्पर्श। याद रखिए, शिव कोई दूर बैठे देव नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति, संतुलन और सच्चाई का नाम है। जब भी जीवन में शोर बढ़े तो ओम नमः शिवाय की एक धीमी धुन से अपने मन को फिर से शांत कर लीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी हर सुबह शिवमय हो, शुभमय हो, मंगलमय हो। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी कि आरजी आकांक्षा अब लेती हूँ आप सभी से इजाजत। फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट वाले रेडियो चैनल यानी कि रेडियो यानिसली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन के साथ पहली किरण की अगली सुबह के साथ। हर हर महादेव।

के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853346।

हैप्पी हैप्पी हैप्पी। अब आप समझ पा रहे हैं कि आखिर हम किस चीज़ को इतना ज़्यादा हैप्पी हैप्पी बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स आप समझ रहे हैं, क्योंकि आपने भी देख ली है आज की सुबह सुबह हुई बारिश को। इवन सुबह सुबह क्या, काफ़ी देर तक बारिश हुई, और जिसने देखा उसने पा लिया इस सीज़न की लाजवाब बारिश। क्योंकि आज जिस तरह आज गोंडा में पानी बरसा, ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़माने बाद किसी की गई दुआ जो है वो कबूल हुई है। सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉ का आरजे अदनान, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा, शहर की धड़कन। और आइए इस सॉन्ग को मुकम्मल सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, देन बताते हैं क्या है आज का थॉट ऑफ द डे।

0: जी। सो भाई बारिश ने दस्तक दी, और न सिर्फ दस्तक दी बल्कि उसने ये भी चाहा कि आप उसका वेलकम करें। वेलकम कैसे होगा ऐसी लेटे लेटे? ना बाबा ना, उठ जाइए, इतनी खूबसूरत सी बारिश ने जो मौसम बनाया है भाई साहब, ये कोई बहुत बड़ा कलाकार जब कैनवस पर अपने रंग बिखेरता है तो ऐसे बदरा छाते हैं। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening Good Morning Gonda with your favorite आरजे अदनान।

इतने रोमांटिक से मौसम में आखिर होने क्या वाला है आज का सुविचार, आज का ऐसा विचार जो आज के दिन में कुछ अलगपन घोलेगा और ले बढ़ चलेगा आगे की ओर। सो आज का थॉट कहता है, आपको सच ढूंढना है और सच सिर्फ इतना ही है कि आप जहां हैं, जो कर रहे हैं, उसमें संतुष्ट हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आपको कोशिश करना है, आपको धैर्य रखना है और कुछ सीमाओं को स्वीकार करना है और फिर उन्हें तोड़ना है। कितनी खूबसूरत बात कही है इस थॉट ने। क्या है, हमको सिर्फ एक सच ढूंढना है। कैसा सच? सच बस इतना कि इस वक्त हम जहां हैं, हम जो कर रहे हैं, उसमें हम संतुष्ट हैं या नहीं। यानी हम जो कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं। अगर नहीं है तो कोशिश करना है सेटिस्फाइड होने की, सब्र रखना है, कुछ सीमाओं को स्वीकार करना है, कुछ बाउंड्रीज को एक्सेप्ट करना है और फिर उन्हें तोड़ना है। तो पहले तो जिस जगह और जो हैं और जैसे हैं, इस पे ध्यान देना ही होगा, इसके बिना बात ही नहीं होगी कोई दूसरी। क्योंकि यार, हमने हमेशा ये कहा है, लाइफ किसी बीते हुए साल में, सन में या आने वाले एक दौर में नहीं है, लाइफ आज है, अभी में है। और हर किसी को लगता है आने वाला ऐसा होगा, बीत चुका ऐसा रहा है, बेशक अलग रहा है, लेकिन हर वर्तमान में यानी किसी भी जमाने में चले जाए, इंसान को लगता था कि उसके आने के बाद ऐसा होगा, उससे पहले ऐसा रह चुका है। और आज जो हमारा वर्तमान है, कल कदार जब हम बहुत आगे बढ़ के देखेंगे तो आज का ये एक दौर होगा। इसीलिए इस दौर की इम्पोर्टेंस को कल सोचने से कहीं ज़्यादा आज महसूस करना ज़रूरी है। और आज जो हैं जैसे हैं आप, सच यही है। और आपको बस इतना ही देखना है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है। होने की कोशिश करना है, थोड़ा सा सब्र रखना है और अपनी कुछ सीमाओं को स्वीकार कर लेना है और फिर उन्हें तोड़ना है। सो यही है आज का थॉट ऑफ द डे और यही है पैगाम। इतनी सारी शिद्दत की गर्मी पड़ने के बाद, जब लगा था बिल्कुल भी बारिश नहीं हो सकती है, तब देखिए किस तरह से बारिश ने दस्तक दे दी, किस तरह से अचानक से मौसम बदल गया। सो बस यही है वर्तमान, आप जहां हैं जैसे हैं, दिस इज योर लाइफ। सो कैसा लगा आज का थॉट ऑफ द डे? कोई बात नहीं, मन में जरूर सोच लिए, मुझे लगता है आज का थॉट बहुत प्यारा है। अब आपको कैसा लगा ये आप जरा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बाद महसूस कर सकते हैं।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं,
2: तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम।
1: अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग।
2: तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM।
3: सो भाई इसी के साथ ही साथ, चूंकि मौसम की तो मेहरबानी लगातार हो गई है और चलती भी रहने वाली, ये सबसे खूबसूरत बात है आज की। लेकिन इसके अलावा आपको ये तो बता दें कि भाई शहर में आखिर क्या कुछ चल रहा है, जो कि हम बताने वाले हैं आपको आपकी सिटी अपडेट में। सो आर यू रेडी फॉर सिटी अपडेट्स? ऑफकोर्स यू आर ऑलवेज रेडी फॉर सिटी अपडेट्स Only on Radio Gyanasthali 89.6 FM.
4: Now you're listening Good Morning Kota with your favorite RJ Khan.

सो आज आपको अपनी सिटी की अपडेट्स तो मिलेगी, लेकिन साथ में कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिससे कि आप भी सतर्क हो जाएं। सबसे पहले तो हम बता दें, जैसा कि गर्मी से राहत मिलने की बात है, हालांकि काफ़ी भारी बारिश हुई है, लेकिन इससे ये हुए कि कई जगह जो पेड़ थे वो हाई टेंशन लाइन पर गिर गए, जिसकी वजह से कई जगह जो विद्युत की आपूर्ति है यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, और कई सारे उपकेंद्रों से फॉल्ट होने की वजह से घंटों जो है वो सप्लाई नहीं हो सकी है। एंड इसके अलावा आपको हम बता दें कि इस वक्त आपको बहुत आराम से चलना होगा, लगातार हो रही बारिश से कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ पे क्या रिस्क है, और ऐसे खंभों से या अगर टूटे पड़े तार हैं तो उनसे आपको बचना ही होगा, क्योंकि अभी 4 मवेशी टूटे तार में आकर के उनकी मौत हो गई। इसलिए कहीं ना कहीं जब हम रास्तों से निकल रहे हों ऐसे वक्त में, स्पेशली कहीं पे भी रोड्स पर हों और देखें कहीं कोई तार गिरा पड़ा है, तो काफ़ी सतर्कता के साथ में गुजरें। जहाँ गड्ढा है उसका अंदाज़ा अगर नहीं है तो उस रास्ते को आप चेंज कर दें, और जहाँ पर अंदाज़ा है उस हिसाब से आप बहुत ईजीली वहाँ से धीरे धीरे करके निकलें। इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस और परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान कार्रवाई की है। सो कल मंडे को अभियान के दौरान बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस, बिना HSRP, बिना बीमा और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर 155 वाहनों का चालान किया है, और अनियमितता मिलने पर 16 वाहनों को सीज कर भी दिया है। ARTO RC भारती ने बताया कि भाई संयुक्त अभियान में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के 12, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 45, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने पर 24, फेल परमिट के 1, बिना बीमा के 18, शराब पीकर वाहन चलाने के 1 और बिना हेलमेट के 54 चालान किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन ना दिखाने वाले 16 वाहनों को सीज कर लिया गया है। सो फिलहाल लगातार अभियान चलाया जाता रहा, और हम आपसे अपील करते हैं कि भाई ट्रैफिक नियमों का पालन करते करते आपने गाड़ी का बीमा ज़रूर रखे, प्रदूषण बना कर रखे, निकलने से पहले हेलमेट का इस्तेमाल करें, और रजिस्ट्रेशन होना तो बहुत ज़्यादा मस्ट है। इसके अलावा शराब पीकर तो गाड़ी बिल्कुल भी ना चलाएं, और नाबालिगों को गाड़ी बिल्कुल भी ना दें। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट्स की तरफ। अगली जो अपडेट है वो एक घटना है जो कि आपको बताना है, इसलिए ज़रूरी है कि आपके साथ ऐसी घटना ना हो। सो फिलहाल सोलर सिस्टम का जो उसकी फ्रेंचाइजी है उसका झांसा दे करके 6,50,000 रुपये लूटे गए हैं। सो आपको बता दें कि सोलर सिस्टम की फ्रेंचाइजी दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने, यानी ये ऑनलाइन ठगी की गई है, करनैलगंज के, यानी गोंडा का ही करनैलगंज एरिया है, वहाँ से एक शख्स से 6,50,000 यानी 6.5 लाख रुपए ठग लिए हैं। ठगों ने एक सोलर कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बता करके ईमेल और मोबाइल से कॉन्टैक्ट किया, और इसके अलावा नियुक्ति दस्तावेज, सत्यापन, रजिस्ट्रेशन और एग्रीमेंट का जो प्रोसेस है इसका भरोसा दिलाकर कई बार बैंक खातों में रकम जमा कराई। जब ठगी का एहसास हुआ तो पीड़ित ने राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन जो 1930 है इस पर शिकायत दर्ज कराई। सो करनैलगंज के ही निवासी अरविंद कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि सोशल मीडिया पर उसे टाटा सोलर सिस्टम्स की फ्रेंचाइजी से रिलेटेड एक विज्ञापन दिखाई दिया था। उसने अपनी वाइफ के नाम से फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई किया, और पीड़ित के हिसाब से इसके बाद 2 मोबाइल नंबर से कॉन्टैक्ट करने वालों ने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव बताते हुए रजिस्ट्रेशन शुल्क, प्रोसेसिंग फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट और बाकी जो औपचारिकताएं हैं उसके नाम पर अलग अलग बैंक खातों में ऑनलाइन भुगतान से कुल 6.5 लाख रुपए, 200 रुपए का ट्रांसफ़र कराए। जब फ्रेंचाइजी नहीं मिली तो ठगी का एहसास हुआ। सो नौकरी या फ्रेंचाइजी के नाम पर कोई पैसा मांगे तो आपको सतर्क हो जाना है। जो हमारे साइबर विशेषज्ञ हैं यानी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी भी कंपनी में नौकरी, डीलरशिप या फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर अगर रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, प्रोसेसिंग कोई फीस या कोई भी मद में पहले ही भुगतान करने के लिए मांगा जाता है तो आप अलर्ट हो जाइए, और तत्काल आप 1930 यानी 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत करिए। यूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आपको भी कोई नौकरी का या कोई कंपनी की फ्रेंचाइजी का या फिर इस तरह से कोई भी ऐसे
औपचारिकताओं के लिए, फॉर्मेलिटीज के लिए पहले ही भुगतान मांगता है कोई ऑनलाइन, तो आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, नहीं तो कहीं ना कहीं साइबर ठगी का शिकार आप भी हो सकते हैं। इसलिए आपको बताया जा रहा कि ये गोंडा के ही करनैलगंज का मामला है। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली जो अपडेट्स आ रही है वो आ रही है विधिक साक्षरता शिविर को लेकर के। सुबह 11 बजे से रुपैडी के मल्लापुर में मौजूद चंद्रभान मेमोरियल इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाने वाला। इसके अलावा सुबह 11 बजे ही आवास विकास कॉलोनी में संचारी रोगों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सो ये बहुत कुछ ज़रूरी अपडेट्स थी जो कि हमने आपको बता दिया, एंड आई होप कि भाई आप तक ये अपडेट्स पहुंच गई है और कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये अब बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे जो भी शहर या उससे जुड़ी हुई होगी या जो भी आपके काम की होगी, जनहित की होगी, वो ज़रूर आप तक मिलती रहेगी ताकि आप तक ये सारी बातें पहुँचती रहें। सो फिलहाल अब वक्त है अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ बढ़ने का, और उसके बाद फिर वापस आएंगे। वापस आएंगे तो कहानी कोई एक नहीं है, बहुत सारी है। जी हाँ, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि यार हमारे पास क्या होता है, बातें ही होती है, और कहते हैं कि बात ही बात में बहुत कुछ आपका सॉल्व हो जाता है, और ये बात बिल्कुल सच है, एकदम 100% सच है, क्योंकि ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ों का जो हल है वो बातों से ही निकलता है। सो फिलहाल आइए इन्हीं बातों के दरमियान चलते हैं और बहुत सारी नई चीज़ें लेकर के आपके लिए हाजिर होते हैं। फिलहाल आप बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में अपने मॉर्निंग जॉक आरजेतान के साथ, और साथ ही साथ मौसम है, मॉर्निंग है, टाइम है ऐसा, सुबह ही आपको मिलता रहेगा रोमांटिक सॉन्ग्स का डोज, कहाँ, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, आपके रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर, आपके अपने मॉर्निंग चॉक आरजे अदनान के संग। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़का।

सो भाई काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं और ये बताते हैं क्या कुछ लिखा है आपने। सो आशु जी लिखती हैं, क्या खूब लिखा है, परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं, चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, जी और जीना सिखा दो। क्या बात है, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपको भी सुप्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बताया कि लखनऊ का मौसम बहुत अच्छा है, सो आपको हम इन्फॉर्मेशन दे दें कि भाई गोंडा से ही बादल होके गए हैं, पहले इधर ही इसी डायरेक्शन में आए थे। सो गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, हर जगह का मौसम बहुत अच्छा है। एंड यस, हम सभी लोग जुड़ गए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। इसके अलावा आशु जी ने लिखा है, वेरी नाइस थॉट सर, सुपर से भी ऊपर आज का थॉट, थैंक यू सो मच कि आपको आज का थॉट बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड साथ ही साथ अनुष्का जी फ्रॉम श्रावस्ती, आप लिखती हैं, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू। भाई मौसम जब अच्छा हो तो आप हमको पहले ही पूछने से पहले अंदाज़ा लगा लीजिए कि हाँ बंदा अच्छा फील कर रहा होगा, क्योंकि ये होता है। मेरे साथ में ये है कि भाई जब मौसम बहुत बढ़िया होता है तो हम सच में काफ़ी ज़्यादा बेहतर पहले से ही फील कर रहे होते हैं, और यही वजह है कि आज का मौसम देखने के बाद मुझे लगा, अरे है क्या बात है भाई, इतना बेहतरीन, लाजवाब, शानदार सा मौसम है। सो जाहिर सी बात है आज हम भी बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है। सो चलिए इसी मस्ती में ले चलते हैं आपको, ज़बरदस्त ज़बरदस्त सॉन्ग्स सुनाते हैं। वापस से आने के बाद कुछ ख़ास बात है जो आप तक पहुंचानी है, इसलिए बने रहिए आप अपने मॉर्निंग वाले शो में विद योर मॉर्निंग चॉक, आर जे अदनान, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
0: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वेलकम करते हैं और इस वक्त फ्रीक्वेंसी पर जुड़े, रेडियो गार्डन पर जुड़े और रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम पर जुड़े अभी अभी श्रोताओं का भी हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। सो चलिए आपको एक बहुत ज़बरदस्त फीचर बताने वाले हैं जो कि व्हाट्सएप लेकर के आया है। अभी तक क्या प्रॉब्लम होती है कि भाई व्हाट्सएप पे अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो आपका नंबर देना पड़ता है और समटाइम्स आप नहीं चाहते कि भाई नंबर दिया जाए, क्योंकि अगर नंबर देंगे तो सामने वाला हो सकता हो ऐसे काफ़ी पकाने वाला हो, या आपको लगता है डर कि नहीं नंबर और जगह लिंक्ड है इसका भी कोई मिसयूज़ ना हो। सो कोई बात नहीं, फिलहाल यूज़र्स की प्राइवेसी को और बढ़ाते हुए व्हाट्सएप लॉन्च कर रहा है यूज़र नेम फीचर। जी हाँ, यूज़र नेम फीचर है क्या ये आपको बताते हैं विस्तार से और इससे किस तरह से आपकी प्राइवेसी और बढ़ेगी और अब बिना कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए भी लोग व्हाट्सएप पर चैट कर सकेंगे।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite, RJ Khan.

सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं बता दीजिए। हाँ आप ज़रा अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, उसमें हम बता देंगे। सर वो फाइल चाहिए थी पीडीएफ में। हाँ अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करिए, हम बताते हैं। अरे वो डॉक्यूमेंट्स भी तो भेजना है। हाँ अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करिए, हम देते। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप ऐसा होता है जिसमें आपको नंबर को एक्सचेंज करना पड़ता है, यानी अपना नंबर देना पड़ता है, सामने वाले का नंबर सेव करना पड़ता है, फिर जब दोनों तरफ से हो जाता है फिर आप चैट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कंसर्न होता है कि यार हर शख्स को अगर मान लीजिए नंबर भी ना देना पड़े और चैट हो जाए। आप कहेंगे क्या नामुमकिन बात कर रहे हैं। हाँ अभी तक तो ये नामुमकिन थी, लेकिन अब इसे मुमकिन खुद बना रहा है व्हाट्सएप। जी हाँ, यानी कि व्हाट्सएप ऐसा फीचर ला रहा है जिसमें बिना मोबाइल नंबर बताए बातचीत भी कर सकेंगे, और ये रिजर्वेशन जो है कल से चालू हो गया है यूज़र नेम्स का। सो आपको बता दें कि एक्चुअल में बात क्या है। बात यह कि अब तक व्हाट्सएप पर किसी भी नए इंसान से बात करने के लिए अपना मोबाइल नंबर देना ज़रूरी होता था, लेकिन फ़िलहाल अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेटा के जो मालिक हैं उनकी कंपनी ने व्हाट्सएप ने यूज़र नेम फीचर लॉन्च करने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब अपना मोबाइल नंबर बिना बताए सिर्फ यूज़र नेम के ज़रिए भी आप चैट कर सकेंगे। सो कंपनी ने 29 जून से दुनिया भर के यानी कल से यूज़र नेम रिजर्वेशन शुरू कर दिए हैं। हालांकि ये फैसिलिटी सभी यूज़र्स को एक साथ नहीं मिलेगी, आने वाले कुछ महीनों में से धीरे धीरे सभी देशों में रोल आउट किया जाएगा। जब ये फीचर आपके इलाके में अवेलेबल होगा तब व्हाट्सएप के अंदर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सो व्हाट्सएप के CEO कुणाल शाह ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि फीचर सार्वजनिक होने से पहले ही यूज़र नेम रिजर्व कर लिया है। उन्होंने लोगों से वे जल्द अपना पसंदीदा यूज़र नेम लेने की भी अपील कर ली है। सो अब यूज़र नेम से जुड़े कुछ सवाल हैं कि आखिर व्हाट्सएप यूज़र नेम फीचर क्यों ला रहा है। सो व्हाट्सएप का कहना है कि कई बार लोगों को किसी नए इंसान से बातचीत करना चाहते हैं लेकिन अपना मोबाइल नंबर शेयर नहीं करना चाहते हैं, जैसे किसी नेटवर्किंग इवेंट में मिले कोई इंसान, कोई नए क्लासमेट, पड़ोसी, बच्चे, स्कूल स्पोर्ट्स ग्रुप या दूसरे पेरेंट्स से बात करने के वक्त प्राइवेसी बनाए रखना भी ज़रूरी होता है। ऐसे में अब मोबाइल नंबर की जगह सिर्फ यूज़र नेम शेयर किया जा सकता है। सो यूज़र नेम बनाने के नियम क्या है। यूज़र नेम जो है वो 3 कैरेक्टर से 35 कैरेक्टर यानी 3 to 35 कैरेक्टर्स का होगा। इसमें सिर्फ A to Z यानी अंग्रेज़ी के छोटे अक्षर और 0 to 9 अंक यानी डॉट और अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। हर यूज़र नेम पूरी तरह से यूनिक होगा, ज़रूरत पड़ने पर इसे बदला, हटाया या अपडेट किया जा सकेगा। तीसरी बात आती है, क्या मोबाइल नंबर पूरी तरह छिप जाएगा। भाई सवाल तो वाजिब है कि अगर हम यूज़र नेम का यूज़ कर रहे हैं तो क्या मोबाइल नंबर नहीं दिखेगा। तो हाँ बिल्कुल सही आपने सोचा, मोबाइल नंबर नहीं दिखेगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो पहली बार उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आपने यूज़र नेम सेट किया है तो नया इंसान आपका मोबाइल नंबर नहीं देख पाएगा। हालांकि व्हाट्सएप अकाउंट बनाने और इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल नंबर को पहले की तरह ही ज़रूरी रहेगा। सो जिन लोगों के पास पहले से आपका नंबर सेव है

वो पहले की तरह ही आपसे चैट कर सकेंगे। सो आता है सवाल अगला कि क्या कोई भी यूज़र नेम सर्च करके मुझे ढूंढ सकेगा? ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप कोई सार्वजनिक यूज़र नेम डायरेक्टरी नहीं बनाएगा, कंपनी किसी दूसरे यूज़र को आपका यूज़र नेम सजेस्ट भी नहीं करेगी। कोई भी इंसान तभी आपको मैसेज भेज सकेगा जब उसे आपका सही यूज़र नेम पता होगा, राइट? सो यूज़र नेम की क्या है? व्हाट्सएप यूज़र नेम नाम का एक नया ऑप्शन सुरक्षा फीचर ला रहा है। अगर यूज़र इसे चालू करता है तो पहली बार मैसेज भेजने वाले इंसान को ये की दर्ज करनी होगी, इसके बाद ही चैट शुरू हो सकेगी। यूज़र जब चाहे इस की को बदल भी सकेंगे। इसका उद्देश्य स्पैम और अनचाहे मैसेजेस को कम करना होगा। सो बात आती है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज़र नेम का क्या होगा? सो क्रिएटर्स, बिजनेस और संस्थाएं जहां संभव होगा अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे यूज़र नेम व्हाट्सएप पर भी ले सकेंगी। सो मशहूर हस्तियों और बड़े ब्रांड्स के कुछ यूज़र नेम पहले से ही रिजर्व्ड रखे जाएंगे ताकि कोई फर्जी अकाउंट बनाकर उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल ना कर सके। सो बात आती है कि भाई पुराने चैट्स और कॉन्टैक्ट्स पर क्या कोई इसका असर पड़ेगा? सो मौजूदा चैट, कॉन्टैक्ट और ग्रुप पहले की तरह ही काम करेंगे। जिन लोगों के पास पहले से आपका नंबर है उनके लिए कुछ नहीं बदलेगा और एंड टू एंड एनक्रिप्शन, ब्लॉक रिपोर्ट जैसे सभी सुरक्षा फीचर्स पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। फिर एक और सवाल आता है कि इस फीचर का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? सो नए लोगों से बात करने के लिए मोबाइल नंबर शेयर नहीं करना पड़ेगा। यूज़र्स की प्राइवेसी पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। स्पैम और अनचाहे मैसेजेस कम करने में मदद मिलेगी। क्रिएटर्स और बिजनेस के लिए मेटा के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक जैसी डिजिटल पहचान बनाए रखना आसान होगा। सो ये है व्हाट्सएप का यूज़र नेम फीचर, जिसमें आप बिना मोबाइल नंबर शेयर किए हुए आप कहीं ना कहीं यूज़र नेम के ज़रिए नए पर्सन से चैट कर सकेंगे जब आप चाहेंगे तो। सो फिलहाल किस तरह से कर सकते हैं? अभी चूंकि कल ही से आपका नया यूज़र नेम आप सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ही के सेम नाम का कोई और बना लेगा बिल्कुल एग्जैक्ट तो वो दूसरा नहीं लेगा, जैसा कि आपको पता है बाकी जगह भी यही होता है यूज़र नेम के साथ में। सो ये यूनिक यूज़र नेम कल से रिजर्व किए जा रहे हैं, आप भी इसको रिजर्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये तो हम इस म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार आ करके बताने वाले हैं, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी प्राइवेसी बरकरार रहे, आपको भी कोई नया पर्सन जुड़ तो जाए लेकिन आपके मोबाइल नंबर तक जब तक आप ना चाहें तब तक ना पहुंचे, तो उसके लिए आखिर कैसे इस फीचर को अपडेट कर सकते हैं और कैसे नया यूज़र नेम रिजर्व कर सकते हैं बताते हैं।

0: तो बच्चों,
1: जी मैडम,
0: पेपर में केवल दो ही दिन बच गए हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या?
2: तुम पूछो।
1: जी मैम, ये पूछेंगी।
2: मैम, एक चीज पूछना था।
0: हाँ तो बेटा, जल्दी पूछ लो।
2: ये जो पर्चे है ना, अरे क्वेश्चन पेपर,
0: हाँ,
2: ये किस प्रेस में छप रहे हैं?
3: अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली, हर शाम 5 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

इरादों में तो फिलहाल अभी जो है वो एक ऐसी मूवी है जिसका इंतजार न जाने कितने सारे यंगस्टर्स इवन और भी लोग कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसी कौन सी बॉलीवुड की मूवी है जो कि 19 साल बाद वापस आ रही है अपने पार्ट टू में और जिसका इंतज़ार कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से है। इवन मुझे खुद ये इतना इंतज़ार है कि भाई जिस दिन ये आएगी उसके बाद ही हम भी जा करके पहुंच करके देखने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। ऐसे कौन सी मूवी है जो कि फर्स्ट पार्ट इसका बहुत बढ़िया चला था, इसके सारे के सारे सॉन्ग्स सुपर डुपर हिट गए थे और आज जब ये टू पार्ट में आ रही है यानी पार्ट सेकंड को साथ ला रही है, वापस से आ रही है, तो आखिर इस मूवी का नाम क्या है जिसका इंतज़ार 11 मुल्कों की पुलिस तो नहीं लेकिन इस मुल्क की जनता जरूर कर रही है। फिलहाल आप जब तक सोचिए, हम लौटते हैं जस्ट गाने की उस पार।

0: सो भाई फाइनली ये मूवी जो है बॉलीवुड की जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिसको लेकर मैंने कहा था कि 19 साल बाद आ रही मूवी, 19 साल बाद नए अंदाज में ये मूवी आ रही है और इसका इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ बॉलीवुड। जी हाँ, सो बॉलीवुड की इस टाइम ये मोस्ट अवेटेड मूवी बन चुकी है और काफ़ी सारे लोग दीवाने हुए जा रहे हैं भाई इस मूवी को देखने के लिए। आखिर ये मूवी है कौन?
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

एक गाना याद आ रहा है, आवारापन बंजारापन, लेकिन ये गाने में एक नाम है। जी हाँ, इसी गाने में एक ऐसा नाम है जो कि मोस्ट अवेटेड मूवी बन गया है। ऑब्वियस सी बात है, आपने शायद अंदाजा लगा लिया हो, मैं बात कर रहा हूँ आवारापन 2 मूवी की। सो आवारापन 2000, आज से अगर 19 साल पहले देखे तो फिर 19 साल पहले ये मूवी आई थी, और कहीं ना कहीं आज इस मूवी को हम दोबारा देखने वाले हैं। सो टीज़र इसका आ गया है, आउट हो गया है, और इस टीज़र में इमरान हाशमी को एक्शन करते हुए चूँकि दिखाया गया है, दिशा पाटनी भी नज़र आ रही हैं। टीज़र साझा करते हुए जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने लिखा है कि 19 साल का इंतज़ार अब ख़त्म हुआ, शिवम वापस आ गया है, आपने अब तक कहानी को ज़िंदा रखा, अब इसे आगे बढ़ाने का वक्त है। फिल्म में एक बार फिर से इमरान हाशमी शिवम के किरदार में नज़र आएंगे, वहीं पिछली बार जहां आशुतोष राणा ने विलेन का किरदार निभाया था, इस बार यह किरदार दिग्गज अभिनेत्री शबाना आज़मी निभाएंगी। सो आपको बता दें कि आवारापन 2 14 अगस्त 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज़ हो रही है, यानी कि अब जो अगला मंथ आ रहा है जुलाई, उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है अगस्त, सो 14 अगस्त को रिलीज़ हो रही है सिनेमा घरों में आवारापन 2 मूवी, एंड मोस्ट अवेटेड मूवी बन गई है। चूँकि जैसा कि बताया था कि भाई बहुत सारे लोगों का इसका इंतज़ार था, एंड फाइनली इसका टीज़र आ गया है, और टीज़र आने के बाद जो है वो कहता है ना कि भाई जो नीचे बैठ गया था तल पर, वो अब वापस से ऊपर आ रहा है। सो जो इंतज़ार की घड़ियाँ थी, जैसे जैसे ये 14 अगस्त करीब आ रही है, वैसे वैसे इंतज़ार की घड़ियाँ और भी ज़्यादा टफ़ लग रही हैं। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं इस मूवी को देखने का सच में जुनून तो है, और हो सकता है इस बार काफ़ी कुछ अलग होने वाला हो, क्योंकि कैरेक्टर्स बदले हैं इमरान हाशमी के अलावा। जो विलेन का किरदार है, जैसा कि बताया कि भाई दिग्गज अभिनेत्री शबाना आज़मी निभाने वाली हैं, एंड जो को एक्ट्रेस रही हैं इमरान हाशमी की, फ़िलहाल इस बार दिशा पाटनी होने वाली हैं। सो देखने वाले ही बात है कि भाई इस बार इस मूवी में क्या होने वाला है, क्या अलग होने वाला है, जिसका इंतज़ार पूरा पूरा मुल्क कर रहा है। सो भाई ऐसी कई सारी मूवीज़ होती हैं ना, लेकिन इतनी सारी मूवीज़ इधर आई गई, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ आपको इंतज़ार था कुछ अलग मूवीज़ की स्टोरीज़ को सुनने के बाद कि हाँ ये अच्छी मूवी हो सकती है, इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, इसका मैसेज अच्छा है। पर अभी क्या है कि आवारापन 2 मूवी वो ज़रूर देखने वाले हैं जिन्होंने आवारापन देखी हुई है, और यंगस्टर्स को इंतज़ार है कि भाई 19 साल बाद जब ये 2 दशक बाद ये मूवी आ रही है, तो आखिर 2 दशकों का जो सफ़र रहा है इसमें किस तरह दिखाने वाले हैं, कितना बदलाव आने वाला है, और इस आवारापन मूवी को अब कितना प्यार दिया जाने वाला है जो पार्ट 2 लेकर के आ रही है, यानी आवारापन 2। सो फिलहाल बने रहिए, और इसी तरह हम अपडेट्स आपको पहुंचाते रहेंगे जैसे जैसे अपडेट्स मिलती रहेगी ऑफ कोर्स। लेकिन उससे पहले आवारापन मूवी जो पुरानी आई थी, उसका एक ऐसा गाना जो सभी के जहनों दिल पर छाया हुआ है, आज भी जब आप कहीं सफ़र करने निकलते हैं तो इस गाने को अगर लगा लेते हैं अपने कानों में, ईयरबड्स में, या फिर आप सुनते हुए जाते हैं, तो यकीन मानिए आप कहते हैं कि मज़ा आ गया। इमरान हाशमी के वैसे भी ज़्यादातर गाने जो है वो रोड सॉन्ग्स हैं, यानी सफ़र के दौरान सुने जाने वाले हैं। सो आइए एंजॉय करते हैं ये ब्यूटीफुल वाला सॉन्ग फ्रॉम मूवी आवारापन।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
0: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
0: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: सो फिलहाल आज है 30 जून और कल से गैस सिलेंडर को लेकर के भी कुछ नियम कानून बदल रहे हैं। सो बदलने से पहले आज आप जान लीजिए कि आखिर कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं 1 जुलाई से नियमों में। आइए आपको बताते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Arjun Khan. Arjun Khan.

हाँ जी, तो आपको हम बता दें कि आखिर कौन कौन से नियमों में बदलाव हो रहा है। तो सबसे पहले तो 30 जून ईकेवाईसी जमा करने की आज लास्ट डेट है। एंड इसके अलावा कॉमर्शियल एलपीजी के पाबंदियों में छूट है एंड दोबारा बुकिंग के नियम है। सो आपको बता दें कि कट सकता है कनेक्शन। इंडेन गैस, भारत पेट्रोलियम और भारत गैस के एलपीजी कस्टमर्स को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि 1 जुलाई से नया नियम लागू हो रहा है। आपको बुकिंग में दिक्कत, गैस कनेक्शन कटना या बाकी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, लेकिन ये सभी एलपीजी यूज़र्स के लिए नहीं है। सो आपको बता दें 30 जून यानी आज ईकेवाईसी जमा करने की लास्ट डेट है। सभी एलपीजी कनेक्शन होल्डर्स के लिए ईकेवाईसी वेरीफाई कराना ज़रूरी है, जिसकी लास्ट डेट 30 जून है। अगर आप इसे पूरा नहीं करते तो आपका गैस कनेक्शन काटा जा सकता है, जिसकी वजह से अगले सिलेंडर की बुकिंग करना मुश्किल हो जाएगा। सो जिन कस्टमर्स ने पहले ही अपना ईकेवाईसी पूरा कर लिया है, उन्हें आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कॉमर्शियल एलपीजी के पाबंदियों में छूट बताया है। सो पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के हवाला देते हुए कॉमर्शियल एलपीजी सप्लाई पर लगे जो प्रतिबंध थे वो पहले ही हटा दिए गए हैं। इस कदम से अब घरेलू एलपीजी नियमों में भी इसी तरह से राहत मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सो दोबारा बुकिंग के नियम हैं। दोबारा बुकिंग कराने से पहले शहरों में 25 दिन और गांव में 45 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। ये प्रतिबंध सरकार ने युद्ध के दौरान जमाखोरी रोकने और आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया था। सो हॉर्मूज में परिचालन सामान्य होने के साथ ही ये उम्मीदें अब बढ़ रही हैं, 1 जुलाई से ये अंतराल कम हो सकता है। फिलहाल अब इसकी ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं है। सो जिन लोगों ने ईकेवाईसी नहीं कराया है, आज 30 जून लास्ट डेट है जब आपको ईकेवाईसी कराना पड़ेगा, नहीं तो आपका गैस कनेक्शन जो है वो काटा जा सकता है। इसके अलावा जो आपकी सप्लाई है वो रुक सकती है। सो जिन लोगों ने ईकेवाईसी पूरी कर ली है उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं की है उनके लिए ये समस्या आ सकती है। सो भाई आपसे यही गुजारिश है कि अगर अभी तक आपका ईकेवाईसी पूरा नहीं हुआ है तो आप आज 30 जून है लास्ट डेट है, आज ही जा करके आप अपना ईकेवाईसी पूरी ज़रूर करा लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई साहब याद होगा कि जब बीच में प्रॉब्लम हुई थी तो कितना प्रॉब्लम था कि भाई अगर जिस दिन ख़त्म हो गया उस दिन के बाद से खाना कैसे बनेगा। पहले घर हुआ करते थे कि भाई चलो चूल्हा भी जल जाता था, फिलहाल तो अब चूल्हे भी नहीं घर में। सो एक ही चीज़ पे हम डिपेंडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भी ईकेवाईसी अपनी पूरी करा लें अगर अभी तक नहीं हुई है। इसलिए बहुत ज़रूरी, और आज है लास्ट डेट, इसलिए आज के आज ही आपको ईकेवाईसी पूरी करा लेनी ही चाहिए। आई होप कि भाई ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो चलिए फिलहाल आपको ले चलते हैं अगले म्यूजिकल ब्रेक के लिए। सो अगला जो म्यूजिकल ब्रेक है वो और भी ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि बड़ा ही ख़ास गाना आप तक पहुंचने वाला है, और अभी तक आपको बहुत सारी अपडेट्स, जैसा कि हमने वादा किया था कि भाई देने वाले हैं, सो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत सारी अपडेट्स हमने दी भी है, और कुछ अपडेट्स अभी भी बची है जो है आपके काफ़ी काम की। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉकर जेदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के गुड मॉर्निंग गोंडा में।

कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: ओए छोटे।
2: हाँ बले।
1: सुन, तुझे पता है?
2: क्या बले?
1: अरे यही कि लोहा लोहे को काटता है और हीरा हीरे को काटता है।
2: अरे बले भाग, वाला पीछे जाया कुत्ता हम इंसानों को भी काटता है।
1: ओ तेरी।
2: हाँ भाग बले भाग।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: तू पूछ नहीं हो हाल फकीरा दा जी, तू पूछ नहीं हो व्हाट्सएप यूजर नेम दी जी। आपको बताना था ना कि भाई व्हाट्सएप का यूजर नेम आप अभी से रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि कल से व्हाट्सएप ने ये फीचर खोल दिया है। सो इसको कैसे आप रिजर्व कर सकते हैं, क्या करना होगा, सबसे पहले तो देखिए आपको व्हाट्सएप के जो लेटेस्ट वर्जन है इसको अपडेट करना होगा, एंड इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप जो हम बताने वाले हैं उसको फॉलो करते हुए आप भी यूजर नेम को अपने रिजर्व कर सकते हैं।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग Kota।

तो भाई किस तरह से आप WhatsApp का यूजर नेम वाला जो फीचर है इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, आइए बताते हैं किस तरह से आपको रिजर्व करना है। तो सबसे पहले WhatsApp के जो लेटेस्ट वर्जन है इसको आपको अपडेट करना होगा। अगर अभी आप जाएंगे, आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो प्ले स्टोर पर जा कर के अपडेट करेंगे, और अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो ऐप स्टोर पर जा कर के आप इसको अपडेट करेंगे। इसके बाद जब अपडेट हो जाए, इंस्टॉल्ड हो जाए, तो आप सेटिंग्स में आइए WhatsApp की। वहाँ पर अकाउंट फीचर्स होगा, यानी अकाउंट करके आपको मिलेगा। अकाउंट वाले सेक्शन पर आपको टैप करना है और वहीं पर आपको मिल जाएगा यूज़र नेम ऑप्शन। सो यूज़र नेम पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप अपना यूज़र नेम दे सकते हैं, जैसे नाम के आगे ऐट द रेट लगाना और उसके बाद नाम लिखना, या फिर बीच में अंडरस्कोर लगाना अपने नेम और सरनेम के बीच में, या कोई भी यूनिक नेम रखना। सो आपका ये जो है आपका यूज़र नेम होगा, और जिसको आप कोई ऐसा नया शख्स जिसको आप मोबाइल नंबर ना देना चाहें पहले अपना, और इसी यूज़र नेम के ज़रिए चैट करना चाहें, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप अपना यूज़र नेम उनको देंगे जिसके ज़रिए वो चैट करेंगे, और आपका पर्सनल मोबाइल नंबर भी शो नहीं होगा। सो इस तरह से आप इन नेम्स को रिज़र्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके सेम नाम का एक ही थॉट चल रहा हो, किसी ने पहले ही रिज़र्व कर लिया है, तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप अभी कर लेंगे, यानी ये फीचर ओपन हो चुका है, अभी से ही आप रिज़र्व कर सकते हैं अपना नाम, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो अभी करना यही होगा कि आप जाएँ प्ले स्टोर पर, WhatsApp को अपने अपडेट करें, उसके बाद सेटिंग में जाएँ, सेटिंग में अकाउंट में जाएँ, अकाउंट में आपको यूज़र नेम मिल जाएगा, और वहीं पर आप अपना यूज़र नेम कंफर्म करके सेलेक्ट कर लें। सो वो आपका हमेशा के लिए एक यूज़र नेम व्हाट्सएप का हो जाएगा, जिसका फ़ायदा ये होगा कि भाई बिना किसी कॉन्टैक्ट नंबर दिए आप नए पर्सन से चैट कर सकेंगे, यानी अपनी काम की बातें आप अपने उस पर कर सकेंगे। सो आई होप कि आप तक ये फुल्ली वाली जानकारी पहुंच गई है, जो कि हमने वादा किया था कि आके हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से आप अपने नेम को रिजर्व कर सकते हैं। आई होप कि आपने जान लिया है, और अब आप भी अपने नेम को रिजर्व करने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल आइए चलते हैं अपने अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। वापस से आएंगे तो ऑफ कोर्स आज जो है हमारे पास आया हुआ है क्या कंटेंट आपकी तरफ से, सो वो भी हम पढ़ने वाले हैं। आज का मौसम भी बहुत ही ज़्यादा सुहावना है, और आज की बातें भी बहुत प्यारी प्यारी हुई है, सो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड आई होप कि आप भी एंजॉय कर रहे हैं इस मॉर्निंग वाले शो को।

0: दो सहेलियां जिन्होंने खुले आसमां के नीचे गंगा के किनारे लगाई पाठशाला। जी हाँ, ये दो ऐसी सहेलियों की हम आपको दास्ता बताने वाले हैं जिन्होंने गंगा किनारे पाठशाला लगाई। आखिर दोस्ती के बारे में आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स और कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज एक ऐसी गढ़ी हुई कहानी जो कि सच्चाई से गढ़ी हुई है आपको सुनकर बहुत अच्छा लगने वाला है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.

सो जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते या पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उनको मुफ्त में पढ़ाती हैं ये सहेलियाँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्णिमा सिंह और शिखा मिश्रा की, जो कि पुरानी किताबें इकट्ठा करके उन्हें आगे जिन बच्चों के काम आ सकती है उन तक पहुँचाती भी हैं। सो पूर्णिमा कहती हैं कि 7वीं-8वीं कक्षा के बच्चे हिंदी भी नहीं पढ़ पाते थे, ऐसे ही बच्चों को हमने बेसिक शिक्षा दी है। नंदिनी जो कि स्टूडेंट हैं कहती हैं कि पहले मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता था, दीदियों से पढ़ने के बाद स्कूल में मेरे नंबर्स अच्छे आए हैं। इसके अलावा हम ये बात बता दें आपको कि ये छोटी सी पहल बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर ला सकती है। होती तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन अगर सच में देखा जाए, इस पे गौर किया जाए, तो ये बहुत नेक काम होता है कि आप उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनको अभी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता। बस हाँ, संसाधनों की कमी से वो चाहते तो थे पढ़ना, लेकिन वो किसी काम में मशगूल है क्योंकि उनकी पारिवारिक स्थिति सही नहीं है और उन तक इतने संसाधन भी मौजूद नहीं हैं। इन सारी बातों का ध्यान रखा जाए तो ऐसे इनिशिएटिव्स, जो लोग पढ़े हुए हैं वो अपना कुछ वक्त अगर ऐसी चीज़ों में लगाते हैं तो एक तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, जैसा कि आज की मॉर्निंग थॉट में भी था कि आप जो कुछ कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं। एंड दूसरी बात, मेंटल पीस बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि आज के वक्त में सच में उसको बना पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे वक्त में आप वो काम कर रहे हो जिससे डायरेक्ट किसी का भला हो रहा हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मेंटल पीस बन करके खुद ब खुद सामने आता है। एंड आई होप कि आपको ये दो सहेलियों की स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी, जो कि रियल लाइफ स्टोरी है और ये मिर्ज़ापुर की ही है, यानी अपने उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में ही गंगा किनारे ये दो सहेलियाँ जो है उन बच्चों को शिक्षा देती हैं जिनके पास में संसाधनों की कमी है, जो पढ़ नहीं पाते हैं। एंड इसके साथ ही साथ आपको ये बात, ये कहानी कैसी लगी, जो कि बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी है। हमारी प्रीति जी ने बहराइच से भेजा है अपना कंटेंट, आइए ले चलते हैं। उससे पहले बता दें उस्मान खान भी मौजूद है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे अदनान सर। वालेकुम अस्सलाम। साथ में लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, थैंक यू सो मच कि आपको ये दो सहेलियों की स्टोरी पसंद आई जो पढ़ा रही हैं बच्चों को। एंड प्रीति जी फ्रॉम बहराइच, सर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है। इनोवेशन इंस्पिरेशन, बेशक सही कहा। एंड गीता जी पूछ रही थी कौन सी मूवी है, कब आ रही है, सो 14 अगस्त को आ रही है आवारापन 2, जिसके बारे में हमने बात की थी। फिलहाल प्रीति जी बहराइच से लिखती हैं मौन सर्वम परम। मौन की आवाज़ में न होती कोई खनक, फिर भी सबसे अच्छा करता सुगम बहस। मौन शब्दों से परे निःशब्द है मौन, जब शब्द करे प्रहार और बन जाए तलवार, तब प्रत्युत्तर बन जाता है मौन, शब्दों की महिमा अपरंपार, करे व्यंग और तिरस्कार तो रक्षा कवच बन जाता है मौन, मौन होता सबसे बड़ा हथियार, ये सबको कर देता है दरकिनार, इसलिए मौन वाद विवादों का सबसे सटीक हल। क्या बात है, बहुत ही चंद शब्दों में आपने जो जिस लहजे को अपनाते हुए अपनी बात कही है बहुत ही शानदार है। एंड मौन, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना शायद कम है, क्योंकि जो लोग मौन होना जानते हैं या जिन्होंने मौन को जिया है और मौन की वजह से ख़ुद को पहचान पाए हैं, मौन की वजह से उस फीलिंग तक पहुंच पाए हैं जिससे पहले वो कभी नहीं पहुंचे थे, या जिसका एहसास उन्हें कभी था ही नहीं कि इस लेवल तक की वो चीज़ों को फील कर पाएंगे, मौन से उनको इस बारे में बड़े ही अच्छे से ज्ञान मिल चुका है, यानी वो जानते हैं कि आखिर मौन की कीमत क्या है। सो कई बार ऐसा ही होता है कि मौन से इंसान झगड़े से बच जाता है, मौन से अपनी बातों का इशारा भी कर देता है, और सबसे बड़ी बात, मौन की सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि मौन आपको स्थिर रख देता है। अगर आप बहुत परेशान हैं और मौन हो जाए तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें अपने आप खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा मौन रखने वाले खुद बताते हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा कंटेंट था जो कि आपने भेजा, और आप सब लोग भी भेज सकते हैं अपना खुद का लिखा कोई भी कंटेंट
जिसमें कोई शायरी, कोई गज़ल, कोई कविता, कोई शॉर्ट स्टोरी, कोई जोक, कुछ भी हो सकता है, या आपके अपने किसी दोस्त का, किसी रिलेटिव का, बस उनका नाम और उनका स्थान होना चाहिए। व्हाट्सएप पे तो भाई यूज़र नेम वाला आने ही वाला है, लेकिन आप हमको फ़िलहाल इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर पर ज़रूर भेज सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर हमको सर्च कर सकते हैं RJ_ADNAA, RJ अदनानी ये हमारा यूज़र नेम है, एंड इसी में मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पर आकर के ADNAN अदनान अहमद के नाम से सर्च करके वहाँ पे भी हमको आप दे सकते हैं। सो फिलहाल आज का ये शो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। कल के बाद परसों फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए अपना गोंडा FM 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता। हर बार की तरह गांव की गूंज का एक नया एपिसोड हम सब मिलकर ला रहे हैं, जिसमें मधुर मधुर गीतों की जो माला है वो पिरोई गई है श्रीमती किरण पांडे की आवाज में। और आप सभी जानते हैं कि जब हम बहराई चल रहे हैं और अवधि न बोले तो भाई ये नहीं हो सकता है।
5: का बताई बहनी, बहुत दिन हुई गवा। गौवा जब जावा करो ना, तब लस्तगा लाग रहा था यार बाहर जाए के। अब घर में बैठ जाओ, तब बुताए जाओ।
4: तो सुना आप सभी ने, आइए हम सब मिलकर चलते हैं आज बहराइच। अरे बाप रे, ये देखो श्वेता, कितनी जोर की बारिश होने वाली है।
6: अरे जरा बादल तो देखो, कितने काले काले से घिर आए हैं। बारिश तो अब होके ही रहेगी।
5: क्या बात है, क्यों तुम लोग शोर मचाई पड़ी हो? तब से सुन रही हूँ। चलो चलो, गांव भी चलना है। चलो सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। और जिम्मी कहाँ है?
7: हाँ किरण दी, मैं तो नहा धोकर तैयार हो गई हूँ, बस चाय ही पीनी है।
4: जिम्मी कितना पाउडर लगा ली हो तुम? इतनी गोरी हो तुम, तब भी इतना पाउडर लगा ली हो?

0: किरण दी, हम लोग कहाँ चलेंगे? कौन से गांव? और ड्राइवर भैया बाहर आ गए हैं गाड़ी लेके, खड़े हैं और हॉर्न जोर जोर से बजा रहे हैं।
1: चलो सब लोग निकलो। जिम्मी, चाय हम लोग वहीं प्रयागपुर चलकर ही पियेंगे। और श्वेता, हम लोग चल रहे हैं प्रयागपुर दीनू काका के गांव।
2: तब तो किरण दीदी गाना बनता है कोई, उठान गीत ही सुनवा दीजिए ना।
1: अच्छा अच्छा ठीक है भाई।

0: अरे रुको रुको, यही घर है दीनू काका का। और वो देखो जमुना काकी।
1: काका राम राम, काकी राम राम।
2: कैसी हो जमुना काकी? दीनू काका मजे में है? हाँ हाँ, मजे महन, सभे मजे महन। आओ आओ बहनी, तोहरे सब मजे महाओ। आज यहाँ कैसे बिटिया लोग?
0: काकी आए ने तुसे ओ काका से भेटाए।
2: अरे तुहार काका हमार कोनो बात नहीं सुनत हैं, या को कहा नहीं मानत हैं। हम कहें कि हमका एक ठो जेवर बनवाए दो, तब कहें कि जेवर का करी हो।

0: काकी गुस्सा ना हुआ करो काका से, काका आपसे बहुत प्यार करते हैं।
1: अरे बहनी हमार करम वे फूट है दादा, का करी।
2: हे काकी कुछ ना करो, तहारी दशा देख के हमें तो एक गाना याद आवत है, करम हमार फूटा सुनो मोरी अम्मा।

0: काकी, सबको प्यार से रहना चाहिए और इतना गुस्सा ना करो। देखो काका सबके लिए चाय बना कर लाए हैं और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े भी लाए हैं।
1: लगता है भाभी बना रही है। अरे आओ अंदर तो आओ, देखो गांव में कितनी साफ सफाई है, मक्खी मच्छर कुछ दिखाई नहीं दे रहे।
2: बारिश के मौसम में साफ सफाई बहुत ही जरूरी है। अरे साफ सफाई तो हमेशा रखनी चाहिए, पर बारिश में कुछ ज्यादा ही सफाई करनी चाहिए। इसी मौसम में फंगस वगैरह ज्यादा पड़ती है और इन्फेक्शन तो तुरंत होता है।
1: अरे काका तो काकी को मनाने में ही लगे हैं, वो देखो।
3: गढ़ाए देव दुई झुलनी, गढ़ाए देव दुई झुलनी, हो धना काहे

0: देखो साफ सफाई तो सभी को रखना चाहिए अपने आसपास। लोग क्या करते हैं, खुद का घर तो साफ कर लेते हैं और सारा कूड़ा निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। ये बात ठीक नहीं है।
1: सही कहा, कूड़े की गाड़ी आती है, कूड़ा उसमें ही डालो, सफाई रखो।
2: देखो इस समय डॉक्टर के यहाँ भीड़ लगी रहती है, कोई पेट से परेशान, उल्टी, दस्त, टाइफाइड, बुखार, मच्छर भी गंदगी में ही पैदा होते हैं, तो सफाई जरूरी है भैया।
3: दीनू काका जाइए, काकी को कहीं घुमा लाइए, सिनेमा दिखा लाइए, तो काकी खुश हो जाएगी, है ना जिम्मी?
2: हाँ हाँ बिल्कुल।
4: अरे मोरे पीछे वरवा सिनेमा लगल बा, अरे मोरे पीछे वरवा सिनेमा लगल बा। ए राजा, अरे

0: चलो सब लोग बहराइच, शांति चाची के यहाँ भी तो चलना है, नहीं तो शाम हो जाएगी, लौटना भी तो है।
1: शांति चाची के पोता हुआ है, अरे कोई कुछ लाया है देने के लिए?
2: हाँ हाँ, एक ड्रेस मैंने ले लिया था रास्ते में ही, 0 साइज का।
0: चलो थोड़ी मिठाई खरीद लेते हैं।
2: फाइनली पहुँच गए शांति चाची के घर। अरे ये क्या, वहाँ कुछ नाच गाना हो रहा है।

0: गांव में अक्सर लोग किसी फंक्शन में नाच बंधाते हैं। आओ आओ अंदर आओ, नाच देखा जाए।
1: आज बच्चे की छठी है तो सब लोग आए हैं और बच्चे की बुआ मीरा दीदी काजल लगा रही हैं।
2: ओके।
3: अरे हाय, देखा घर ही माँ,

0: मजा आ गया गांव घूमने में। इसीलिए मैं कहती हूँ कि गांव से हमेशा जुड़ाव रखना चाहिए और यहाँ आकर लोगों से मिलना जुलना चाहिए।
1: सही कहा किरण दी आपने, हम शहर को निकल जाते हैं और गांव में बड़े बूढ़ों को तो भूल ही जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
2: अरे बहनी, सभे आई हो तो कुछ गा देती हो, हमरे नाती का आज छठी है।
3: हे चाची, वह किरण बहनी आई है, वह नहीं से कहती हूँ ना ही सभी मिलके गाय दिए।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: जस्ट इमेजिन, आप एक रात गुजर रहे हो किसी सड़क से, आपके पीछे खड़ी हो एक सुंदर सी, बड़ी खूबसूरत सी लड़की और सवाल करे आपको देखकर कि क्या मैं सुंदर हूं, तो आप क्या कहोगे?
1: मैम वो तो फिर
0: क्या कहोगे? क्या कहोगे कि वो सुंदर है, या ये कहोगे कि वो सुंदर नहीं है, या बिना कुछ कहे जाने का मूड है?
1: नहीं मैम, कुछ तो कहना चाहिए कि वो अकेले क्यों है वहां पे।
0: वो फिर से एक सवाल करेगी कि क्या मैं सुंदर हूँ?
1: अगर वो सुंदर है तो सब हाँ ही कहेंगे,
0: और यही सबसे बड़ी गलती है।
1: क्यों? ऐसा क्यों?
0: क्योंकि कहते हैं अगर वो लड़की आपके पीछे है और आपसे सवाल कर ले कि क्या वो सुंदर है, और आपने जवाब दे दिया कि हाँ, तो वो आपको बिल्कुल वैसा ही कर देती है जैसी वो खुद दिखती है, और अगर आप कहते हैं कि नहीं, तो आपकी जान जानी पक्की है। अगर आप उससे पीछा छुड़ाकर भागने की कोशिश करते हैं तो ये आपकी उससे भी बड़ी गलती है, क्योंकि आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते।
1: मतलब फंसना तो हमें ही है, चाहे हाँ करे या ना करे।
0: वो जो एक डायलॉग है ना, चाकू चाहे सेब पे गिरे या सेब चाहे चाकू पे गिरे,
1: बात तो एक ही है,
0: बात तो एक ही है, कटना तो सेब को ही है। तो यहाँ पर वो महिला, वो लड़की चाकू की तरह है, और उसके हाथ में भी चाकू या कैंची ही नजर आती है।
1: फिर मैम उससे कोई पूछेगा ही क्यों?
0: उससे कोई क्यों पूछेगा, वो पूछती है अकेला पाकर। और ये बात उसने कई बच्चों से पूछा है, और बच्चे जब उसकी आंखों में देखते जो इतनी खूबसूरत दिखती है, बच्चे कह देते हाँ आप सुंदर दिखती हैं, और वो बच्चों को बिल्कुल अपनी जैसा कर देती है।
1: मैम कार्बन कॉपी उनकी?
0: हाँ, लेकिन ये है कौन जिसका नाम लेना हर एक देश के लिए मना है? देश का मतलब जिसमें जापान, चाइना, साउथ कोरिया शामिल है, और वहाँ पर इसका नाम लेना पाप माना जाता है, फॉरबिडन है कि आप इसका नाम नहीं ले सकते, वर्जित है। क्योंकि लोग कहते हैं अगर आप इसका जिक्र भी करते हो, इसका नाम भी लेते हो, तो ये आपके पीछे पड़ जाती है, ये आपको दिखती है, मिलती है और आपसे सवाल करती है। और जो लोग सोचते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, निकल जाऊंगा मैं इधर उधर, नहीं, ये अगर एक बार आपके पीछे आ गई, आपके करीब आ गई, तो इससे दूरी कभी नहीं हो सकती। फिलहाल के लिए आप सुन रहे हैं आपका अपना 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली, आपकी अपनी गोंडा शहर की धड़कन आवाज है, आपकी अपनी आरजे उन्नति की, और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट सृष्टि। आज है ट्यूसडे, इसीलिए आपका स्वागत कर रहे हैं आपके अपने कार्यक्रम ज्ञानस्थली लाइफ में। ट्यूसडे की आज स्पेशल हॉरर वाले शेड्यूल में हम लेकर आए हैं एक ऐसी अर्बन लेजेंड की कहानी जो जापान में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। भाई वक्त रहेगा तो आज मैं आपको दो अर्बन लेजेंड के बारे में जरूर बताऊंगी, और नहीं तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनकी कहानी जरूर सुनाऊंगी। एक ऐसा नाम जिसको लेने से लोगों के अंदर डर है, एक ऐसा नाम जिसके होने की वजह से लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाने भेजने से रोक दिया कि नहीं, हम स्कूल भेजेंगे ही नहीं, ना स्कूल भेजेंगे, ना वो दिखेगी, ना मेरे बच्चों के साथ कुछ होगा। वो कौन थी, क्यों उसका नाम लेना मना है, क्यों उसका जिक्र करना मना है, जाएंगे आज की अपनी स्टोरी वाले डे में। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं, तब तक के लिए आप बताइए कि क्या मैं सुंदर हूँ।

0: सोचो मैं गाना गा रही हूँ, कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो मिलोगे मुझको, यकीन है, और पीछे से आगे करी ढप्पा। बताओ मैं खूबसूरत हूँ?
1: मैम एक तो इंसान पहले ही डर जाएगा कि अचानक से कौन आ गया।
0: वो कहेगी ना तुम मुझे याद कर रही थी, तुमने ही कहा था कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो मिलोगे।
1: पर मैं तुम्हें थोड़ी कर रही थी, ऐसा थोड़ी होता है।
0: जिस तरह से एक गाना था हिमेश रेशमिया का, झलक दिखला जा, वो काफी पॉपुलर हुआ था भूतों को बुलाने के लिए। और जो सवाल करते थे तो भूत कहते तुम्हें तो चिल्ला रहे थे कि झलक दिखला जा, तुम्हें आ गया दिखाने।
1: लेकिन मैम जिसे कहा वो तो आया नहीं, जिसे नहीं बुलाया वो क्यों आ गया?
0: अब उसको थोड़ी पता है आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो वहां मौजूद थी, उसे लगा, उसने कहा चलो केबीसी खेल के आते हैं। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका मुंह अपनी तरह कर दूंगी, अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपकी जान ले ही लूंगी।
1: फंसे तो हम ही है, अब तुम्हारी ही मर्जी, चाहे जो कर लो, क्या ही कर सकते हैं।
0: फिलहाल के लिए आपका स्वागत करते हैं ज्ञान असली लाइफ में। आप सुन रहे हैं 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन, आवाज है आपकी अपनी आशुनदी की, और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट सृष्टि। आइए चलते हैं आपको लेकर के जापान। जापान में एक नाम है जो 1970 से बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है कुचिसाके ओना। कुचिसाके ओना, कुछ लोग ओना कुछ ओना कहते हैं। ये एक ऐसा नाम है जिसने जापान को दहशत में डाल दिया था। बच्चों को लोग स्कूल नहीं भेज रहे थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, अकेले कोई कहीं नहीं जा रहा था। और इसके पीछे था कि अगर अकेले जाएंगे तो वो मिलेगी, सवाल करेगी तो हम जाएंगे, अब वापस नहीं आएंगे। 1970 जहां जापान अपनी तरक्की की तरफ बढ़ रहा था, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा था, जहां उन्नति की तरफ बढ़ रहा था, मेरी तरफ नहीं, प्रोग्रेस की तरफ, वहीं पर जहां लोग सोचते थे कि यह भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, उनकी लोक कथाओं में शामिल हुई एक ऐसी आत्मा जिसने उनका कभी पीछा नहीं छोड़ा, कुचिसाके ओना। एक दुष्ट आत्मा के नाम से जानी जाती है, कुछ लोग इसे अर्बन लेजेंड कहते हैं, कुछ लोग इसे लोक कथा में आई हुई एक किरदार समझते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये सच है, और इसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, इसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए। जापान, कोरिया, चाइना, ये तीन देश उसका नाम लेना पसंद नहीं करते। मैं ले रही हूँ, बट मेरे पास मत आइएगा प्लीज।
1: मैम अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आपका क्या रिएक्शन होता?
0: रिएक्शन लेस हो जाते हैं हम।
1: फिर भी वो लेजेंड थी क्या? अभी भी लोग उस पे बिलीव करते हैं?
0: बिल्कुल, अभी भी बिलीव करते हैं और अभी भी फेमस है। बट हमेशा ना हर देश में दो जनरेशन रहती हैं, एक वो जो इन चीज़ों को मानती हैं और वो कहती हैं काम मत करो, दूसरा वो जो कहती हैं हटाओ, जब तक करेंगे नहीं पता कैसे चलेगा।
1: मैम वो मजा ही कुछ और होता है,
0: है ना?
1: बस जाते वो बात,
0: जैसे कि एक हॉरर फिल्म के अंदर एक इंसान होता है जिसको उसके ग्रुप को ना एक अलग लेवल का कीड़ा काट रहा होता है कि अब हम बैंड के ओइजा बोर्ड ही खेलेंगे, फिर आत्मा को गुड बाय भी नहीं बोलेंगे, और उसके बाद तंत्र मंत्र जंत्र मंत्र सब कराएंगे, लेकिन सही टाइम पर कुछ नहीं करेंगे।
1: फिर मैम जो होता है वो तो सबको ही पता है क्या होएगा।
0: बिल्कुल, पहले वो बहुत शॉक में कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता।
1: वो हो ही ऐसा।
0: और हर देश में, हर जगह पर, हर क्षेत्र में ये दो लोग जरूर होते हैं, एक जो मना करता है कि नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, ऐसा मत करो, दूसरा कहता है कैसे नहीं लगता, हम तो करेंगे, एक्सपेरिमेंट तो करेंगे ना, पता कैसे चलेगा।
1: मैम मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि
0: आप जाके कर लीजिए, रात में सड़क पे खड़ी होकर 12 बजे चिल्लाइएगा, क्या पता वो जापान से सीधे आप ही के पास पहुंच जाए बिना पासपोर्ट के, क्योंकि भूत तोड़ लेते हैं शायद।
1: उड़ने का सपना पूरा हो सकता है मैम।
0: हाँ, जब आप भूत बन जाएंगी तब।
1: वो चाहे तो हमें ऐसे भी इंसान बना के भी उड़ा सकते हैं, पर वो चाहते नहीं है।
0: अच्छा, फिलहाल के लिए इनकी इस बेतुकी बातों को साइड करके अपनी तुक वाली बात पर आते हैं और आपको सुनाते हैं कुचिसाके ओना की कहानी। एक ऐसी दुष्ट महिला आत्मा के रूप में इसको लोग जानते हैं, इसके चेहरे पर हमेशा एक मुखौटा होता है, मास्क होता है। अब ये मत कहिएगा कि कोविड से कुछ ज़्यादा ही इंस्पायर्ड हो गई है, नहीं, वो 1970 से ही अपने मुँह पे एक मास्क रखती है, अपने आधे मुँह को छुपा कर रखती है। उसके हाथ में या तो कैची, चाकू या फिर कोई नुकीली वस्तु जरूर दिखती है, जो कि लगभग 175 से 180 सेंटीमीटर लंबी महिला दिखती है। वो लोग कहते हैं जैसे ही वो दिखती है ना, तो उसकी एक अच्छी खासी हाइट होती है, वो 5 से 5-7 इंच की होती है, यानी कि 5 feet 7 inch या फिर 5 feet 9 inch। मैं जो 5 feet 5 inch की हूँ उसको ऐसे देखूंगी ऊपर।
1: मैम वो खूबसूरत थी, उसके पास
0: वो खूबसूरत थी, वो लंबी थी, वो सुंदर थी, वो बहुत प्यारी थी, और कमाल की बात ये है कि वो एक समुराई की बीवी थी। बिल्कुल सही कहा, वो एक वॉरियर की बीवी थी, वाइफ थी एक बहुत बड़े समुराई की। कहते हैं कि उसका जो हस्बैंड था वो जंग लड़ने जाता था, वो युद्ध में बहुत रहता था क्योंकि वो समुराई था, और ये बहुत सुंदर थी, बट इसी सुंदरता का उसे बहुत घमंड भी था। उसे लगता था वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है।
1: मैम किसी को भी तो ठीक था, पर बच्चों को अपने जैसे बनाने का क्या कॉन्सेप्ट था?
0: अब ये तो वही जाने फिलहाल। चलिए हम आपको बता दें अगर वो दिखती है तो कैसी दिखती है, ताकि अगर आपको अगली बार दिखे तो आप मजाक मजाक ना समझ लें। कोई कहता है कि वो 5 से 7 इंच की होती है, कोई कहता है वो 8 फिट तक लंबी हो सकती है। उसके बाल सीधे काले होते हैं, सफ़ेद हाथ होते हैं और पीली त्वचा होती है, क्योंकि मरे हुए इंसानों के अंदर खून नहीं होता। वो बहुत सुंदर है, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप उसके चेहरे पर मास्क हटाकर ना देखें तो आपको लगेगा कि उससे ज़्यादा खूबसूरत आपने किसी को नहीं देखा। वो जो गाना है ना, मैं हुस्न परी मैं जाने जहां,
1: शी वॉज लाइक दैट।
0: वो अक्सर लोगों को बीच रास्ते में रोकती है और उनसे सवाल करती है, क्या मैं सुंदर हूं? अगर लोग जवाब दे देते कि हाँ तुम सुंदर हो, तो वो अपने चेहरे पर लगा मास्क उतारती है और उसके चेहरे पर जो एक बहुत बड़ा सा कट लगा है, जिससे उसके नीचे का हिस्सा पूरा अलग नजर आता है, उसकी एक बड़ी सी स्माइल बनी हुई है, और वो कट किसी तलवार या किसी चाकू या फिर किसी कैंची से काटा गया है, उसके दोनों गाल कटे हुए हैं। उस मास्क को निकाल कर फिर वो अपनी भयंकर आवाज में पूछती है, क्या मैं अब भी सुंदर हूं? और लोग जवाब देते हैं, अगर कोई सोचता है कि यार बोल दूंगा सुंदर हो ना, तो ये जाने देगी मुझे? वो कहते थे हाँ तुम सुंदर हो, तो वो अपने पास जो एक लंबी सी कैंची रखती है या चाकू रखती है, जो भी नुकीली चीज़ें उसके पास होती हैं, उसको उठाती है और वो सेम स्माइल सेम कट उस सामने वाले इंसान के मुंह पर लगा देती है जो उसके चेहरे पर है, और वो कहती है कि अगर मैं सुंदर हूँ तो तुम सुंदर क्यों नहीं हो? और कोई कहता है कि नहीं तुम सुंदर नहीं हो, बट क्योंकि पहले तुमने जवाब दिया था कि तुम सुंदर हो और तुम अब कह रहे हो कि तुम सुंदर नहीं हो, और उसको ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई उसकी खूबसूरती की बेइज्जती करे, तो वो उसकी वहीं जान ले लेती है। और अगर कोई कुछ नहीं कहता है, वहां से बस भागने की कोशिश करता है, तो वो उसके पीछे पड़ जाती है। ये है कुचिसा की ओरना। लेकिन इसकी कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी, क्या हुआ था, ये क्यों बनी ऐसी, और वो जो कट उसके चेहरे पर लगा है वो कहां से आया? वैसे इससे मिलता जुलता एक एपिसोड 2013 में भी रिलीज हुआ था फियर फाइल्स में, अगर आपको याद हो तो मुझे चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आप सुन रहे हैं 89.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन, मेरे यानी उन्नति के साथ।

0: और मुझे लगता है ना कि हर वो इंसान जो कुची साके योन्ना से मिलता है, उसके भी चांद आसमान से लापता हो जाता है।
1: मैम उसके तो होश ही उड़ जाता है।
0: होश बाद में बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए स्वागत करते हैं आपका आपके अपने वाला शो ज्ञान असली लाइफ में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, यह है गोला शहर की धड़कन पर मेरे यानी उन्नति के साथ और मेरी को होस्ट सृष्टि के साथ। आज हम बात कर रहे हैं जापान की उस अर्बन लेजेंड के बारे में, जो लेजेंड ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, सामने ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। कुचिसाके ओन्ना, एक ऐसा नाम जो जापानीज चाइनीज कोरियंस सबके दिलों में खौफ जगा कर बैठी हुई है। लेकिन इसका शुरुआत कहाँ होती है? इसकी शुरुआत होती है कुछ साल पहले, जब जापान में समुराई हुआ करते थे, जब वॉरियर्स हुआ करते थे। और उस वक्त एक महिला जिसका नाम कुचिसाके था, उसकी शादी हुई थी एक ऐसे ही समुराई से जो कि बहुत बहादुर था, रिच था और वॉर पे जाया करता था। क्योंकि कुचिसाके ओन्ना को हमेशा से अपनी खूबसूरती का काफ़ी घमंड रहा है, उसे लोग हमेशा उसकी खूबसूरती के लिए तारीफ़ किया करते थे। और जब किसी चीज़ की तारीफ थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा घमंड आ जाता है, नेचुरल है। बाकी जिसको आजकल हम नार्सिस्ट और सेल्फ ऑब्सेस्ड कहते हैं, वो उस वक्त में कुचिसाके ओन्ना थी, यानी कि खुद से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी। उसे लगता था कि वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, किसी को भी आकर्षित कर सकती है, वो जो चाहे सो कर सकती है, क्योंकि वो उस दुनिया की सबसे हसीन लड़की है। उसके काले लंबे बाल थे, उसकी प्यारी आंखें थी, उसका सफेद चेहरा एकदम परफेक्ट। एक रोज जब उसका हस्बैंड जंग में लड़ रहा था और वहीं पर कुचिसाके ओन्ना अपनी खूबसूरती का फायदा उठाते हुए उसे पीछे से धोखा दे रही थी। उसका हस्बैंड वापस आता है, जंग से लौट कर वापस आता है और वो देखता है कि कुचिसाके ओन्ना उस वक्त किसी और मैन के साथ थी, किसी और मर्द के साथ थी। वो इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाता है, बौखला जाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पीछे से मुझे धोखा दो, और ये धोखा तुम मुझे कब से दे रही हो। कुचिसाके ओन्ना काफी डर चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, अपनी सफाई में कुछ शब्द उसके सामने रखती, उसके हस्बैंड ने अपने कमर में लगी हुई उस तलवार को निकाला और उस तलवार से उसके चेहरे को बीच से काट दिया, यानी कि उसके गाल को और उसके होठों से लेकर उसके दूसरे गाल को, दोनों को अलग कर दिया और उससे कहा कि अब बताओ, क्या तुम अब भी खूबसूरत हो? क्या तुम अब भी अपनी खूबसूरती का घमंड करोगी? और शायद ये बात उसके दिल में चुभ गई थी, इसलिए वो दूसरों सवाल करती है। उस वक्त वो कुछ भी नहीं बोल पाई, दर्द में तड़पती रही, बहुत ज़्यादा खून बह चुका था जिसकी वजह से वो तड़प कर उस दर्द में मर गई। लेकिन मरने के बाद उसको शांति नहीं मिली, उसने इस दुनिया को कभी अलविदा नहीं कहा। वो वापस आई और उसी रात सबसे पहले वो अपने हस्बैंड के पास गई और उसको गेट को खटखटा कर सबसे पहला सवाल कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। अब उसका हस्बैंड जो पहले से बौखलाया हुआ था, उसने बोल दिया नहीं और उसकी जान वहीं चली गई और ये कहानी वहीं से शुरू होती है। और अब हर दूसरा इंसान उसका शिकार हो रहा था। वो रातों को गाँव में निकलती, लोगों को पकड़ती, जो अकेले राहगीर गुजर रहे थे उनको पकड़ती, पीछे से खड़ी होकर सवाल करती कि क्या मैं सुंदर हूँ, क्या मैं खूबसूरत हूँ, एम आई ब्यूटिफुल। और इतना कहते ही वो आदमी या वो बच्चा जो भी होता था उसकी तरफ मुड़ता, उसको देखता, उसकी प्यारी आंखों को देखता, उसके लंबे काले बाल देखता तो कह देता खुश होकर कि हाँ तुम बहुत सुंदर हो। और इतनी बात सुनते ही वो अपने चेहरे जिसको अभी तक ढककर रखती थी, उसको उस चेहरे को खोलती और उसका वो डरावना सा चेहरा उसके सामने आता और दोबारा से पूछती अपनी गर्गलिंग आवाज़ में कि क्या मैं अब भी सुंदर हूँ। या तो इंसान कुछ कभी कह नहीं पाता था या जवाब दे देता था कि नहीं तुम सुंदर नहीं हो। इतना सुनते ही वो गुस्से से लाल उसकी जान ले लेती थी। और अगर कोई ये कह देता था कि हाँ तुम सुंदर हो, तो उसे वो अपने जैसा बना देती थी, यानी उसका चेहरा भी काट देती थी। खून बहने की वजह से वो इंसान भी वहीं पर तड़प तड़प के मर जाता था। 1970 से

जी हाँ, हम आपको बता दें भाई, कुछ साकी होना कभी भी आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं मिलती है, वो हमेशा शांत गलियों में अकेले लोगों को मिलती है, अकेले ही सवाल करती है, बच्चों से, बड़ों से, हर उम्र के इंसान से, और एक ही सवाल कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। इतना खौफ बैठ चुका था लोगों के मन में इस कुछ इसाके उन्ना का कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, और जो जा रहे थे वो पुलिस की सिक्योरिटी में जा रहे थे, पुलिस की बैंड चारों तरफ चल रही थी और बीच में उन बच्चों की बस चलती थी, इस लेवल की सिक्योरिटी दी जा रही थी, क्योंकि लोगों के अंदर डर था कि कहीं कुछ इसाके उन्ना उनके बच्चों को ना मिल जाए और उनके बच्चों की जान ना चली जाए। बहुत सालों तक यूं ही चलता रहा और अचानक से एक दिन सब बंद हो गया, लोगों के अंदर से वो डर निकल गया, पुलिस वालों को कोई नहीं मिला, पुलिस वालों के हाथ कुछ नहीं लगा और कुछ ही साकी उन्ना कहीं गायब हो गई। बट कहते हैं वो आज भी है, आज भी लोगों के बीच में है, वो आज भी लोगों से सवाल करती है, उनसे जो उसका जिक्र करते हैं, और इसीलिए जापान, कोरिया, चाइना में उसका जिक्र करना, उसका नाम लेना, उसके बारे में बात करना वर्जित माना जाता है, यानी कि आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बात करते हो तो कहीं ना कहीं आप उसे अपनी तरफ इनवाइट करते हो कि आओ मिलो। कुछ लोग आज उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं जवाब दे सकता हूँ उसे, बट उन्हें यह नहीं पता कि जब वो सामने आती है तो कोई भी जवाब काम नहीं आता। जो चीज़ हमें सुनने में अक्सर लगती है कि यार ये तो सिर्फ मजाक है, टाइम पास है, वो चीज़ें जब सामने से होती हैं तो वो मजाक नहीं लगती, बहुत डरावनी होती हैं। फिलहाल आप बताइए आपका क्या थॉट है, आप क्या मानते हैं, कुछ साकी उन्ना सच में थी क्या, या फिर ये सिर्फ एक मजाक है, एक लोक कथा है, और क्या आप उसके सवालों का जवाब देना चाहेंगे अगर वो आपसे अगर पूछे कि क्या मैं खूबसूरत हूँ, आप क्या कहने वाले हैं बताइएगा ज़रूर। एंजॉय करते रहिए आपका अपना शो कैन असली लाइव, मेरे यानी उन्नति के साथ।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

क्या वो सच था। हंस जी, तो आप सुन रहे हैं 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन अपनी आशुती के साथ। और अब घड़ी में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी कल सुबह, आपसे मिलेंगे गुड मॉर्निंग गोंडा में, तो सुनना मत भूलेगा। फिलहाल के लिए आप बताइए कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा है। हो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एक हॉरर स्टोरी मैंने आपके लिए पेश की थी आज के स्टोरी वाले डे में, जिसको आपने सुना, एंजॉय किया, तो अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया लगातार मेरे साथ बने रहने के लिए पिछले एक घंटे से। आपका अगला कार्यक्रम है सेहतिया सिंह, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं 89.6 FM की फ्रिक्वेंसी पर आपका अपना रेडियो ज्ञान असली, गोंडा शहर की धड़कन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
3: पहले घंटे से शुरू होती है बच्चे के दिमाग और जीवन की मजबूत नींव। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जुड़ी है एक नन्ही सी जान से और उसकी जिंदगी से, यानी कि उसके जिंदगी के पहले घंटे से। जी हाँ, ये नवजात शिशु के बारे में है, उसके इस संसार में सांस लेने के पहले घंटे के बारे में। इसमें बहुत सारे पहल शामिल हैं। बच्चे का पहली बार इस दुनिया में सांस लेना, पहला घंटा, माँ का पहला दूध, माँ और पिता का पहला स्पर्श, परिवार के सदस्यों का स्पर्श, और फिर शुरुआती महीनों में उसका शारीरिक और मानसिक विकास। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पोषण पखवाड़े का विषय है नवजात शिशु के पहले 6 महीने में उसकी देखभाल, और इसके लिए आज हमने दोनों यानी के सेहतिया भैया और टीकन भाभी को स्टूडियो में आमंत्रित किया है। नमस्कार भैया जी और भाभी, आपका भी स्वागत है।
4: नमस्ते आरजी
3: जी, स्वागत है आपका भाभी और भैया। तो इस मृत्यु दर का कारण क्या है?
5: आप दोनों लोग हमें ना बुलाते तो भी हम आ जाते हैं, क्योंकि हम अभी दिल्ली से आए हैं एक सेमिनार अटेंड करके। वहाँ पूरी चर्चा इसी मुद्दे पर थी कि नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी कैसे लाई जाए। नवजात बच्चों के लिए सबसे जोखिम भरा समय जन्म के बाद का पहला महीना, खासकर पहला दिन और पहला सप्ताह होता है। हमें बताया गया है कि WHO के अनुसार अधिकतर नवजात मौतें जीवन के पहले सप्ताह में होती है, और इनके प्रमुख कारण हैं समय से पहले जन्म, जन्म के समय सांस लेने में दिक्कत, संक्रमण और जन्मजात समस्याएं।
4: अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो गया है तो अब सबसे बड़ा काम हो गया है, बच्चा और माँ दोनों ठीक हैं। लेकिन सच तो ये है कि बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा उसकी पूरी जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर कम हुई है, लेकिन आज भी कई नवजात बच्चे ऐसी वजहों से अपनी जान गंवा देते हैं जिन्हें सही जानकारी और समय पर देखभाल से रोका जा सकता है।
3: तो सेहतिया भैया, आप ये बताइए कि ये गोल्डन आवर और या ये सुनहरा घंटा क्या है? क्या पहला घंटा ही गोल्डन आवर कहलाता है?
5: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे, बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत अहम होता है। इसी समय ये तय होता है कि बच्चा सुरक्षित रहेगा या उसे संक्रमण, ठंड लगने से सांस की दिक्कत या दूसरी परेशानियों का खतरा बढ़ जाएगा।
3: यानी ये सिर्फ एक घंटा नहीं बल्कि बच्चे के पूरे भविष्य की नींव है।
4: जी हाँ, इस पहले घंटे में कुछ बहुत जरूरी काम किए जाते हैं, जैसे बच्चे को तुरंत माँ के सीने से लगाना, उसे गर्म रखना, सांस चल रही है सही से या नहीं ये भी देखना, और सबसे जरूरी, जन्म के पहले घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चा का पहला टीका माना जाता है। ये बच्चे के रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है और कई बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है।
5: और अच्छी बात ये है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें बहुत सरल हैं। सही जानकारी, परिवार का सहयोग, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग, ये सब मिलकर नवजात बच्चों की जान बचा सकते हैं।
3: तो साथियों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम विस्तार से समझेंगे नवजात बच्चे की देखभाल कैसे करें, बच्चे को गर्म क्यों रखना जरूरी है, स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं और परिवार क्या सावधानियां रख सकता है इन सभी से बचाव के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ।

0: स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम यानी कि सेहत सही और लाभकारी में। आज हमारी अपनी टीकन देवी और सेहतिया भैया दोनों हमें बताएंगे कि जन्म के पहले घंटे में क्या करना जरूरी है, माँ का पहला दूध क्यों इतना महत्वपूर्ण है और परिवार नवजात बच्चों को सबसे मजबूत शुरुआत कैसे दे सकता है। लेकिन सेहतिया भैया, अक्सर लोग पूछते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चों को कौन कौन से टीके लगते हैं, क्या ये भी उतने ही ज़रूरी हैं?
1: बिल्कुल ज़रूरी है। जिस तरह माँ का पहला दूध बच्चे की पहली सुरक्षा है, उसी तरह जन्म के समय दिए जाने वाले टीके भी बच्चे को कई गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में पहला कदम होते हैं।
2: भारत के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जन्म के समय कुछ महत्वपूर्ण टीके मुफ्त में दिए जाते हैं। इनमें BCG, हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक और ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV की शून्य खुराक शामिल है।
1: इन टीकों से बच्चे को TB, हेपेटाइटिस बी और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलनी शुरू होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जन्म के बाद बच्चे का टीकाकरण समय पर करवाया जाए और उसका टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखा जाए।
0: यानी बच्चे की मजबूत शुरुआत के लिए दो बातें साथ साथ जरूरी हैं, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और समय पर जन्म खुराक वाले टीके।
1: मैं भी यहाँ एक बात साफ करना चाहूँगा, बच्चे के दिमाग का विकास बाद में शुरू नहीं होता है, बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। वह माँ की आवाज़ पहचानता है, स्पर्श महसूस करता है, दूध पीता है, सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए नवजात देखभाल केवल बीमारी से बचने की बात नहीं है, यह बच्चे के दिमाग, शरीर और भावनात्मक विकास की नींव है।
0: टीकन भाभी, बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे अभी क्या समझ आता होगा, लेकिन आप कह रही हैं कि जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे के विकास की शुरुआत होने लगती है।
2: बिल्कुल, बच्चा भले ही बोल ना सकता लेकिन वो महसूस तो कर सकता है ना। माँ की छाती से लगना, माँ की आवाज़ सुनना, पहला दूध पीना, ये सब उसके लिए सुरक्षा और जीवन की शुरुआत है। शुरुआती वर्षों की मजबूत नींव जन्म के पहले घंटे से ही पड़नी शुरू हो जाती है, इसलिए जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत कीमती है और इसलिए इसे गोल्डन आवर कहा जाता है।
0: तो अब बताइए कि ये गोल्डन आवर इतना जरूरी क्यों है?
1: जन्म के बाद पहले घंटे में कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा माँ की छाती से लगे और स्तनपान शुरू हो। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, या बच्चे को शुरुआती जरूरी आहार देता है, संक्रमण से बचाने में मदद करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। माँ के दूध में ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जो बच्चे के दिमाग और शरीर दोनों के विकास के लिए जरूरी हैं।
2: और यहाँ एक बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है।
0: वो क्या भाभी?
2: वो ये कि कई जगह पहला पीला गाढ़ा दूध देखकर लोग कहते हैं कि ये खराब है, इसे फेंक दो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पहला पीला दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा है, इसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि ये बच्चे की पहली सुरक्षा कवच है।
0: तो साफ संदेश ये है आपका कि पहला पील।
2: हाँ, नवजात बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए जब तक डॉक्टर कोई अलग से सलाह न दे। शहद, घुट्टी, पानी या कोई भी बाहर की चीज बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, न पानी, न शहद, न घुट्टी। माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा भोजन है।
0: और जब गर्मी है और गर्मी में बच्चे का गला सूखे या उसको प्यास लगे तो गर्मी में भी पानी नहीं देना चाहिए।
1: पहले 6 महीने तक माँ का दूध ही पर्याप्त होता है, जब तक डॉक्टर किसी विशेष स्थिति में अलग सलाह न दे। माँ के दूध में पानी भी होता है और जरूरी तत्व भी, इसलिए अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती है।
0: लेकिन अगर बच्चा बार बार रोता है तो परिवार सोचता है कि बच्चा भूखा है।
2: हर रोना भूखा नहीं होता, बच्चा गीलापन, गर्मी, ठंडक, नींद या पेट की असहजता या गोद की जरूरत से भी रो सकता है। शुरुआती दिनों में बार बार दूध पीना भी सामान्य है, माँ को शांत माहौल, पानी, खाना, आराम और परिवार का भावनात्मक साथ चाहिए, ताने नहीं चाहिए।
0: यानी माँ की सेहत और बच्चे की सेहत अलग अलग नहीं है।
2: बिल्कुल, अगर माँ थकी है, भूखी है, डरी हुई है या लगातार दबाव में है तो स्तनपान भी प्रभावित हो सकता है। परिवार को माँ को संभालना चाहिए, सिर्फ सलाह देना काफी नहीं बल्कि काम में हाथ बटाना भी जरूरी है।
1: पिता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिता माँ को पानी दे सकता है, खाना खिला सकता है, रात में सहयोग कर सकता है, रिश्तेदारों की अनावश्यक सलाह से माँ को बचा सकता है और बच्चे की देखभाल में शामिल हो सकता है। नवजात देखभाल केवल माँ का काम नहीं है।
0: अब बात करते हैं त्वचा से त्वचा संपर्क की। सेहतिया जी, ये क्या होता है और आखिर में इसकी जरूरत क्यों है?
1: त्वचा से त्वचा संपर्क का मतलब है कि बच्चे को माँ या देखभाल कर्ता की छाती से सीधे लगाया जाए सुरक्षित तरीके से। इसी को कांगारू केयर कहते हैं। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है, वह सुरक्षित महसूस करता है और स्तनपान में भी मदद मिलती है। या खासकर कम वजन वाले या समय से पहले जन्म बच्चों के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है।
2: बच्चा माँ की धड़कन सुनता है, माँ की गर्माहट महसूस करता है और शांत होता है। ये केवल शरीर की गर्माहट नहीं है बल्कि ये भरोसे की गर्माहट है। बच्चे के दिमाग और भावनात्मक विकास के लिए भी ये बहुत अच्छा है।
0: भैया, क्या पिता भी ऐसा कर सकते?

0: हाँ, सही तरीका सीखकर पिता भी त्वचा से त्वचा संपर्क दे सकते हैं, खासकर जब माँ को आराम चाहिए या वह थकी हुई हो। लेकिन तरीका स्वास्थ्य कर्मी से सीखना चाहिए। बच्चे की नाक और मुंह खुले रहें, बच्चा दबे नहीं और वह आराम से सांस ले रहा हो, ये ध्यान रखना जरूरी है।
1: पिता की भूमिका जन्म के पहले दिन से शुरू हो जाती है। सिर्फ खर्च उठाना पिता की भूमिका नहीं है, बच्चे को गोद में लेना, माँ का साथ देना, बच्चे को गर्म रखना और माँ को भावनात्मक सहारा देना, ये भी पिता की जिम्मेदारी है।
2: साथियों, अब हम कुछ आम गलतफहमियां दूर करते हैं। पहली गलतफहमी, पहला पीला दूध खराब होता है।
1: और सच्चाई कि पहला पीला दूध बहुत लाभकारी होता है, इसे बच्चे को जरूर देना चाहिए।
2: और अब दूसरी गलतफहमी, नवजात को शहद या घुट्टी देना जरूरी है।
0: पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, जब तक डॉक्टर अलग सलाह न दे।
2: तीसरी गलतफहमी, माँ का दूध कम है तो तुरंत ऊपर का दूध शुरू कर दें।
1: और सच्चाई ये है कि पहले सही स्तनपान की सहायता लें, माँ को दोष ना दें, स्वास्थ्य कर्मी से मदद लें।
2: अब आते हैं चौथी गलतफहमी पर, नवजात देखभाल सिर्फ माँ का काम है।
1: बिल्कुल नहीं, पिता, दादी, नानी, परिवार और स्वास्थ्य कर्मी, ये सब की भूमिका होती है।
2: अब एक जरूरी सवाल, किन संकेतों पर परिवार को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए?
0: अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बहुत सुस्त है, तेज या कठिन सांस ले रहा है, शरीर बहुत ठंडा है या बहुत गर्म लग रहा है, त्वचा नीली पड़ रही है, दौरा जैसा लग रहा है, लगातार रो रहा है या बिल्कुल नहीं रो रहा है, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। नवजात बच्चे पर घरेलू प्रयोग नहीं करने चाहिए।
1: और अगर बच्चा समय से पहले जन्मा है या उसका वजन कम है तो और सतर्क रहना चाहिए। ऐसे बच्चों को नियमित जांच, स्तनपान, गर्माहट और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह की जरूरत होती है।
2: ये पूरी बातचीत हमें क्या याद दिलाती है?
0: ये याद दिलाती है कि बच्चे का दिमाग, शरीर और भविष्य शुरुआती देखभाल से बनता है। अच्छी देखभाल केवल खाना नहीं है, इसमें स्तनपान, सुरक्षा, स्पर्श, साफ सफाई, टीकाकरण, माँ का स्वास्थ्य और परिवार का सहयोग सब शामिल है।
1: हर घर 5 संकल्प ले सकता है। गर्भवती महिला को अच्छा भोजन और आराम देंगे, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने में मदद करेंगे, पहला पीला दूध नहीं फेंकेंगे, पहले 6 महीने केवल और केवल माँ का दूध ही देंगे और माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे।
0: 6वां संकल्प भी जोड़ लीजिए, बच्चे के जन्म के बाद दिए जाने वाले सभी जन्म खुराक टीके समय पर लगवाएं और आगे का पूरा टीकाकरण कैलेंडर भी पूरा करवाएंगे।
1: सही कहा, माँ का दूध और समय पर टीकाकरण दोनों मिलकर बच्चे को जीवन की सुरक्षित शुरुआत देते हैं।
2: बहुत स्पष्ट बात है कि बच्चे के जीवन का पहला घंटा पूरे जीवन पर असर डाल सकता है। माँ का दूध, माँ पिता का स्पर्श, परिवार का सहयोग और समय पर स्वास्थ्य सेवा, यही बच्चे की मजबूत शुरुआत है।
0: और मैं एक बात फिर कहूँगा, अगर स्तनपान में दिक्कत हो तो शर्म या डर की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी से सहायता ले, ये सीखने की प्रक्रिया है।
1: माँ को ताना नहीं, सहारा चाहिए। बच्चे को घुट्टी नहीं, माँ का दूध चाहिए। परिवार को अफवाह नहीं, बल्कि सही जानकारी चाहिए।
2: साथियों, आज की 5 जरूरी बात याद रखिए। पहली, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने की कोशिश करें। दूसरी, पहला पीला दूध बच्चे को दें और उसे फेंके नहीं। तीसरा, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दे। चौथा, त्वचा से त्वचा संपर्क बच्चे को गर्माहट और सुरक्षा देती है, जिसे कंगारू केयर विधि भी कहते हैं। पांचवा, पिता और परिवार की भूमिका बहुत जरूरी है।
1: और 6ठी बात, खतरे के संकेत दिखे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं, इंतजार न करें।
2: इसी संदेश के साथ आज का सेहत सही लाभ कई यहीं समाप्त करते हैं। याद रखिए, बच्चे की अच्छी शुरुआत महंगे साधनों से नहीं, सही जानकारी और सही देखभाल से होती है। पर जाने से पहले हम सब मिलकर लेंगे सेहत की शपथ।
3: अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई
2: पहला दूध पहला प्यार
1: पहला घंटा जीवन का आधार
2: माँ का साथ पिता का हाथ
1: बच्चे को मिले सुरक्षित शुरुआत
2: सेहत सही लाभ कई।

0: निभाए।
1: गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश
1: जीतेगा। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं,
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूले 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: अरे सुना?
1: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840 3395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88404-3395-84-8840-3395-84। 88404-3395-84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और हमारी इस बुलंद आवाज को यस आई नो आप मिस कर रहे थे, इसीलिए फटाफट मैं आ गई हूँ और मेरे साथ है हमारी हीलिंग पावर वाली अंशिका यानी आरजे अंशिका।
3: बिल्कुल
2: अच्छा नाम दिया ना,
3: बहुत ही अच्छा नाम दिया।
2: पूछो क्यों दिया?
3: क्यों?
2: क्योंकि मुझे लगता है कि एक गुड वाइब्स जो होती है ना हर किसी में होती है, जब हम परफ्यूम लगाते हैं ना तो परफ्यूम लगाते हैं तो उसका असर हमारे चारों तरफ होता है ना, वो हर कोई स्मेल करता है, बट जो गुड वाइब्स होती हैं किसी को अच्छे से कोई मोटिवेट करता है, कोई पुश करता है और किसी को बड़े अच्छे ढंग से कोई अगर हील करता है तो वो इंसान चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो चाहे बच्चा हो वो उसके लिए कोई खास बन जाता है। तो अंशिका ने इन दिनों मुझे बहुत हील किया है, इसीलिए मैं वो हीलिंग पर्सन इसको बोलती हूँ और क्योंकि इसने मेरे लिए दिल से दुआ करी है, मतलब आई नो यस मुझे फील होता है कि इसने मेरे लिए दिल से दुआ करी है और शायद मैं अपने आप को इतना अच्छे से हील कर पाई हूँ फॉर मेरा मेंटल हेल्थ क्यों ना हो, चाहे मेरा फिजिकल हेल्थ क्यों ना हो, मेरे गुस्से पे कंट्रोल क्यों ना हो एंड इसके प्रति जो फीलिंग थी वो चेंज हुई है। पहले बहुत गुस्सा करती थी लेकिन वो बहुत चेंज हुई है। अब पता नहीं क्या ये टोना वोना करती है मेरे ऊपर, हो सकता है या जो भी हो,
3: कर सकते हैं, कर सकते, नो डाउट।
2: अच्छा तो मुझे तो चिंता हो गई फिर ये है ना, तो ऐसा कुछ है तो
3: मैंने कल आपको हाजमोला दिया था
2: तभी तो नहीं। हाँ मुझे लग रहा है वो हाजमोला कुछ ज्यादा असर कर गई मेरे पे तो इसीलिए।

0: एंड प्यारे से मौसम में, ये जो मौसम है ना कसम से यार किसी की याद दिलाता है। लेकिन जब हम किसी को याद करते हैं और वो इंसान हमारे पास नहीं हो तो सिर्फ और सिर्फ हम ये कह के चुप हो जाते हैं, ठीक है यार कोई नहीं, शायद वो कहीं बिजी होगा।
1: सबसे पहले तो मौसम जब भी याद दिलाए ना तो उसे हमेशा अच्छी यादें याद दिलानी चाहिए। तो ये मौसम याद दिलाता है बचपन वाली बरसात। और कुछ याद करने के लिए हमारे पास फिलहाल टाइम नहीं है और हम याद करेंगे भी नहीं, क्योंकि कड़वी यादों को याद करने से सिर्फ दिल दुखता है और मन में कई बार उदासी आ जाती है। और हमारे आज के दिन में उदासी की नो जगह, ना हम होंगे और ना साइड वाले को होने देंगे।
0: थैंक यू सो मच। तो आज इस प्यारे से मौसम में हम एक साथ दो विश करेंगे, एक तो हैप्पी मॉनसून बोलेंगे एंड एक बोलेंगे शुभ दोपहर।
1: ओके, तो पहले हैप्पी,
0: हैप्पी वाला, ठीक है। तो एक साथ एक ही फ्रेम में हम दोनों लोग क्या बोलेंगे, हैप्पी मॉनसून। एंड दूसरा जो हमारे प्रोग्राम की मेनली औपचारिकता होती है आप सभी को विश करने की, तो एक साथ एक ही फ्रेम में शुभ दोपहरिया।
1: शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और आ गए हैं हम करने मीठी मीठी बात, क्योंकि आज होगी
0: नो बकवास
1: बरसात।
0: अच्छा,
1: नो बकवास भी हो सकता है। वैसे यादों की बरसात इसलिए क्योंकि बरसात एक ऐसा मौसम कि जब भी कोई याद करता है तो उसे अपनी सबसे अच्छी वाली यादें याद आती हैं। और हमारी सबसे अच्छी वाली यादें जुड़ी होती हैं हमारे बचपन से। और आज सुबह मैंने कुछ ऐसा किया भी कि मैंने सोचा क्यों ना बचपन को जिंदा किया जाए। तो बचपन को हमने ऐसे जिंदा किया कि नोटबुक उठाई, उसमें से कुछ पेजेस फाड़े और मैंने आज बहुत बहुत बहुत साल बाद नाव बनाई थी सुबह।
0: आहा।
1: और वहाँ पे हमारे छत पे मतलब जगह है थोड़ी सी, तो वो गहरी जगह है तो वहाँ पे पानी भर जाता है, तो वहाँ पानी भरा हुआ था, मतलब काफी भरा हुआ था, लग रहा था कि हाँ आज ये है। तो पापा ने बोला कि मैं साफ कर देता हूँ, तो मैंने कहा नहीं, साफ करने से पहले मुझे कुछ करना है तो आप अभी मत साफ कीजिएगा। और मैंने उसमें चार पांच नाव बनाई और डाली। तो जब मैं नाव बना रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ मैम कि मैं भूल गई हूँ बनाना, क्योंकि मुझे उतना नहीं ध्यान आ रहा था। लेकिन पापा ने थोड़ी हेल्प की और फिर नाव बन गई। तो मेरे पापा ने मुझे टोका भी कि बचपन में तो तुम फटाफट से बना लेती थी और अब भूल गई हो। तो मैंने कहा हाँ, वो पहली वाली बात तो रही नहीं, लेकिन फिर भी मजा आया। पापा के साथ बैठी थी इसलिए दुगना मजा आया, क्योंकि बचपन में भी जब मैं अटकती थी तो पापा ही मुझे हेल्प करते थे और आज भी उन्होंने हेल्प की। तो इस तरह छोटी छोटी बातों से अपने बचपन को जिंदा करना चाहिए। क्योंकि जब मैंने आज ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 8-9 साल बाद बनाई तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि लग रहा था कि हाँ अंदर जो छुपा हुआ था उसे निकाला है फिर से, तो अच्छा लगा। हमेशा उन यादों को याद करिएगा जो आपको मिठास देते हैं, और जो कड़वाहट देते हैं उनकी आपके दिल में बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ कड़वाहट देते हैं और आपके मीठे पलों को भी कड़वा कर देते हैं।
0: एग्जैक्टली, जो वर्तमान है हम उसे अच्छा सा बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, लेकिन जो एक हमारा भूतकाल जो होता है, जो हमारा पास्ट होता है, वो हमारे फ्यूचर को ख़राब बाद में करता है, लेकिन सबसे पहले वो प्रेजेंट को ख़राब करता है। तो इसीलिए जो पास्ट था वो पास्ट ही रहेगा, जो फ्यूचर है वो फ्यूचर ही रहेगा, लेकिन जो हमारा प्रेजेंट है उसको हम अच्छे से अपने एक हीलिंग पावर से उसको हम मजबूत कर सकते हैं। एंड जो रिश्ते हमारे पास हैं हम उन्हीं के साथ खुश रह करके उन्हें भी खुशी दे सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो वही हो गया है टाइम। क्या करने का?
0: आप तक पोयम पहुंचाने का, और आज की पोयम बहुत ही अच्छी वाली है। तो
1: अभी शुरुआत के लिए कुछ पहले वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं उसे,
0: एक माहौल बना लेते हैं।
1: हाँ, पहले माहौल बनाते हैं। तो प्यारी प्यारी बरसात और प्यारी प्यारी बूंदों से हो रही है शुरुआत। तो चलिए सुनते हैं प्यारी सी पोयम आरजे समता के साथ।
0: ओ माय गुडनेस, वाओ, थैंक यू सो मच अंशिका। तो चलिए, मुझे लग रहा है कि रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ के लिए भी मुझे जो दो चार लाइन रोज निकाल के कि रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ के लिए भी मुझे जो दो चार लाइन रोज निकाल के अब बोलनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे रोज मिल जाती है बहुत ही अच्छी वाली एक जिसे कहते हैं ना प्रेजेंटेशन मिल जाती है।
1: नहीं, क्योंकि ये सिर्फ मैं बोलूँ।
0: अच्छा, सिर्फ आप बोलेंगे,
1: सिर्फ आपके लिए।
0: चलो, तो थैंक यू सो मच।
1: Yes.
0: तो आइए, बचपन की बरसात, ओ माय गॉड, बहुत ही प्यारी सी पोयम है, तो शुरू करें।
1: Yes.
0: बादल घिरे घुमड़ घुमड़ कर, ये तो मुझे गाना याद आ गया, चक दुम दुम वाला। आज चक दुम दुम वाला गाना सुनेंगे क्योंकि उसमें बारिश हो रही है ना। बादल घिरे घुमड़ घुमड़ कर, छाई ठंडी ठंडी रात, उमंग लिए मन में दौड़े हम, आई फिर से वही बरसात। कागज की वो नन्ही कश्ती पानी में तैरती जाती थी, छोटी छोटी

0: बूंदों की फुहार मुझको खूब लुभाती थी। मिट्टी की वो सौंधी खुशबू, छपाक से पानी में कूद जाना, दोस्तों के संग मिलकर सारा आसमान सर पर उठाना, छतों से वो गिरता पानी, वो भीगे कपड़े और बस्ता, छतों से वो गिरता पानी और वो भीगे कपड़े और बस्ता। बस्ता से याद आया, आज सभी के मुंह से हम लोग सुनते हैं बैग, है ना, बुक्स, पेन, और हम लोग के टाइम पर क्या होता था? बस्ता,
1: बस्ता,
0: किताब, कलम, किताबें, कॉपी, मतलब ये, मतलब बस्ते से याद आ गया कि मेरी मम्मी आज भी मेरे घर में ट्विंकल बच्चों को कहती है तुम्हारा बस्ता कहाँ है। हाँ। तो मेरे बच्चे घर में कहते हैं अरे दादी बस्ता नहीं बैग, बोले तुम्हारे लिए बैग होगा, हमारे लिए तो वो बस्ता ही है, आज भी बस्ता है।
1: बिल्कुल।
0: और एग्जैक्टली बस्ता से कुछ याद आया, जैसे नाम है ना बस्ता, तो वाकई में उसमें एक उमंग, एक प्यार, एक शालीनता, एक अपनापन, एक कुछ नया करने की चाह, और बहुत सारे ही खुशियों का एक पैकेज उसी में बस्ता था।
1: बिल्कुल मैम,
0: समझ में आया?
1: बिल्कुल सही कहा।
0: बस्ता का मतलब बस्ता कि ये सारी चीजें उसमें ही बसती थी। आज हो गया है बैग, आज हो गया है
1: बैग,
0: तो बैग का मतलब होता है बैक, ठीक है, तो यानी कि वो पीठ पे ही रहेगा और पीठ से फिर नीचे उतरेगा सीट पे और फिर घर आकर के स्टोर रूम में रखा जाएगा। बैग का मतलब बैग
1: और बस्ते का मतलब बस्ता।
0: तो हम लोगों ने जो पढ़ाई की है वो वाकई में
1: बस्ते वाली
0: पढ़ाई की है। तो छतों से गिरता पानी, वो भीगे कपड़े और बस्ता, आज भी याद आता है मुझको वो बचपन का हसीन रास्ता। अरे क्या याद आ गया, वो याद है। मैं आज एक स्टोरी सुनाऊंगी बचपन की, ठीक है, मुझे याद दिलाना अंशिका,
1: अभी
0: ये तुम्हारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, बस मुझे बोलना कि वो बचपन का रास्ते वाली कौन सी आप स्टोरी सुना रही थी, ठीक है?
1: ओके।
0: छूट गई वो भोली मस्ती और पीछे छूट गया वो साल, बरसात की बूंदें आज भी लाती बचपन से वो सुनहरे ख्याल।
1: My God,
0: मतलब क्या चले गए यार, हम लोग तो बहुत बचपन में चले गए। मैं लोगों के मुंह से सुनती थी कि बचपन बहुत सुंदर होता है और मुझे बचपन की याद आती, तो मुझे लगता था यार बचपन तो अभी हमारा है ही, लेकिन आज रियलाइज हो रहा है कि हमने अपने बचपन को जिया है और अब हम बड़े हो चुके हैं
1: और वो कहीं ना कहीं यादें बनकर जब भी याद आती है ना तो एक कसक रह जाती है कि काश फिर से छोटे हो सकते, बट ऐसा होगा नहीं, तो बड़े रहते हैं और बड़े रहते हुए बचपन को जिंदा रखते हैं। और फटाफट से चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले सेगमेंट की तरफ, आपको बताएंगे क्योंकि आज है बहुत ही जल्दी और जल्दी के साथ थोड़ी सी एक्साइटमेंट, क्योंकि अब इसके बाद सीधा हम चलेंगे मैम की तरफ, पहले स्टोरी जानेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि आज हमारे पास टॉपिक क्या क्या है।
0: एग्जैक्टली, तो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ सुन लेते हैं, एक गाना सुना देते हैं लिसनर्स को एंड देन मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी।
1: आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है कि बोलना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, गलत के खिलाफ बोलना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना सही के लिए चुप्पी साध लेना। कहने का मतलब ये है कि गलत के खिलाफ जो नहीं बोलता है ना, जैसे मान लीजिए कोई बात हुई मैम और उसमें आपका भी नाम है कि आपने ऐसे किया, और मान लीजिए आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा, आपने कहा चलो जाने दो, रहने दो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और फिर उसमें आपका नाम आ जाता है, आप पर ब्लेम होता है। लेकिन अगर उसी गलत के खिलाफ आप आवाज उठाते हो तो ये साबित होता है कि आप सही थे। खुद को सही साबित करने के लिए हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जितना जिम्मेदार होता है गलत करने वाला, उतना जिम्मेदार होता है चुपचाप देखने वाला,
0: गलत सहने वाला।
1: अपने ऊपर गलत कभी बर्दाश्त न करें, फिर चाहे उसमें आपके रिश्ते ही क्यों ना हो रहे हो, उसके अंदर सैक्रिफाइस हो रहे हो तो हो रहे हो, क्योंकि रिश्ते वो नहीं होते जो आपके साथ, रिश्ते ऐसे होने चाहिए जो लाइफ टाइम आपके साथ हमेशा खड़े रहे, फिर चाहे आपकी गलती हो या आप सही हो। देखिए मुझे सब लोग ये कहते हैं, मतलब मेरी फैमिली में भी कहते हैं और बाहर भी कहते हैं कि तुम गुस्सा नहीं करती हो, तुम्हें गुस्सा नहीं आता है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जब आता है तो बहुत खराब वाला आता है। और ये कहने में मुझे ऑन एयर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जब भी कोई गलत बात कोई भी करता है तो वो मेरा ट्रिगर हो जाता है और तब बहुत बुरा वाला गुस्सा मुझे आता है, जिन्होंने भी मेरा वो रूप देखा है वो मुझसे आज भी नहीं बोलते हैं, उन्हें आज भी ये लगता है नहीं दूर रहो, वो तो बहुत गुस्से वाली है ना, वो तो बोल देती है। तो मैं गलत है आप इसलिए बोल देती हूँ, अदरवाइज अगर मुझे अपने रिश्तों में सही के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है तो मैं बहुत बर्दाश्त भी करती हूँ कि अच्छा छोड़ो रहने तो जाने दो ना, क्या होगा रिश्ते खराब होंगे, लेकिन एक लेवल के अब बर्दाश्त करना गलत है क्योंकि उसमें आप सेक्रीफाइस होते हैं। तो अपने गुस्से को भी जगा के रखिए क्योंकि कभी कभी उसकी भी जरूरत पड़ती है, हमेशा शांत नहीं होना चाहिए।
0: एग्जैक्टली बिल्कुल।
1: वैसे मैम शांत हो गई?
0: नहीं मैं कुछ सोच रही थी, अच्छा मैं कुछ अलग से सोच रही थी तुम्हारी बातों को लेकर के, तो इसीलिए, और मैं शांत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल शांत नहीं हूँ। मुझे जो शांत कहे वो समझ लो सागर में कंकड़ मारने जैसा है, जो बड़ी बड़ी लहरों को जो उड़ती हैं और फिर थमती हैं, तो मैं वैसी वाली सागर हूँ, और अगर छेड़ोगे तो बचोगे नहीं।
1: एक बहुत ही अच्छी सी लाइन है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पापा की परी नहीं पापा की शेरनी है हम।
0: जी हाँ बिल्कुल,
1: ये वाला होना चाहिए
0: बिल्कुल। तो चलिए यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं अपनी अपनी बचपन की जो आपके साथ शेयर करनी है। तो सुनते रहे 89.6 FM पे हम दोनों आजेस के साथ, यानी कि आजेस समटाइम आज अंशिका के साथ, स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। डिलीशियस
1: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका। क्या हाल है भाई आप सभी का? जल्दी से आ जाइए चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स से याद आया, आइए पहले देख लेते हैं कि हमारे कितने लिसनर्स आ गए हैं, तो उनका स्वागत अभिनंदन कर लेते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं।
6: तो सबसे पहले नागेश्वर जी आ गए हैं और लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, नमस्कार। और साथ ही में लिख रहे हैं, लगता है मैं सही टाइम पर आया हूँ पोयम के लिए। बिल्कुल सही टाइम पे हैं
5: आप। नागेश्वर जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप और कैसा है बाहर का वेदर? क्योंकि यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, मतलब बारिश हो रही है और इतना मस्त वाला मौसम बना हुआ है ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब क्या ही बताऊँ।
6: बिल्कुल। और साथ में नागेश्वर जी लिख रहे हैं, मुझे बरसात में नाव बनाकर चलाना अच्छा लगता था, बरसात में मेरे छत पर जो पानी भरा रहता था उसमें बहुत खेलते थे। बिल्कुल। साथ ही साथ लिख रहे हैं, बस्ता पहले टेलर से सिलवा कर आते थे।
5: ये तो बहुत, ये मतलब आप तो मतलब बहुत ज्यादा पुराने हैं। हम लोग नहीं, ऐसे नहीं, हम लोग तो मार्केट से लेते थे,
6: मतलब लाते थे खरीद करके। और फिर लिख रहे हैं, रास्ते में जब पानी भरा रहता था तो उसमें छप छप करके कूदते थे।
5: ओके, और नेक्स्ट मुझे नाम दिख रहा है अनुष्का जी का और प्रीति जी का
6: जी,
5: और एक बीच में एक नाम है
6: महक जी।
5: महक जी, तो भाई आप सभी हमारी जो भी फीमेल लिसनर्स हैं उनका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो सुन सहेली में। तो चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है बचपन का दिन, यानी बच्चों का दिन। तो ट्यूसडे के दिन हम वैसे भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आते हैं, लेकिन अभी मुझे ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा था एक चीज़ बताऊंगी मैं आपको।
6: हाँ, और मैम ने कहा था कि वो रास्ते वाली स्टोरी बताएंगी।
5: रास्ते वाली स्टोरी बताऊंगी, तो रास्ते वाली स्टोरी ये है कि जब हम लोग स्कूलिंग जाते थे ना, तो बहुत ज़्यादा स्कूल हम लोगों के घर से दूर नहीं हुआ करता था, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। तो वॉकिंग डिस्टेंस होने के कारण से हम लोगों को कभी ये नहीं होता था कि पापा छोड़ने चल रहे हैं या फिर भाई लोग छोड़ने चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। दादू मेरे कभी कभी चलते थे छोड़ने के लिए, क्योंकि दादू की हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना कि फेवरेट औलादों में से एक क्योंकि मैं अपने घर की सबसे बड़ी और सबसे पहली मतलब जैसे कहते हैं ना पोते पोतियों में, तो मैं सबसे बड़ी और सबसे पहली औलाद हूँ, तो इस वजह से मुझे दादा दादी का असीम प्यार मिला। तो उसकी वजह से वो मुझे छोड़ने चलते थे, लेकिन जब हम लोग बड़े हो गए, हम लोग क्लास 5th-6th में पहुँच गए, तो हम लोग ना घर से बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मतलब लगभग 5 से 10 मिनट लगता था केवल। लेकिन वो 5 से 10 मिनट हम लोगों को बढ़ा चढ़ा के 15 से 20 मिनट करके ही हम लोग घर आते थे।
6: हाँ।
5: चाहे वो गर्मियों की तेज धूप क्यों ना हो, बारिश क्यों ना हो, और या फिर कोई भी और मौसम क्यों ना हो। तो एक दिन क्या हुआ कि अच्छा मतलब हम लोगों की जो भी मतलब कॉलेज की जो स्कूलिंग की जो टाइमिंग हुआ करती थी न्यू सेशन की, वो जुलाई में हुआ करती थी।
6: जी मैम।
5: 90s किड्स जितने भी हैं सभी को पता होगा कि पहले जो होता था, जो ये अभी जो एक शिक्षा प्रणाली जो अभी न्यू चली, जिसके कारण से CBSE पैटर्न हो गया, ICC हो गया, जो भी पैटर्न्स हो गए वो अप्रैल से नया सेक्शन मानते हैं
6: जी मैम।
5: लेकिन 90s में क्या होता था, 90s किड्स जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के टाइम पर क्या होता था कि जुलाई में नया सेक्शन शुरू होता था, तो जून में मई जून में क्या होता था कि मई की फर्स्ट वीक तक हम लोग के रिजल्ट आते थे और दो महीने की पूरी पूरी छुट्टी हुआ करती थी। फिर जब हम लोग के मतलब जैसे हम लोग पास आउट हो जाते थे, रिजल्ट्स आते थे, फिर हम लोगों को जून में बुक्स वगैरह जब सेलिंग होती थी, बुक्स लेने जाते थे और फिर उस पर कवरिंग होती थी, कवर नए नए कॉपी पे, बुक पे, नए नए बैग, नए नए शूज़, नई नई ड्रेसेस, तो ये सब पूरा 15 दिन तक पूरा चलता था। जुलाई जो मंथ है वो आप सभी को पता है कि मॉनसून आता है, जुलाई और अगस्त में मॉनसून आता है, तो उसमें बारिश तो पड़ना लाजिम है, बारिश तो होती है
6: बिल्कुल।
5: और जो अभी वाला बारिश का मौसम है, मुझे लग रहा है कि अब वेदर भी वैसे चेंज हुआ है, पहले बारिश बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो अब स्कूलिंग का टाइम भी हमारा सुबह का 7 बजे, अब स्कूल के टाइमिंग पे हम लोग की वो एक्साइटमेंट तो होती थी कि भाई नया नया हम लोग बैग लेके जाएंगे, नई कॉपीज बुक लेके जाएंगे, नई नई ड्रेसेस पहन के जाएंगे, और सबसे ज़्यादा नया हम लोगों को क्रेज़ होता था कि नए नए पेज पे लिखना, और नया टिफ़िन होता था, नई बॉटल्स होती थी। तो एक बार की बात है कि हम लोग वहाँ से छुट्टी हुई और बारिश मतलब जैसे प्रेयर होती थी छुट्टी में,
6: जी जी,
5: छुट्टी में प्रेयर हुई और हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, तो हम लोगों मतलब क्योंकि ये भी कहा गया कि जो पास के बच्चे हैं वो जल्दी से निकल जाएं, और जो बस वाले बच्चे थे और जो क्या कहते हैं रिक्शा वाले बच्चे थे उनको रोक दिया जाता था, या जिनके पेरेंट्स आते थे उनको रोक दिया, जो लोग आसपास के थे उन्हें छुट्टी जल्दी मतलब बोल देते थे कि आप लोग निकल जाओ। तो हम लोग आराम से निकले, हम लोगों के साथ में कम से कम 4-5 पूरा झुंड होता था फ्रेंड्स में। तो हम लोग निकले जैसे बाहर, तो बारिश अचानक से बहुत तेज़ हो गई, बारिश तेज़ हो गई, तो हम लोगों का ये होता था कि वॉकिंग डिस्टेंस में तो मतलब मुश्किल से 2 से 3 मिनट में हम लोग घर पहुंचते थे, लेकिन अब हम लोगों की आदत तो हम लोग पूरा घूम के आते थे, मतलब एक लॉन्ग चक्कर लगा के हम लोग घर पहुंचते थे। उस दिन वो लॉन्ग चक्कर हम लोगों को भारी पड़ गया, महंगा पड़ गया, क्योंकि अभी नई नई कॉपियाँ थी, नए नए बुक्स थे, अब बारिश पड़ी तो बारिश पड़ने के कारण से हमारा पूरा का पूरा बैग, पूरा बस्ता हम लोगों का पूरा गीला हो गया,
6: भीग गया।
5: अब हुआ ये कि बैग से पानी टप टप होने लगा, इतनी ज्यादा तेज बारिश हो गई। भाई देखो बैग तो सुखा सकते हैं, ठीक है, ड्रेस भी धुल करके डाल देते हैं हम लोग, सूख जाती है, शूज भी बिल्कुल गंदे हो गए थे, वो भी सब चीज हो गई। अब बारी आती है कॉपी और बुक्स की। बाप रे बाप, मुझे याद है कि मैं हम लोग घर गए और हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में 2 से 3 ही पेजेस हर कॉपी में लिखे हुए थे और वो इंक वाली हम लोग पेन यूज करते थे, तो ऐसे पूरी नीली नीली कॉपी हो गई, पूरा का पूरा मिट गया, और वो जो हम लोगों को डांट पड़ी, मम्मी ने हम लोगों को मारा तक, मतलब उनके हाथ में जो आया वो हम लोगों को फेंक फेंक के मारा कि तुम लोगों को जब पता था बारिश शुरू हो गई तो तुम लोग 10 मिनट रुक नहीं पा रहे थे और बारिश थम जाती फिर तुम लोग निकलते वहाँ से स्कूल से, ये वो, और बहुत हम लोगों को डांट पड़ी। और उसके बाद से हम लोग के बाऊजी ने बस हम लोगों को वही लाड प्यार दिया, कहा कि अरे अब बच्चों की क्या गलती है, रास्ते में थे, तो फिर से हम लोगों ने उसको कॉपी पे फिर नए कवर चढ़ाए गए, कॉपियों को सुखाया गया और फिर से हम लोगों ने उसमें लिखा। पर उस दिन से हम लोगों ने ये सबक ले लिया कि अगर बारिश हो रही है तो हम लोग भी वहाँ पर रुक जाएंगे क्योंकि घर जाएंगे तो फिर मम्मी का प्रसाद जो हम लोगों को मिलेगा तो
6: होलसेल में
5: मिलेगा तो वो मिलेगा ही। बट वो दिन आज भी जब सोचते हैं ना तो एक जैसे कहते हैं ना कि जब कुछ चीज़ें होती हैं कि बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं बॉडी के, बस वही चीज़ें होती हैं मेरे साथ, तो मतलब ऐसे लगता है यार कि काश वो दिन वापस आ जाएं, काश वो हमारी फ्रेंड्स वापस आ जाएं जो हम लोग मस्ती करते थे, मिलते थे, कोई फिक्र नहीं होती थी कि आगे क्या होने वाला है कुछ।
6: बिल्कुल, वो दिन जो होता था, वो 10 मिनट जो होते थे या आधा घंटा जो भी मिल जाता था, लगता था कि बस यही लाइफ है, अभी जी लो और फिर बाद की देखी जाएगी यार बाद में।
5: बस
6: मतलब हम लोगों ने, मतलब मैम ने याद दिला दिया मुझे भी कि जब छोटे थे तो बारिश में खेलना भाई मुझे तो बहुत पसंद था, और मेरे साथ जो थे वो मेरे चक्कर में मार खा जाते थे क्योंकि वो लोग मतलब दो एक थी, वो बड़ी सीधी सी होती थी, अरे ना खेलो अंशिका यार, कपड़े गंदे हो जाएंगे तो मम्मी चिल्लाएंगी तो फिर क्या करेंगे, और मेरा होता था यार मम्मी साफ करेंगी ना, मुझे थोड़ी ना साफ करना है घर जाके, तो बहुत मस्ती करते थे, लेकिन ये था कि हाँ मतलब बहुत अच्छा लगता था। और अब जब कॉल करती हैं और पूछती हैं, तो जब मैं सिंसियरिटी वाली बातें उनसे करती हूँ तो वो मुझसे यही कहती हैं तुम इतनी सिंसियर हो गई, तो फिर मुँह से निकलता है अब बड़े हो गए,
5: अब बड़े हो गए,
6: अब बचपन तो रहा नहीं कि तब ये नहीं होता था ना कि घर जाके मुझे ही कपड़े धोने हैं। अब अगर मैं गंदे करूंगी तो मेरे मन में ये भी होता है कि ये तो मैं खेल के गंदे करूंगी और फिर घर जाके धोना किसे है, मुझे। तो ठीक है, अच्छा है बचपन,
5: बट बहुत सारी चीजें अगर हम लोगों को बचपन में सिखाई गई ना अंशिका, तो उसका एक बेनिफिट भी हुआ जिसको जो आज हम लोग बहुत अच्छे से वो उसको यूज कर पा रहे हैं, मतलब जैसे लगता है ना कि हम लोग उसको यूज कर पा रहे हैं।
6: बिल्कुल। तो ये थी स्टोरी, और स्टोरी थी बहुत जबरदस्त, मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा था काश छोटे बच्चे हो जाते फिर से। तो बहुत ही प्यारी थी और बहुत ही प्यारी प्यारी स्टोरी के साथ चलते हैं, एक प्यारा सा सॉन्ग भी सुनते हैं।
5: बिल्कुल।
6: और सॉन्ग के उस पार आएंगे टॉपिक के साथ, टॉपिक क्या है वो भी बताएंगे कि आजकल के बच्चों में जो एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज आ गई है कि वो अपने रूप रंग को, अपनी आर्टिफिशियलिटी को, जो बाहर का एक वाह वातावरण है उसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और कहीं ना कहीं अंदर की खूबसूरती जो खो गई है उसे ढूंढने के लिए कुछ टिप्स भी बताएंगे, और साथ ही साथ बाहर की खूबसूरती कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है या नहीं रखती है स्पेशली बच्चों में, ये भी बताएंगे। लेकिन इन सबको बताने से पहले मीठा मीठा प्यारा प्यारा मीठी मीठी और प्यारी प्यारी
5: एक ब्रेक।
6: मीठी मीठी प्यारी प्यारी इसलिए क्योंकि मेरे बगल में जो बैठी हैं वो भी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी हैं, इसलिए मैंने जेंडर चेंज कर दिया।
5: एक्चुअली बहुत दिन हो गया गुस्सा नहीं किया ना इसलिए मैं मीठी भी हूँ, प्यारी भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, ठीक है। हाँ, और आजकल
6: मैम सॉल्टी नहीं,
5: और आजकल बहुत अच्छी भी लगने लगी हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है।
6: तो अच्छी तो लगती, मतलब अच्छी तो आप हमेशा लगती है, अच्छी तो आप गुस्से में भी लगती है, आपको पता है।
5: क्या बात बोल दी तुमने, चलो ठीक है, अब ज्यादा बटरिंग नहीं। लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आते हैं हम दोनों की फिर से चिटचैट और बहुत सारा टॉपिक, बस हम यूं गए और यूं आए।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9970931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका। वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो फटाफट शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का बहुत ही अच्छा वाला है।
4: बिल्कुल, तो आज का टॉपिक ये है कि बाहरी सुंदरता जो होती है, यानी कि वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन बच्चों में उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती।
0: हाँ।
4: और ना होनी चाहिए। देखिए, जब हम छोटे थे तो हमें नहीं पता होता था कि हम कैसे दिख रहे हैं। मतलब कभी कभी तो
0: दांत टूटे हैं, बाल बिखरे हैं, बालों में जुएं पड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या
4: हुआ। भूत बनके भी कभी कभी हम
0: काजल इतना मोटा मोटा लगा देती थी मम्मी लोग, तो कभी यही नहीं करते थे। मुझे तो लग रहा है शीशा ही नहीं देखते थे यार।
4: बिल्कुल,
0: यही है।
4: और मैटर भी नहीं करता था।
0: हाँ।
4: कि कोई क्या कह रहा है, कि
0: कोई क्या
4: से लग रहे हैं।
0: बिल्कुल।
4: लेकिन आजकल के बच्चों में मैंने देखा है मैम कि बहुत मैटर करता है। और क्यों मैटर करता है, उसकी वजह सबसे बड़ी वजह होती है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया। छोटे सबसे पहली बात तो मैं आज कहना चाहूंगी कि देखिए, बच्चे हैं वो और छोटे हैं। आजकल कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही कर देते हैं, अरे आओ आओ रेडी हो गया, आओ चलो तुम्हारी वीडियो बनाते हैं,
0: रील बनाते हैं।
4: हाँ, रील।
0: आजकल तो ये है, रील बनाते हैं।
4: रील आप बनाइए, लेकिन बच्चों को उसका इतना आदी मत कर दीजिए कि वो तैयार। देखिए, छोटे छोटे बच्चों में तैयार होना, उनका ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करना, अगर वो लड़की है तो लिपस्टिक यूज करना, या ऐसे आप छोटे छोटे सोचिए, 6 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को आप मस्कारा लगा के और पूरा फाउंडेशन उनको सब लगा के रेडी क्यों कर रहे हैं? अभी ना उन्हें उसकी नीड है और न लगाना चाहिए। मतलब ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कई बार बड़ों की स्किन पे रिएक्ट कर जाते हैं, तो उन्हें बहुत स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। मेरी फ्रेंड है मैम, उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो वैसे तो वो घर की ही चीज़ें यूज़ करती है, लेकिन अगर बाहर का थोड़ा सा भी कुछ क्रीम वगैरह यूज़ कर लेती है कभी, तो रिएक्शन हो जाता है। मतलब वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करती है, फिर ही कुछ यूज़ करती है।
0: बिल्कुल।
4: उसकी स्किन सेंसिटिव है, तो उसी तरीके से बच्चे की तो बहुत सेंसिटिव होती है। पाउडर भी हम अगर बच्चे को लगाते हैं, तो उससे पहले हम सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि इस पाउडर का तो नहीं रिएक्शन बच्चे पे हो जाएगा। तो उसमें आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उसमें आप उनके लुक को लेकर के उनको इतना ज्यादा वो कर दे रहे हैं कि मतलब क्या ही कहना। माँ बाप कहते हैं कि अरे यार ये क्या है, थोड़ा अच्छे से रेडी करो ना, अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ा ढंग से रेडी करो। तो अभी उनकी ढंग से रेडी होने वाली उम्र ही नहीं है, और कहीं ना कहीं सिर्फ 5 साल, 6-7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 10 साल तक वो इतना ज्यादा अपने लुक को लेकर के वो हो जाते हैं कि उनको लगता है कि अगर जरा सी भी खामी होगी तो फिर हम कैसे करेंगे।
0: हाँ।
4: तो कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए। लुक्स आपके आपके बड़े होने के बाद मैटर करते हैं, कि जब आप बहुत बड़े हो जाओ तो आप कहीं पार्टी फंक्शन में आप जाइए तो आपका लुक मैटर करता है कि हम अच्छे से तैयार होके जाएंगे। मुझे लगता है कि लुक्स सिर्फ आप जब कहीं जा रहे हैं ना तभी ज्यादा मैटर करने चाहिए, और वरना आप रफली रहो।
0: नहीं, और वैसे भी ना कि मतलब इसमें ना मेनली हम मतलब मैं देख रही हूँ जैसा कि अंशिका, इसमें मदर्स की ज्यादा गलती है। मदर्स क्या कर रही हैं कि वो ना आपस में इतना ज्यादा वो कर दे रही हैं कि अरे बेटा ऐसे नहीं ऐसे हो, खास करके छोटी छोटी बच्चियों के लिए ये ऐसी हेयर स्टाइल बना लेना, ऐसे क्या कहते हैं कि बैग्स दे देना, ऐसी नेल पेंट लगा देना, अलग अलग टाइप के शूज दे देना, तो बच्चों में वो बचपन से ही आ जा रहा है, वो बचपन से ही आ जा रहा है उसमें। उनकी कोई गलती नहीं है, वो बचपन से ही उनके अंदर आ जा रहा है कि भाई मेरा जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज्यादा लुक्स पे है, मुझे सब लोग देख रहे हैं।
4: और कहीं ना कहीं लुक्स मैटर नहीं करते हैं, पता है जब आप बड़े हो जाते हो तो सिर्फ आपका नेचर मैटर करता है, किसी के लिए भी, एवरीवन। आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं, सोचिए आप बहुत अच्छे से रेडी होकर के, बिल्कुल टिप टॉप होकर के आप गए, आपने रेज्यूमे दिया, आपने इंटरव्यू दिया, और मान लीजिए कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, वो वहीं आपके रेज्यूमे पे लिख देते हैं रिजेक्टेड, आप जाइए, आपकी कोई नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम है। और वहीं आप नॉर्मल से बन करके भी गए हो और आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपने कॉन्फिडेंस में जवाब दिया, उनको ये फील हुआ नहीं यार इसमें तो बात है, ये रन कर लेगी या ये रन कर लेगा, तो वो वहीं आपसे कहते हैं हाँ ठीक है आप एक्सेप्टेड हो। देखिए ये नहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अच्छे कपड़े ना पहने, अच्छे से रेडी ना हो, या बच्चों को अच्छे कपड़े ना पहनाइए, ये नहीं कहा जा रहा है, आप उनको अच्छे से रेडी करिए।
0: पर उनमें ज्यादा एक क्या कहते हैं ललक जो होती है तैयार होने की, या फिर उनको मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं वो करना कि भाई आपको आपका सबसे बेटा आप ऐसे ऐसे चलोगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग तुम्हें देखेंगे या फिर ऐसे करेंगे, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बच्चों में अवॉइड करनी चाहिए।
4: बिल्कुल। और अगर आप इसे अवॉइड नहीं करते हैं तो धीरे धीरे छोटे बच्चों में ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन बन जाती है कि बड़े होते होते वो उसी जो उनके आसपास एक विजिबल जो बना दिया जाएगा वो उसी को सच्चाई मानने लगते हैं, और जब वो उसी को सच्चाई मानने लगते हैं तो उनकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं एक तरीके से हम अगर यूज करें तो बर्बाद होने लगती है, क्योंकि फिर उन्हें लगता है कि बस बाहरी सुंदरता मैटर करती है, और जब किसी के लिए सिर्फ बाहरी सुंदरता मैटर करती है तो अंदर की खूबसूरती मरती चली जाती है।
0: बिल्कुल।
4: अभी न्यूज में मैम हम सुन रहे हैं बहुत ही मतलब बहुत ही वो केस एक जो आया है जिसमें कि सिया और केतन का जो केस था, उसमें ये भी बताया जा रहा था। कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं बस यही है कि हर चीज से थोड़ा सा
0: उबरना चाहिए, मतलब जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना तो कभी भी हम चाहे बड़े क्यों ना हो तो क्या करते हैं कि लुक्स पे चले जाते हैं, यार उसके बाल नहीं अच्छे हैं, उसके दांत नहीं अच्छे हैं, वो उसकी हाइट नहीं अच्छी है, उसकी आंखें नहीं अच्छी हैं, तो क्या होता है कि हम लोग जब हम लोग बचपन से ही ये क्या कहते हैं कि बच्चों के सामने क्या कहते हैं बात करने लगते हैं, देखने लगते हैं ना, तो वही बच्चे उसको
4: अज्यूम
0: कर लेते हैं, और पता है वो सोचने लगते हैं, फिर वो क्या होता है कि वो क्लासरूम में भी जाते हैं ना तो वो सोचते हैं कि जो सबसे अच्छी प्यारी सी बच्ची हो वही मेरी फ्रेंड बने, वही मेरा फ्रेंड बने, जो अच्छा सा बॉय कोई हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई में मतलब जो क्या कहते हैं लुक वाइज अच्छा हो, जिसकी ड्रेस बहुत अच्छी हो, तो मुझे उसी को फ्रेंड बनाना है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, मतलब लुक इज नॉट मैटर।
4: बिल्कुल, उल्टा बिहेवियर मैटर करता है। जैसे आपने कभी दोस्त बनाए होंगे, या हमने भी कभी मैम ने बनाए हैं या मैंने बनाए हैं, तो हम ये देखकर दोस्त नहीं बनाते हैं कि वो बहुत सुंदर है, हम ये देखकर बनाते हैं कि उसका नेचर सुंदर है। दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर बच्चों में देखिए कई बार क्या होता है कि जब आप जो चीजें दे रहे हैं वो वही चीजें ले रहे हैं, जैसे बहुत सिर्फ ये नहीं होता है कि स्किन पे उसका असर पड़ता है, बहुत महंगी महंगी चीजें खरीदना, बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको ये लगता है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे जैसी पेरेंटिंग दी है मुझे आगे भी वैसी ही पेरेंटिंग देनी है।
0: बिल्कुल।
4: वो कहीं ना कहीं एक सोच की तरह वो चलती रहती है चेन, और फिर जब उनको आता है कि अरे नहीं मुझे ये खरीदना है ना, नहीं नहीं खरीद लो कपड़े खरीदने हैं या कुछ भी, उनको लगता है कि बाहरी सुंदरता के लिए अगर हमें ज्यादा खर्च करना पड़े तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है। आप बहुत तैयार होके कहीं जाओ, एक लेवल से ज्यादा तैयार होके आप जाइए तो वो आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको मार देता है, फिर इंसान अच्छा नहीं लगता है, फिर लगता है अरे यार तुमने तो वो तो ओवर मेकअप किया, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। आपको भले लगे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो,
0: पर जितना सिंपल सिटी में एक अलग से लुक आता है ना, मुझे लगता है कि मेकअप शेकअप में नहीं आता है।
4: बिल्कुल नहीं। अब मैम को हमारी देखिए, मैम हमारी वैसे तो कभी कभी मेकअप करती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, नो डाउट, लेकिन जब मेकअप नहीं करती हैं तो भी बहुत अच्छी लगती हैं।
0: हम तो करते ही नहीं है मेकअप।
4: नहीं,
0: मुझे कब देखा है, मतलब बहुत रेयर में,
4: बहुत रेयर में ही,
0: वो भी कॉलेज फंक्शंस में।
4: यस,
0: हाँ, कॉलेज फंक्शन में देखा
4: है ना। और अगर साड़ी पे मेकअप किया हो तो माय गॉड, मतलब हम लोग यही कहते हैं कि मैम अब थोड़ी, हमारी मैम जो है वो शांत और शालीन और थोड़ी अच्छी वाली, मतलब अच्छी है, नो डाउट, वो नहीं कह रही हूँ मैं, ये सब उनके नेचर में।
0: क्या चाहिए तुम्हें?
4: ये चाहिए, नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे ये चाहिए कि आप हैप्पी रहे। और मैं ये कहना चाहती थी कि मतलब हमारी मैम जो है बहुत अच्छे से रहती हैं, लेकिन थोड़ी शांत रहती हैं, अगर थोड़ी वैसी होती ना,
0: चुलबुली टाइप,
4: चंचल नेचर की, तो फिर तो फिर
0: हम भी थे, हम भी जैसे वो डायलॉग कौन था है कि हम भी थे कहीं काम के, निकम्मा कर दिया इश्क ने। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल,
4: फिर से काम पे लगेंगे
0: ये। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं निकम्मे में नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं, इश्क विश्क भाड़ में जाए, कुछ नहीं है,
4: कुछ नहीं।
0: बस ये डायलॉग ऐसे ही मैंने उसको रिवील
4: किया, याद आ गया।
0: हाँ, मैंने वो डायलॉग मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने रिवील किया इसको कि मैं शांत वांत नहीं हूँ। आपने देखा होगा कि तूफान आने से पहले एक शांति होती है,
4: तो शांति नहीं,
0: तो ये जो गहरा जब तूफान आने वाला होता है तो एक शांति होती है ना, बस वही शांत मेरे मन में चलता रहता है।
4: तो वो शांति कभी भी क्रांति में बदल सकती है।
0: हाँ।
4: और वो जिसके लिए क्रांति में बदलेगी, फिर मैं सोचती हूँ उसका क्या होगा।
0: बिल्कुल, क्या ही होगा, वही होगा जो
4: मंजूरे
0: ईश्वर होगा,
4: नहीं जो मंजूरे आरजे समता होगा।
0: हाँ, जो मंजूरे आरजे समता होगा, खैर कोई नहीं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे जहन में, भी ऐसा कुछ भी नहीं,
4: नहीं
0: है
4: नहीं।
0: तो चलिए हम यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे एक नेक्स्ट टॉपिक पर, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो बस आपको बने रहना है हमारे साथ में।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 33।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहे। वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज क्षमता। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और आज के लास्ट सेगमेंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि है स्टोरी टाइम।
3: Yes, और स्टोरी टाइम होने से पहले हम कुछ बोलेंगे और फिर स्टोरी की शुरुआत करेंगे।
0: जी,
3: अपनी बंसी की प्यारी प्यारी धुन से वो कर देते हैं सभी को निहाल।
0: जी,
3: तो चलो जोर से बोलो
0: जय श्री कृष्ण
3: कन्हैया।
0: अच्छा, जय श्री कृष्ण कन्हैया। ओके,
3: बिल्कुल, क्योंकि आज हम सुनाएंगे हमारी मुरलीधर की स्टोरी। बच्चे हमेशा मोटिवेट होना चाहते हैं और आज उन्हें मोटिवेट करने के लिए मेरे पास एक अच्छी सी कहानी है जो मैं उन्हें सुनाऊंगी। वो ये है कि हमारे जो श्री कृष्ण कन्हैया जी थे वो लीला करते थे और लीला करते हुए उन्होंने कई बार गोकुल में माखन चुराए और माखन चुरा कर हमेशा वो गोपियों को बहुत परेशान करते थे।
0: बिल्कुल।
3: एक दिन नंद बाबा ने उनसे कहा कि देखो, गोकुलवासी जो मक्खन और दूध लेते हैं उसमें उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि गोपियां मेहनत से माखन निकालती हैं।
0: हाँ।
3: और तुम उन्हें चुरा लेते हो, खा लेते हो, ये तो गलत बात है खाना, ऐसा नहीं करते। तो उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिया कि आप सब इस माखन और दूध का करते क्या हो, जाकर कंस को दे देते हो, क्योंकि कंस जो था वो कर मांगता था कि कर के तौर पर आप जो भी माखन और दूध निकालते हैं वो गोकुलवासी मुझे दें। तो गोकुलवासी चुपचाप उसे दे आते थे।
0: हाँ।
3: तो उन्होंने कहा कि आप क्या करते हो, आप तो कंस को दे आते हो, उससे तो यही अच्छा है ना कि मैं खा लेता हूँ। तो नंद बाबा ने उनसे कहा, नहीं बेटा, ये तो हमारा कर है जो हम उसे देते हैं और हमें देना भी चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जिस भूमि पर आप रहते हैं क्या वो कंस की भूमि है? तो उन्होंने, नंद बाबा ने उनको जवाब दिया कि नहीं, ये कंस की भूमि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो दूध और दही जो निकलता है, जो घी होता है, क्या वो कंस हमें दे, मतलब कंस के उससे निकलता है, वो तो गाय देती है दूध। तो उन्होंने कहा हाँ, ये भी ठीक है। तो उन्होंने कहा जब उस कंस का कुछ भी नहीं है तो हम उसे कर क्यों देते, या हमें उसे कर क्यों देना चाहिए? जब हम उसकी भूमि पर नहीं रहते हैं तो कर देने की तो कोई बात ही नहीं आती।
0: बिल्कुल।
3: तो जो नंद बाबा थे उनको महसूस हुआ कि हाँ, कृष्ण सही कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कृष्ण, आप कंस को कर में ये देना बंद कर दीजिए और मैं भी जो है माखन चुरा के खाना बंद कर दूंगा। जब कर बंद हुआ, जब गोकुलवासियों ने ये बिल्कुल ठान लिया कि ठीक है, अब हम कृष्ण को कर नहीं दे, हम उनको कंस को कर नहीं देंगे और ये हमारा अपना है, हम इसे रखेंगे और इसे बेचकर कुछ धन अर्जित करेंगे। तो उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने वैसे तो अपनी लीला बंद नहीं की, लेकिन हाँ, उन्होंने उसे कम जरूर कर दिया। तो इस कहानी से उन्होंने ये सिखाया कि जो हमारी मेहनत का नहीं होता वो कभी हमें नहीं मिलना चाहिए।
0: एग्जैक्टली।
3: क्योंकि अगर मेहनत भी थाली में परोस कर दी जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। धन और सफलता वही जो अपने परिश्रम से मिले मिलती है।
0: तो बच्चों, आज की स्टोरी से आपको क्या मिलती है शिक्षा? वो यही है कि जब हम मेहनत करते हैं तो ही हमें उसका फल जो है वो अच्छा वाला मिलता है। देखा जाए तो जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे, या फिर आजकल तो बड़ी लड़कियां भी कहती हैं कि हमने पढ़ाई तो की थी लेकिन हमें उसका प्रतिफल एग्जाम्स में नहीं मिला। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने पढ़ाई की होती तो आपको उसका प्रतिफल ज़रूर मिलता एग्जाम्स में। तो इसका मतलब साफ साफ है कि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की है, इसी के कारण आपको उसका प्रतिफल नहीं मिला। तो चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो जिंदगी का एग्जाम हो, चाहे पढ़ाई का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको अपना 100% देना ज़रूरी होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि बिना मेहनत किए हुए अगर आपको कुछ भी कोई मिलता है तो वो हमेशा के लिए नहीं होता है, वो फिर क्षणभंगुर वाला होता है कि थोड़ी देर के लिए मिला और बड़ा अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जब उसकी क्षति होती है तो वो बड़ा ही दुख का कारण होता है। तो इसीलिए आपको अगर एक रोटी भी नसीब हो रही है लेकिन अगर वो मेहनत से हो रही है तो उसमें जो सुकून और शांति है उसकी तो किसी से कोई तुलना है ही नहीं। इसीलिए बच्चों, मेहनत करो और एग्जाम्स में पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे पहले आपको एग्जाम्स में पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मेहनत की जरूरत होती है।
3: बिल्कुल सही कहा मैम ने, और बिल्कुल सही हाथों से आपको सही ज्ञान मिला है। तो चलिए, ज्ञान बहुत है और आई होप कि हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त इस ज्ञान को समझेंगे। और जाते जाते बस एक मैसेज हम ले लेंगे मैम। महक जी कह रही हैं कि आज मैं पहली बार आई हूँ शो में और सुनने में बहुत मजा आया, आज के लिए आप दोनों को थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: ओके, थैंक यू सो मच महक जी। और मैं बता दूं कि स्पेशली वुमेन सेंटर की ही प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम्स में ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि स्पेशली महिलाओं के लिए होता है। हर दिन हम कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, जैसे आज बच्चों का सेक्शन था, कल हमारा महिलाओं के लिए है स्पेशली वेडनेसडे। तो ज़रूर से आइएगा, कल भी सुनिएगा और लोगों को भी आप मोटिवेट करें कि हमारी इस ऐप को डाउनलोड करवाएं और सुने, क्योंकि बहुत कुछ नया होता है हर दिन। तो हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय
3: बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ

0: वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहां योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहां एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 88 40 98 123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

हाँ जी दोस्तों, भाई इस खूबसूरत गाने के साथ मैं आपका वेलकम करती हूँ आपकी अपनी आरजे आयुषी लेके आपका प्रोग्राम क्वालिटी उन गुंडा आ चुकी है। और ये शो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी फरमाइशें होती हैं पूरी। बिल्कुल भाई, फरमाइशों को पूरा करेंगे हम। और सबसे पहली बात तो भाई, कल ही हमने इतना सारा विश किया था भगवान को कि हे भगवान, बारिश का मौसम प्लीज़ ले आइए ले आइए ले आइए। और फाइनली देखिए भाई, रात में ऐसे धमाकेदार बारिश हुई है ना, बिल्कुल बिजली की कड़कड़ाहट आ रही है, बादलों की आवाज़ और पानी की प्यारी सी बूंदें। कहीं ना कहीं हमने इतनी सारी गर्मी फेस की है, वो सबको कहीं ना कहीं कूल डाउन कर रही थी। तो भाई मुझे लग रहा है कि आपके साथ साथ हमारी भी इच्छा ज़रूर पूरी हुई है। तो भाई चलते हैं, इसी इच्छा की खुशी मनाते हैं आपके फरमाइश के गाने सुन के। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और कैसे हैं अपना हाल चाल ज़रूर आके चैट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं हम हमारी फरमाइश की तरफ, जो कि है पहली फरमाइश अजीज़ जी की। अजीज़ जी को सुनना है दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, जो कि उमराव जान का गाना है जिसमें रेखा जी की स्क्रीनिंग हुई। और क्या लग रही है रेखा जी, तो आप गाना सुनेंगे ना, गाना सुन के ही आप उन्हें इमेजिन कर लेंगे। सुनते ही बहुत ही प्यारा सा गाना और इन्जॉय करते हैं।

हां जी दोस्तों, वेलकम बैक। आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी आरजे आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा, जिसमें हो रही है आपकी फरमाइशें पूरी। जी हाँ, अगर आपके पास फोन नंबर नहीं है अपनी फरमाइश देने के लिए तो मैं आपको बता देती हूँ भाई, हमारा नंबर है 6393316429। फिर से रिपीट करती हूँ, 6393316429। जल्दी से कॉल करिए और अपने फरमाइशी सॉन्ग को सुनिए। चलते हैं चैट बॉक्स की तरफ, हमारे कई सारे लिस्टर आ चुके हैं। सभी को गुड आफ्टरनून और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से अपने चंगी तरीके से अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे होंगे। विकास तिवारी जी, इट्स कुमार जी जुड़ चुके हैं, महक नागेश्वर धाकड़ जी और हमारे कई सारे लिस्टर जुड़ चुके हैं। भाई हमें अननोन आरजे बोला जा रहा है, इट्स कुमार जी, हम अननोन नहीं है, शायद आप ही पहली बार हमारा शो सुन रहे हैं मे बी, और हमारे रेगुलर लिसनर नहीं है, क्योंकि जो हमारे रेगुलर लिसनर है वो मुझे ना जाने, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो मैं खुद बेट लगा रही हूँ कि भाई मुझे ना जाने, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भाई देखिए, आज विकास तिवारी जी कहें कि आज आकांक्षा मैम लगता है नहीं आई। बिल्कुल नहीं आई है, मतलब आकांक्षा मैम तो हैं लेकिन आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा प्रिपेयर करें। देखिए कंटेंट लाने में भी ना हमें थोड़ा सा वक्त लगता है, कुछ बहुत ही बेहतर, कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है। आकांक्षा मैम आएंगी लेकिन दुगने अंदाज के साथ, दुगनी एनर्जी के साथ। चलते हैं हमारी नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है किसकी, भाई हमारे देवी प्रसाद जी की। डेली इनकी फरमाइशें पूरी होती हैं, इस बहुत ही बेहतरीन गाने के बाद सुनते हैं हम देवी प्रसाद जी की फरमाइश, जो कि है उम्र कैद होगी क्या है फैसला। बिल्कुल भाई, उम्र कैद होगी क्या है फैसला अदालत का, तो भैया उम्र कैद हो ही गई, यही है फैसला अदालत का। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना, जो कि आवाज़ में है हमारे सोनू निगम जी की।

थैंक यू सो मच देवी प्रसाद जी, आप ही की वजह से इतना बेहतरीन गाना आज हमने सुना। आज मैं भी ये गाना पहली बार सुन रही हूँ और पहली बार में इसका तो भाई जादू हम पे चल गया। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आ रहा होगा। देवी जी की फरमाइश पे ये बहुत ही प्यारा सा गाना। चलते हैं नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है हमारे सुनील कुशवाहा जी की। भाई हमारे सुनील कुशवाहा जी को सुनना है एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, जिसका टाइटल तो उन्होंने नहीं दिया लेकिन उसे कुछ लाइन्स बताई हैं कि कहाँ से करूँ मैं प्यार शुरू। भाई प्यार एक ही जगह से शुरू होता है, वो है हमारा दिल। दिल जब कहता है तभी से प्यार शुरू हो जाता है, और उसके बाद प्यार या तो आपको कुछ बहुत बेहतर बना जाता है या तो फिर आपको बेहतरीन के साथ रखता है। जी हाँ, देखिए अगर प्यार आपको छोड़ गया ना, तो याद रखिए जो छूट गया है ना वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उसने जो आपको बनाया है ना, कहते हैं कि सोना जब तक जलेगा नहीं तपेगा नहीं तब तक वो निखरता नहीं, और जब कोई जला गया तो वो बस आपके तपने का वक्त है, उसके बाद तो सोना निखर के निकलेगा ही निकलेगा। और अगर आपको आपका प्यार मिल गया है तो याद रखिए कि बहुत बेहतरीन चीज़ आपके साथ आ चुकी है, यानी कि ज़िंदगी में एक ऐसा साथ जिसे आपने दिल से चाहा और वो आपके साथ है। इसी थॉट के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है सुनील कुशवाहा जी की, जिन्हें सुनना है ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, जो कि है ऐलान मूवी से रिलीज़ हुई थी 1994 में, अक्षय कुमार की स्क्रीनिंग हुई है। सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग।

भाई प्यार तो शुरू करना होगा, जिंदगी बिना प्यार के थोड़ी अधूरी सी लगती है। देखिए मुझे लगता है कि जिंदगी हमारी बहुत ही सीधी है। एक बहुत ही महान इंसान मेरी जिंदगी में जिसने मुझे ये कहा था कि आयुषी देखो जिंदगी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सुलझी हुई है, पर हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। और कहीं ना कहीं ये चीजें मैंने अपनी जिंदगी में पाई भी है यार, कि देखो जब भी हम कुछ सोचते हैं, और सबसे पहली बात अभी हम बात कर रहे हैं प्यार मोहब्बत की, तो भैया प्यार मोहब्बत ही बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर देता है, मतलब हमारी ज़िंदगी ना पूरी उलट पुलट के रख देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए जब भी हम कभी प्यार में होते हैं ना तो हमारा दिमाग थोड़ा कुंद हो जाता है, अगर उत्तर प्रदेश की भाषा में कहें, अवधि में कहें, तो कुंद हो जाता है। कुछ काम हम कर नहीं पाते, सिर्फ एक ही काम होता है प्यार करना। तो जब तक आपका फ्यूचर ना सेट हो जाए ना, मेरी सलाह यही है कि भैया प्यार व्यार में नहीं पड़ना है आपको, क्योंकि भाई देखिए एडवेंचर ज़रूरी है ज़िंदगी में, पर अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी थॉट के साथ चलते हैं नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है हमारे अमित कुमार जी की। अमित कुमार जी को सुनना है मेहंदी वाले हाथ वो तेरे, जो कि आवाज़ में है गुरु रंधावा की और स्क्रीनिंग भी गुरु रंधावा और संजना की हुई है। सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गाना और इन्जॉय करते हैं।

वाह भाई, क्या सोलफुल सॉन्ग था ये, सच्ची हमारे दिल को बिल्कुल ऐसे छू सा गया। मुझे लग रहा है कि आप सबने भी इस गाने को बहुत ही अच्छे से इंजॉय किया होगा। फिलहाल हमारे एट्स कुमार जी पूछ रहे हैं कि मैम कुंद का मतलब क्या होता है। बताती हूँ भाई, देखिए जो लोग अवध के बहुत ही ज़्यादा गाँव वाले क्षेत्र, क्योंकि देखिए हम सबका ओरिजिन गाँव से है, पर कुछ लोग थोड़ा लेट बाहर से निकले, कुछ लोग थोड़ा सा जल्दी निकल गए। जो जल्दी निकल गए वो थोड़ा कुंद को नहीं जानते होंगे, मुझे लग रहा है आप भी जल्दी निकल गए। ये कुंद हमारी दादी नानी कहती थी कि जैसे जब कोई चक्कू होता है जिसमें बहुत धार होती है, जब उसे ज़्यादा यूज़ किया जाए तो कुंद हो जाता है, यानी कि जो उसकी धार होती है वो ख़त्म हो जाती है, इसी को हम कुंद कहते हैं। फिलहाल इस बहुत ही बेहतरीन गाने के बाद हम चलते हैं, सुनते हैं एक और फरमाइशी सॉन्ग जो कि है नागेश्वर धाकर जी की पसंद का है, और मुझे लगता है क्योंकि वो अधिकतर ये गाना सुनते रहते हैं और साथ ही साथ उनकी फरमाइश का भी सुनते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा गाना और इन्जॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

इस बहुत सुपर हिट सॉन्ग के बाद आ चुकी हूँ मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम क्वालिटी उन गुंड, जिसमें आप इंजॉय कर रहे हैं अपने फरमाइशी सॉन्ग्स को। जी हाँ, और इन्हीं सॉन्ग्स के बाद हम बात करेंगे आपसे, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक और सॉन्ग सुन लेना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट सॉन्ग जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कौन सा है मैं आपको बताती हूँ भाई, रमेश कुमार जी की फरमाइश पे है, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। और कहीं ना कहीं मुझे ये गाना पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो सबसे पहले इसको सुन लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे थोड़ी सी गपशप भी करेंगे, क्योंकि हमेशा होता है यार, जब दोस्त लोग मिलते हैं तो बातें तो होती है लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ होती है आपकी अपनी रेडियो पे। तो भाई चलते हैं, पहले गाना सुनते हैं फिर बातें करेंगे।

हाँ जी भाई, छमछम करता हुआ सावन बूंदों के बाढ़ तो चला ही रहा है। कुछ रात कुछ ऐसा ही मैंने भी महसूस किया कि भाई अब जैसे महाभारत और रामायण में दिखा नहीं था कि जब भी जो है बाढ़ चलते थे तो बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती थी, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग आती थी, और बिल्कुल इसी तरीके से कल रात भी हो रहा था। आई होप कि आप सबने इंजॉय किया हुआ कल की बारिश। भाई मैंने तो दिल से बताऊँ तो मैंने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, और ये गाना कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा रोमांटिसाइज कर रहा है बारिशों को। तो भैया देखिए, अब मुझे लग रहा है कि अब भगवान हमारी अरदास जो हमने कल इतने टाइम से लगाई थी उसे पूरा कर रहे होंगे। अब बारिश हो रही है, मुझे लग रहा है आज अभी भी बारिश होने ही वाली है। आपको क्या लग रहा है आप ज़रूर से हमें बताइएगा चैट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है रईस जी की। जी हाँ, रईस जी को सुनना है बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, वो सुनिए दिल जानिए, ये जो कि मूवी से है क्या कहना। भाई एक बहुत ही प्यारी सी मूवी है क्या कहना, जिसमें एक लड़की के स्ट्रगल को और रिलेशनशिप एंगल को एक बहुत ही नई तरीके से दिखाया गया है। स्क्रीनिंग हुई है हमारे सैफ जी, प्रीति जिंटा जी की, और आवाज़ है सोनू निगम और अलका याग्निक जी की। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना और इन्जॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या बात है भाई, आज प्यार मोहब्बत पे बहुत ही ज्यादा बातें हो रही हैं। हर गाना कहीं ना कहीं हमें कोई मैसेज देकर आ रहा है, जैसे कि अभी ये मैं गाना कह रहा है कि खेल मत समझो ये तो प्यार है। बिल्कुल भाई, खेल बिल्कुल ना समझें, क्योंकि भाई खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी गेम है, किसी का दिल नहीं। इसीलिए जब भी प्यार हो तो उसको प्यार समझे, खेल बिल्कुल भी नहीं। चलते नेक्स्ट फरमाइश की तरफ इसी थॉट के साथ, जो कि है विकास जी की, जो कि हमें उन्नाव से सुनते हैं। और इनकी फरमाइश है मेरे दिल की गलियों में, जो कि बंजारन मूवी से है और इसमें स्क्रीनिंग हुई है हमारी प्यारी सी खूबसूरत अदाकारा श्रीदेवी की और हमारे ऋषि कपूर जी की आवाज़ है अलका याग्निक जी की। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना और इन्जॉय करते हैं।
1: Exactly.

क्या भाई, अब की बार मिलन होगा, मुझे लगता है मिलिए जुलिए और बातें करिए और इंसान को समझिए कि आज का जो ज़माना है ना दोस्तों, वो थोड़ा सा अलग चल रहा है। पहले कहते थे कि भैया शादी से पहले मिलना नहीं है, क्योंकि शादी से पहले अगर हम मिलेंगे ना तो रिश्ता बिगड़ जाएगा। फिर कहने लगे कि नहीं भाई, शादी से पहले मिलना ज़रूरी है, नहीं तो रिश्ता बिगड़ जाएगा। लेकिन अब जो नहीं मिल रहे हैं वो भी मारे जा रहे हैं, जो मिल रहे हैं वो भी मारे जा रहे हैं। आपका क्या राय है इस पर ज़रूर आके बताइए, मुझे भी पता चले कि भाई अगर इन फ्यूचर हमारे साथ कभी कुछ ऐसा होता है शादी ब्याह वाला मामला, तो हमें क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। चलते इसी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट फरमाइश पे, जो कि है हमारे मोहम्मद नजीम जी की, जिन्हें सुनना है तेरे मेरे बीच में कोई आएगा जगह नहीं पाएगा। भैया इतने मोटे हैं क्या आप मोहम्मद नजीम जी, कि आपके बीच में जो भी कोई आएगा वो जगह नहीं पाएगा। हाँ चलिए, मैं तो मजाक कर रही थी, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, पर दोस्तों के बीच में मजाक चलता है। इसी गाने को सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं, जो कि है मोहम्मद मुजीम जी की फरमाइश पर।

हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम क्वालिटी उन गुंडा, जिसमें आप सुन रहे हैं अपने फरमाइशी गानों को। अभी जाने से पहले मैंने एक सवाल पूछा था, काफ़ी लोग के रिप्लाईज आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं, उनको उनकी तरफ थोड़ा सा देखते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या सलाह दी है। जी हाँ, काफ़ी सारी सलाह आई है मेरे लिए, तो देखते हैं भाई। पहले सबसे पहले इस कुमार जी ने लिखा है कि हम शादी ही नहीं करेंगे तो कैसे मारे जाएंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शादी करनी चाहिए। अब पता नहीं ये सही है कि नहीं, मुझे लगता है जिंदगी में थोड़ा सा एडवेंचर होना चाहिए, लेकिन मारे अगर जाने वाला ऑप्शन है तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए, बेटर है कि आप शादी ही ना करें। विकास तिवारी जी उन्नाव से पूछ रहे हैं कि आयुषी मैम, आपकी शादी हो गई है क्या? अगर हो गई है तो ठीक है, अगर नहीं हुई है तो बताएं, शादी से पहले मिलना चाहिए या नहीं? अरे भाई, यही तो मेरा सवाल है विकास जी। शादी तो फिलहाल मेरी हुई नहीं, अभी भी हम सिंगल हैं, पर फिर भी आपसे मैंने ये पूछा था, आप लोगों से सभी से पूछा था कि मिलना चाहिए या फिर नहीं। समझ लीजिए एक रिसर्च टाइप की कर रही हूँ मैं, कि शादी से पहले मिलना चाहिए नहीं, क्योंकि कई लोग कहते हैं मिलना चाहिए, कई लोग कहते हैं नहीं मिलना चाहिए। कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सही है, आप सब ज़रूर बताइए हमें। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है उस्मान जी की, जिन्हें सुनना है छतरी ना कहो खोलो बरसात में। अरे छतरी अगर बारिश में नहीं खोलेंगे तो कब खोलेंगे भैया? अगर बारिश में नहीं खोलेंगे तो भीगने ना जाएंगे, आप बताइए हमको। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना, जो कि है गोपी किशन मूवी से, और आवाज़ है हमारे कुमार सानू जी और पूर्णिमा की।

वाह भाई भाई, बारिश का गाना इतना ज़्यादा चल रहा है ना कि मुझे एक बहुत ही अच्छी सी लाइन याद आ गई। मैं चाहती हूँ कि आप भी सुने और इन्जॉय करें। देखिए कुछ लाइंस कुछ यूँ हैं कि ये चलती हुई हवा, ये बरसती हुई बारिश, ये चलती हुई हवा, ये बरसती हुई बारिश, ये गरजते हुए बादल भी तुम्हारी तरह हैं। खुशी तो बहुत देते हैं मगर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। और ये सब कहीं ना कहीं आप भी फील कर पा रहे होंगे कि भैया मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं और बहुत अहम हिस्सा बन जाते हैं हमारी ज़िंदगी का। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, वो बंदे को पता नहीं कहाँ से अलार्म बज जाता है कि बस अब वक्त आ चुका है इनको छोड़ के जाने का, और फिर वो आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। तो इसी थॉट के साथ, इसी प्यारी सी लाइंस के बाद चलते हैं नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है अभिनव पांडे जी की। जी हाँ, अभिनव पांडे जी सुनना चाहते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि है मन मेरा। मतलब मेरा मन नहीं है, टाइटल का नाम है मन मेरा, फ्रॉम द मूवी टेबल नंबर 21। सुनते ही बहुत ही प्यारा सा गाना, एंजॉय करते हैं।

वाह भाई क्या गाना है, और ये गाना मन की कश्मकश को ज्यादा ही बेहतर तरीके से बयां कर रहा है। भाई हमारा मन भी कुछ ऐसे कभी आगे चलता है, कभी पीछे, कभी कुछ कभी कुछ। चलते थोड़ा सा चैट बॉक्स की तरफ नजर घुमाते हैं। भाई हमारे नागेश्वर धाकर जी लिख रहे हैं कि पता नहीं मेरी जिंदगी में वो दिन कब आएगा जब मैं बारिश के बाहर भीगूंगा तो कोई छतरी लेकर आएगा और बोलेगी, सुनते हो जी, आ जाओ मेरी छतरी पे, अंदर भीग गए तो जुकाम हो जाएगा। मुझे लग रहा है नागेश्वर धाकर जी ये दिन नहीं आता बल्कि ये सपना आता है किसी रात को, और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो सच नहीं होते। ऐसे सपने तो सभी को आते रहते हैं, लेकिन भाई देखिए भगवान चाहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, कोई ना कोई तो बना होगा ही ना हम सभी के लिए, अभी नहीं तो कभी तो मिलेगा। तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं, और कहते हैं कि इंतज़ार करने से ना बहुत बेहतर चीज़ मिलती है। सुनते हैं, अभी जब सारी चीज़ें चल रही थी मैं भी इसे सर्च कर रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, तो एक बहुत ही बहुत ज़्यादा बेहतरीन लाइन हमें मिली। देखिए कुछ ऐसा होता है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से अटैच हो जाते हैं, या किसी के लिए मतलब कोई हमारे एकदम सर पे सवार हो जाता है, तो हम उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। मतलब जो हमसे बन पड़ता है वो तो हम करते हैं, लेकिन जो हमारे रीच से भी बाहर होता है हम वो भी करने की कोशिश करते हैं। इसी पे कुछ लाइन मेरे को मिली जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी, कि लाइन कुछ इस तरह है कि कुछ तो चाहत होगी इन बारिशों की बूंदों में, कुछ तो चाहते होंगी इन बारिशों की बूंदों में, वरना कौन गिरता है ज़मीन पर आसमान पर पहुँचने के बाद। बिल्कुल भाई, देखिए कुछ लोग जो रियल प्यार में पड़ते हैं ना, उनके साथ कुछ ऐसा ही होता है, अपनी एकदम लगता है जान ही कुर्बान करके रख देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ कुर्बान करिए, लेकिन कभी अपनी ओरिजिनलिटी को मत जाने दीजिए, और अपने प्रति अपने के लिए प्यार तो कभी कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आएँ जो आपके अंदर का स्पार्क जो होता है, जो चमक होती है, उसे कम करते। लेकिन याद रखिए कि आपने अभी तक और आपके माँ बाप ने अभी तक बहुत मेहनत की है आपके चेहरे पे, आपकी ज़िंदगी में ये चमक लाने की। तो जो लोग टेम्परेरी हैं, टेम्परेरी लोगों के लिए अपने परमानेंट स्पार्क को ना कम होने दें। इसी थॉट के साथ चलते हैं नेक्स्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है चांद बाबू की। चांद बाबू को सुनना है टिप टिप बरसा पानी। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना और इन्जॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक लिसनर, इतने प्यारे से गाने के बाद। लेकिन भाई मैं तो चाहती थी गाना और सुने, लेकिन क्या करें भाई, समय कुछ ज़्यादा ही जल्दी जा रहा है। सुनते हैं एक नेक्स्ट फरमाइशी सॉन्ग जो कि साहिबा जी की तरफ से, जिन्हें सुनना है हमसे पूछो तुमसे कितना प्यार करते हैं। भाई देखिए, अब कौन किससे कितना प्यार करता है ये तो आपके

0: से ही पता चलेगा भाई, जिससे भी ये कह रही हैं, चाहे खुद से चाहे किसी और से, आप पूछ लो, शायद चीज़ें बहुत बेहतर हो जाए। सुनते ही बहुत ही प्यारा सा गाना, वो इंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।
1: लास्ट मिनट बहुत अर्जेंट मीटिंग आ गई है।

वाह भाई, चांद भी देखे तो भी तेरा दीदार करते हैं। मुझे लगता था चांद की कुछ अलग ही भूमिका होती है, लेकिन इसकी भूमिका वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। जब हम छोटे होते तो चांद हमारा मामा बन जाता है, लेकिन बड़े होते होते, जैसे हम लोग बड़े होते हैं, चांद से हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा बदल जाता है। मतलब कहाँ मामा और कहाँ कुछ और ही बन जाता है। लेकिन भाई चांद, जब भी जिसमें भी आप कभी भी प्यार करते हो, चांद में नज़र आए चाहे ना आए, लेकिन चांद हमेशा आपके लिए होता है, आपकी बातें सुनने के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी तरह ही कई लोगों को चांद बहुत पसंद है। और जिनको चांद बहुत पसंद है ना, वो कभी ये लफ्ज़ों में बयां ही कर ही नहीं पाएंगे कि चांद उन्हें क्यों पसंद है। क्योंकि अगर वो बयां हो, कहते एक बहुत बड़ी लाइन नहीं है, बहुत उसकी मीनिंग बहुत बड़ी है, कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और हम बयां करने जाएं, अगर वो बयां हो जाए तो हम प्यार नहीं करते। क्योंकि जो बयां हो गया वो प्यार हो ही कैसे सकता है? जो आपके मन में है, जो कभी आप बता ही नहीं सकते, लफ्ज़ उसके लिए छोटे पड़ जाते हैं, उसी को तो हम प्यार कहते हैं। सुनते हैं हम नेक्स्ट फरमाइशी गाना, जो कि है मुमताज़ अंसारी जी की फरमाइश पे, फूलों सा चेहरा तेरा, जो कि अनाड़ी मूवी से है, और आवाज़ है इसमें उदित नारायण जी की। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना, एंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक दोस्तों, आ चुकी हूँ वापस। मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा, जिसके खत्म होने का वक्त बस बहुत ही करीब है। लेकिन मुझे जल्दी जल्दी आपकी फरमाइशें भी पूरी करनी है, क्योंकि मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। सुनते हैं नेक्स्ट फरमाइशी सॉन्ग, जो कि हमारे सबा जी की फरमाइश पे, वो है ओ खुदा फ्रॉम द मूवी हीरो, और इसमें आवाज़ है हमारे प्यारे से क्यूट चार्मिंग अमाल मलिक जी की। सुनते हैं, बहुत ही प्यारा सा गाना, इन्जॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम क्वालिटी उन गोंडा, जिसमें आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी फरमाइशी सॉन्ग। भाई वक्त हो चुका है हमारे जाने का, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सभी की फरमाइशें जो हैं वो पूरी हो जाएं। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, आपने इंजॉय किया है, और इंजॉय किया है तो जल्दी से फीडबैक अपना ज़रूर दें चैट बॉक्स में, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक्स का। लेते हैं आपसे विदा, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और ज़िंदगी और बारिश का अच्छे से आनंद उठाते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
1: छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार, 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए,
1: एक पल तो अब हमें
0: जीने दो,
1: जीने दो, जीने दो। सो जीने के लिए एक सहारा काफी है, और अगर कुछ ना मिले तो आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 एफएम और भी ज़्यादा काफ़ी है। सो वेलकम आपके शो विज्ञानशाला में, जहाँ बात होती है लर्निंग की बियॉन्ड क्यूरोसिटी। तो क्यूरोसिटी विज्ञान में ना हो तो विज्ञान सब्जेक्ट ही विज्ञान नहीं रहेगा। आज विज्ञान से जुड़ी चीज़ें तो बात होंगी ही, लेकिन आज मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज़ों से पर्दा हटाने वाली हूँ जिनके बारे में बहुत सारे हमारे मन में कन्फ्यूजन्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेके हो या फिर छोटे मोटे सूक्ष्म जीवाणुओं को लेके हो या सूक्ष्म जीवों को लेके हो। मन में हमारे ये हमेशा से रहता है कि ये सूक्ष्म जीव तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए बने हैं एक आध को छोड़ के। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे जीवों का नाम गिना दूंगी आपको उंगली के ऊपर कि आप सोचो कि यार ये सूक्ष्म जीव हमारी मतलब जान बचाते हैं, ये सूक्ष्म जीव हमारी सर्जरी के दौरान हमें बचाते हैं, अरे इतना ही नहीं हमारे ब्लड के क्लॉट को हटाते हैं जिससे हमें हार्ट स्ट्रोक ना आए। ओ माय गॉड, इतना कुछ कर रहा है ये सूक्ष्म जीव जिसको हमने तुच्छ समझा, वो निकला इतना उच्च। ओ माय गॉड, तो इस ओ माय गॉड वाली फीलिंग को थोड़ा बचा के रखिए और थोड़ा सा इस गाने को फील करिए, क्योंकि अगर हम सभी ने इस गाने को सुन रखा है तो ऑब्वियसली इस गाने से रिलेट भी कर पा रहे हैं। साइंस से जुड़े जब कॉन्सेप्चुअल क्लियरिंग नहीं होती, मिथ्स बने रहते हैं, बड़ा हवा बना के रखा जाता है, तो हमारी ज़िंदगी में साइंस वरदान की जगह अभिशाप बनने के लिए तैयार हो जाती है। तो चलिए इस गाने को फील करते हैं, और इसी के साथ आज की शाम यानी कि थोड़ी सी एग्रीकल्चर वाली और थोड़ी सी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली कर लेते हैं और जानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक क्या क्या हो रहा है जो हमारी नज़रों के सामने तो कतई नहीं है। तो लेट्स एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल म्यूज़िकल ब्रेक, एंड यस कुछ ही मिनटों में फिर बात होगी आप लोग के साथ। और जो जो जहाँ जहाँ से सुन रहा है वो फटाफट से हेलो हाय मतलब कर दे और पता चल जाए मुझे कि कौन कौन मेरे साथ है। वेरी वेरी गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, मेरे प्यारे श्रोताओं का स्वागत है।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

वेलकम टू द एनर्जेटिक इवनिंग। और आज की शाम थोड़ी खास होने वाली है और मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको भी इस खास शाम का हिस्सा बन जाना चाहिए, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा पर्दा हटाने वाली हूँ उन बातों से जिनके ऊपर काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था पर्दा। वैसे हम में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन हाँ कुछ एकाद का नाम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जिनको सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा। फिलहाल शामें मलंग करने के लिए तो मैं आप लोगों के पास आई हूँ, जैसे कि आपकी उड़ान बिल्कुल भी इफेक्ट ना हो, ठीक है? आपकी उड़ान को इफेक्ट ना पहुँचाने के लिए आज बिना आपके साथ है। और आज हमारे साथ अजय गिरी हैं, काफ़ी दिनों बाद। कैसे हैं अजय जी? शाम को तो दिखाई नहीं देते, बहुत मशक्कत से आज आपको देखने को मिला है, क्या हाल है भाई? आज पता चल रहा है कि आप भी लाइव हैं हमारे साथ। सो आरजे बीना के साथ सबका फिर से वेलकम है आपके शो विज्ञानशाला में। तो आज मैंने जैसा कि आपको बताया कि कुछ सूक्ष्म जीव यानी कि कुछ ऐसे जीवों के बारे में बताने का सोचा है जिनके बारे में हमें लगता है कि हमारे दिमाग में यही है कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये बैक्टीरिया वायरस जैसे होते हैं और ये हमारी ज़िंदगी को सिर्फ तबाह करते हैं, हमें परेशान करते हैं और हमें मतलब किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो ये हमारी मदद करने के बजाय हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब करते हैं। जी नहीं, आज इसी उम्मीद में मैं आपके साथ हूँ कि आपकी जो कहते हैं ना कि आज की जर्नी जो है वो इंटरेस्टिंग होगी। इंटरेस्टिंग मतलब कि आपको मज़ा आएगा जान के कि यार ये सारी चीज़ें हमें क्यों नहीं पता थी इन जीवों के बारे में। ये ना सिर्फ हमें हेल्प करते हैं हमारी लाइफ को फैसिलिटेट करने के लिए, बल्कि ये हमें मतलब कहते हमारी ज़िंदगी को भी सरल बनाते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों में बड़े बड़े कहते हैं ना कि ऑपरेशंस हों, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ के लिए, और कहीं ना कहीं आज तो मैंने ये भी सुन लिया है कि प्लास्टिक को भी गलाने का काम ये कर रहे हैं। तो भाई यार मतलब जो जीव हमारी ज़िंदगी के लिए मतलब अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा रहा है, भाई प्लास्टिक हम लोग खा लें तो मर जाएँ, वो बेचारा खा के हमारी ज़िंदगी को ईजी बना रहा है, तो उसके लिए मतलब शुक्रिया करना पड़ेगा भाई, थैंक्स, दिल से थैंक्स करना पड़ेगा कि भाई तुमने हमारी ज़िंदगी को बहुत सुविधाजनक बना दिया। तो चलिए हम मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि ये सूक्ष्म जीव आखिर होते क्या हैं। वैसे घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण जो एक मैं आज बता दूं आपको कि क्या श्रृंखला रहेगी आज की, आज किस चीज़ पे बात होगी। सबसे पहले घरेलू उत्पाद यानी कि घर में यूज़ होने वाली चीज़ों में ये सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसे औद्योगिक उत्पाद बोलते हैं उनमें ये सूक्ष्म जीव क्या हेल्प करते हैं। फिर इसके बाद हम करेंगे वहित मल उपचार यानी कि जो हमारे घरों से सीवेज निकलता है उसको कैसे ये मतलब डाइजेस्ट वजेस्ट करके पूरा मतलब साफ़ सुथरा कर देते हैं एनवायरनमेंट। फिर हम देखेंगे जैव नियंत्रण कैसे करते हैं यानी कि आसपास जो प्रदूषण है इनको भी कंट्रोल करने में ये मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पौधों के लिए भी ये क्या करते हैं, जैव उर्वरक बनाते हैं ये सूक्ष्म जीव। तो चलिए इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। कहते हैं कि जो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं वो पौधों पे, प्राणियों पे, इसके अलावा पूरी धरती पे अवेलेबल होते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसका अध्ययन करना जो है माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। और हम चाहे हवा में चाहे पानी में हर जगह इनको पा सकते हैं। अगर हवा को देखें ध्यान से तो इसमें भी आपको मिल जाएंगे, इसी के साथ पानी में भी मिल जाएंगे, हमारी सांसों में भी होंगे, हमारे खून में भी हो सकते हैं, हमारे पेट में भी हो सकते हैं, ठीक है? और मैं सबसे खास बात बताऊं, आप ये समझ लीजिए ये टेम्परेचर में भी किसी तरह के सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि 1000 या कह सकते हैं मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हमारे गीज़र के पानी का होता है ये उसमें भी पाए जाते हैं, ठीक है? बर्फ़ यानी कि जो एकदम माइनस का टेम्परेचर होगा उसमें भी ये पाए जाते हैं। तो ये लोग खतरों के खिलाड़ी होते हैं और इसमें बैक्टीरिया सबसे आगे होता है। आर्की बैक्टीरिया नाम का एक बैक्टीरिया है जो हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है, मतलब खतरों का खिलाड़ी कह सकते हो आप। तो सूक्ष्म जीवों की अगर हम श्रृंखला या एग्जांपल लें तो इनका एक ग्रुप होता है, जैसे बैक्टीरिया एक बड़ा ग्रुप है, बड़े सारे बैक्टीरिया, जैसे इंसानों में इंसान है, कई सारे इंसान है ना, इंसानों में भी कुछ आदिवासी टाइप हैं, कुछ ऐसे हैं जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, मैं जलवायु की बात कर रही हूँ, और मतलब सबका अलग अलग है। ऐसे ही मैमल्स में भी जो क्या कहते हैं स्तनधारियों में कई वेराइटीज़ हैं हमारे पास, तो वैसे ही ये जो सूक्ष्म जीव है इनकी भी बड़ी वेराइटीज़ हैं। सबसे पहले प्रोटोजोआ,
इसके अलावा जीवाणु यानी कि आपका वायरस, फिर आपका फंजाई जिसे कवक बोलते हैं, इसके अलावा आपका सबसे चहिता बैक्टीरिया जिसे आप कभी भी भूलना नहीं चाहते हैं अपना पसंदीदा, और नहीं सॉरी जीवाणु तो आपका बैक्टीरिया ही, विषाणु आपका ये वायरस। तो ये सभी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, और सबसे खास बात है कि इतने छोटे होते हैं कि हमें आँखों से दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले कहानियाँ इन लोग की, और घर में यूज़ होने वाले ये जो सूक्ष्म जीव है इनकी बात अभी कर लेते हैं, फिर एक म्यूज़िकल ब्रेक लेते हैं। और कुमार हमारे साथ है, गुड इवनिंग, कैसे हैं? और बहुत अच्छे हैं मैम, और अब बिज़ी रहते हैं पर रेडियो यहाँ भी सुनते हैं, लगातार चैटिंग ज्वाइन नहीं कर पाते समय की कीमत देखते हुए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए हमारी लाइफ में हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यस आप सुन रहे हैं लाइव, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ कभी कभी टाइम मिले, जैसे आज आपको टाइम मिला, आप आ गए, बहुत अच्छी बात है। और यही यही ज़िंदगी है, हम हर किसी के पास हर समय नहीं बैठ सकते, पर हाँ सुन तो सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, इसीलिए रेडियो सबसे खास है कि वो आपका एफर्ट ना मांगते हुए, मतलब उसको स्क्रीन स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन रख दिया आपने, वो बज रहा है और हर अंदाज में बज रहा है, कभी न्यूज़ बता रहा है, कभी आपको हर तरह से। देखिए वायरस की अगर बात करें तो कुमार, वायरस एक जीव नहीं है सबसे पहले, ठीक है, ये एक ऐसा जीव है जो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के बीच की कड़ी है। यानी कि ना तो ये बाहर किसी टेबल पे पड़े हुए जिंदा रह सकता है, ना ये अपने दम पे जिंदा रह सकता है। ये जिंदा रह सकता है वो भी किसी इंसान की कोशिका के अंदर, या किसी जीव की, मैं खास तौर पे इंसानी क्यों करूँ, चाहे वो पौधा हो चाहे वो कोई जानवर हो, ये जिंदा रहने के लिए हमारी कोशिकाओं यानी कि किसी जीव की कोशिकाओं का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इसमें तापमान की तो बात ही नहीं आती, ये तो अपने दम पे कुछ कर ही नहीं सकता है, लेकिन बिना कुछ किए भी बहुत कुछ कर रहा है भाई, 3 साल लॉकडाउन बिता दिए इसने, तो हैट्स ऑफ फॉर वायरस। वायरस के ऊपर किताब लिखी जानी चाहिए, वैसे तो लिखी जा चुकी है। तो सबसे पहले घर में यूज़ होने वाले माइक्रोब्स यानी कि छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही कॉमन, जिसके बारे में हम सभी को पता है और हमारा फेवरेट है, यानी कि दही। दही में पाया जाने वाला जो एक छोटा सा सूक्ष्म जीव है वो कुछ और नहीं, जीवाणु है, यानी जिसे बैक्टीरिया बोलते हैं। और उस बैक्टीरिया का नाम कौन बताएगा चैट रूम में, फटाफट से आ जाइए, कौन बताने वाला है? कुमार बताएंगे। कुमार बताइए दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, जल्दी सोचिए। और गर्मियों में यार रायता, छाछ और लस्सी, इन सब का स्वैग ही अलग है। और सच्ची बताऊँ, दही खाने से ना हमारी जो गट लाइन है यानी कि हमारे खाने की जो नलिका है, जैसे जहाँ खाना पचता है, पाचन तंत्र सरल भाषा में कहूँ, वो बिल्कुल फिट रहता है। और हमारे पेट में बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरियाज का होना ज़रूरी भी है, तो ये हमारी गट को बहुत हेल्दी रखता है, तो दही खाना चाहिए। और दही में जो जीवाणु पाया जाता है उसका नाम अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया, कौन बताने वाला है, कौन? सूक्ष्म जीव हैं, जीव हैं मैम, आप गलत पढ़ा रही हैं, प्रचार से शिकायत कर बो, सूक्ष्म जीव हैं, जीव हैं। देखिए सूक्ष्म जीव यानी कि सूक्ष्म जीव होने का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन ये किसी कोशिका के ऊपर निर्भर करते हैं, इनकी खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। लैक्टोबैसिलस, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, इसे लैब भी बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। और लैक्टोबैसिलस नाम इसका जानते हैं किस पे पड़ा? इसकी शेप और आकार पे, ये बैसिलस शेप में, बैसिलाई शेप में होते हैं, जिस वजह से इनको लैक्टोबैसिलस कहा गया है। ये दूध में अगर पड़ जाएं तो बहुत तेज़ी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से दूध जल्दी से दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दूध में जो हम जामुन डालते हैं उसको इंग्लिश भाषा में इनाकुलम बोलते हैं, या हिंदी में हम जामुन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो इन बैक्टीरिया की वजह से दूध में क्या खास चीज़ हो जाती है, विटामिन B12 की मात्रा जो है वो प्रचुर मात्रा में भर जाती है। और B12 जो है हमारे स्टमक के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है, और ये बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाने में मदद करता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, हाँ आटा तो हम सभी लगाते हैं घर में, लेकिन आपने आटे से याद किया होगा कि हम लोगों ने डोसा खाया होगा, याद है कि नहीं आपको? डोसा तो हम लोग खाते हैं ना, डोसा खाने के साथ साथ हम सभी ने इडली भी खाई होगी, हमने इडली और डोसा सब कुछ खाया होगा कभी ना कभी, तो ऑब्वियसली हमारा फेवरेट रहा है। तो अक्सर देखा है दाल और चावल से जो आटा बनता है
उसको उसको मिला के हम लोग क्या करते हैं, इडली और डोसा तैयार करते हैं, और उसको हम लोग दो रात के लिए या एक रात के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। सुना है कि नहीं? तो जिसे खमीर बोलते हैं, खमीर उठने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन खमीर कैसे उठता है आपने कभी सोचा है? सोच के बताइए। उसमें बड़े बड़े से गोले बन जाते हैं, देखिए मतलब उसको जब घुमाते हैं तो बड़े बड़े से स्पॉन्जी सा हो जाता है, बड़े बड़े से छेद होते हैं ब्रेड की तरह, वो किसकी वजह से होते हैं सोच के बताइए? CO2, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहता है उसकी वजह से। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन बना रहा है? सोचिए जल्दी जल्दी जल्दी सोचिए। देखिए ये होता है किण्वन की प्रक्रिया से, ठीक है, और इसे बनाने में हमारे कोई और नहीं खास, सबसे खास ईस्ट मदद करते हैं, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। क्या नाम है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ये क्या करता है, हमारे आटे को ब्रेड बना देता है, कहें तो फुला देता है, फर्मेंट कर देता है। अच्छा कैसे करता है? पहले तो ये अपनी जनसंख्या बढ़ाता है, जनसंख्या बढ़ाने के साथ ये क्या करता है, ये करता है रेस्पायरेशन, यानी कि श्वसन की क्रिया करते हैं। तो श्वसन हम लोग भी करते हैं, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये क्या करता है, इसकी संख्या इतनी बढ़ जाती है, जब ये श्वसन करता है तो हमारे आटे में बड़े बड़े से होल बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा आटा फूल जाता है और इडली बहुत स्पॉन्जी बनती है। अब आप कहेंगे इसको खाने से हमें कोई नुकसान नहीं, तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं नुकसान है। हाँ कई दुकान वाले इसकी जगह वो डाल देते हैं, क्या ईस्ट का नाम सुना होगा, बाजार में मिलती है बेकर्स ईस्ट, इसे बोलते हैं, केक वाले बहुत यूज़ करते हैं। लेकिन कई दुकान वाले इसकी जगह बेकिंग पाउडर वगैरह डाल देते हैं, जो कि हमें नुकसान कर सकता है, ठीक है। तो ये जो ईस्ट है, ये ईस्ट कुछ और नहीं है, ये एक तरह से फंजाई है जो कि हमारे आटे को क्या करती है, फुला देती है। किसकी वजह से? अपने रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से। तो बहुत ज़्यादा इसको डीप में नहीं जानते, लेकिन हाँ ये जानिए कि ईस्ट नाम का फंजाई है, फंगस है, जो कि हमारे इस खाने में होता है और हम खाते हैं। हर फंगस को तो नहीं खाते, ब्रेड के ऊपर ग्रीन कलर का फंगस लग गया उसको नहीं खाते, वो राइजोपस है, वो जो है वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको हम नहीं खा सकते, ये खाने वाला ईस्ट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे साउथ में एक ड्रिंक बनती है, यानी कि ये जो नहीं होता है ताड़ का जो जूस होता है उसको निकाल के रख देते हैं, सड़ा देते हैं, टॉडी नाम की एक ड्रिंक बनती है, बहुत लोग पीते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो ये परंपरागत जो पेय होते हैं जो सड़ा के बनाए जाते हैं, उन सब में ये पाई जाती है, ठीक है। और ये दक्षिण भारत की सबसे फेमस, ये ताड़ के पेड़ से निकालते हैं, उसके तने को काट के बेसिकली, जैसे हमारे इधर क्या करते हैं, आपने सुना होगा केले का पेड़ जो है उसका तना बीच से काट दो और बीच से खोखला कर दो, अगले दिन आप देखोगे उसके जो तने हैं उसके अंदर पानी भरा मिलेगा। वो बेसिकली पेड़ पौधे के अंदर का पानी होता है और उसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। ऐसा ही ये जो टॉडी ड्रिंक है जो कि साउथ इंडिया में पिया जाता है, इसमें भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, इसलिए इसको पीना बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, लोग पीते हैं इसको, बहुत अच्छा मतलब मज़ा आता है लोगों को पीने में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग किण्वित मत्स्य, यानी कि मछलियों को भी ये लोग क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं सोयाबीन और बांस का प्रो बना के, जो एक स्पेशल डिश कहलाता है। इसी के साथ पनीर बनाने के लिए भी हम लोग सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं, जैसे स्विस चीज़ आता है और इसमें एक खास बहुत महंगा जो कहते हैं कि क्या कहते हैं ये पनीर बनता है, और उसमें एक बैक्टीरिया यूज़ होता है जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। इसी के साथ मैं आगे बताना चाहूँगी एक और सबसे महंगा कह सकते हैं कि पनीर होता है जो कि फंजाई से बनाया जाता है, और उसका नाम है रिकफोर्ट पनीर या फिर रिकफोर्ट चीज़। तो ये बात हो गई घर में यूज़ होने वाले बैक्टीरिया की, जिनके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें, या फंजाई की जिनके माध्यम से हम चीज़ों को क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं, उनकी संख्या बढ़ा देते हैं और हम लोग मस्त खाते हैं। इसी के साथ अब बात करेंगे इन माइक्रोब्स का इंडस्ट्री में क्या प्रयोग है, इंडस्ट्रीज़ में मतलब कौन कौन सी। सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो आप सभी को पता है कि हमारी बीवरेजेस यानी कि ड्रिंक्स, और उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपके ईस्ट का, यानी कि ये जो फल हैं, ये जो अंगूर हैं, या ये जो मतलब कई सारी चीज़ें, यहाँ तक कि चावल की भी बहुत अच्छी शराब बनती है, पहाड़ी इलाकों में बनती है। बहरहाल वो
कॉमनली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत गर्म होती है पहाड़ी इलाकों में। खुद को गर्म रखने के लिए लोग पीते हैं, और उसमें भी चावलों को, पके हुए चावलों को सड़ाने के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसकी वजह से जो पके हुए चावल हैं वो पूरी तरह सड़ जाते हैं और एक ड्रिंक बन के तैयार होती है। उसको छानते हैं, उसको डिस्टिलेशन करते हैं। आपको पता है जितनी ज़्यादा डिस्टिलेशन प्रोसेस से ड्रिंक आपकी बीतेगी उतनी ज़्यादा महंगी होती जाएगी। आपने सोचा नहीं कि शराब कोई कोई बहुत महंगी क्यों होती है? महंगे होने के पीछे कारण यही है। तो चलिए हम आगे बात करते हुए आप लोग के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ और सूक्ष्मजीवों की बात करेंगे। तो ये तो इंडस्ट्रियल लेवल पे बात हो गई, जैसे विस्की है, रम है, ब्रांडी है, ये सारी चीज़ें फर्मेंटेशन से बनती हैं और इसमें कोई और नहीं, बस आपका यही ईस्ट मदद करता है, ठीक है। तो अब एंटीबायोटिक्स यानी कि कुछ दवाइयों का नाम देखेंगे जिनमें हमारे छोटे छोटे सूक्ष्मजीवों ने बहुत बहुत बड़े रोल प्ले किए हैं। तो हाँ, वैसे आजकल का पनीर तो भाई काफ़ी ज़्यादा मिलावट वाला है, फूड एडल्ट्रेशन से हम लोग बचे नहीं हैं, लेकिन उसके पहले मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना एक छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक ले लेते हैं और थोड़े और सूक्ष्मजीवों की बात होगी लेकिन इस म्यूज़िकल ब्रेक के बाद। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गाना, इलाही हमारे साथ।

इतने प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक को एंजॉय करने के बाद अब इस धूप के साथ शाम को समझने का समय है। और फिलहाल गोंडा शहर का मौसम बड़ा सुहाना है और जैसे कि सुलगती धूप में भी हमारा जो सूक्ष्मजीव है वो जी लेता है और चाहे बहती हवा हो उसमें भी जी लेता है। फिलहाल आगे बात करते हैं, हम लोग एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे थे और एंटीबायोटिक की बात करूं तो ये हमारे लिए एक तरह का वरदान रहा है। एंटी का मतलब होता है खिलाफत या किसी चीज़ के खिलाफ काम करना और बायो का मतलब होता है जीव, यानी कि कोई ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीव के खिलाफ काम करे उसे ही एंटीबायोटिक बोलते हैं। क्या बात है, बड़ा मस्त थिंग है, यानी कि वायरस को वायरस से लड़ा दिया जाए, हाँ हाँ बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से लड़ा दिया जाए। जी हाँ, जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो किसी न किसी कहते हैं ना सूक्ष्म जीव से बनी होती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इन सूक्ष्म जीवों के बारे में और देखते हैं क्या है इनकी कहानी। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो मूल रूप से केमिकल युक्त छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि हमारी जो कहते हैं ना कि ह्यूमन लाइफ के अगेंस्ट जो छोटे छोटे जीव हैं जो हमारी ज़िंदगी को परेशान करते बीमारियां लेके आते उनके खिलाफ काम करते हैं। यानी कि कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, उन्हीं जीवों में से ही किसी को लेके हमने दवा बना दी जो कि क्या करेगी, हमें नहीं उनको पूरा परेशान करके रख देगी। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनी उसका नाम था पेंसिलिन। और आपको पता है पेंसिलिन को किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि एक बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे जिसका नाम है स्ट्रेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। और ये जो है ये एक तरह से माउल्ड ग्रोइंग है और इसके बारे में थोड़ी सी कहानी भी लेते हैं कि मतलब ऐसे कोई चीज़ ऐसे नहीं खोजी जाती, इनको खोजने के पीछे भी बड़ी लंबी सी कहानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स रही हैं और इनकी जो कहते हैं ना कि शुरुआत कब से हुई। 20वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण खोज बन के सामने आई एंटीबायोटिक्स की खोज। और एंटी यानी कि ये ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है खिलाफ, और लाइफ तो मैंने आपको बता ही दिया कि बायोटिक का मतलब लाइफ होता है। ठीक है, जीवन के खिलाफ काम करते हैं, किसके जीवन के खिलाफ, अपने दोस्तों के जीवन के खिलाफ काम करते हैं। ठीक है, और सूक्ष्म जीवों के अंदर वृद्धि को मंद करने या किसी दूसरे जीव को मारने की क्षमता होती है। और सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले एंटीबायोटिक्स जो हैं वो पेंसिलिन है, और पेंसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक भी माना जाता है जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको एक बैक्टीरिया में खोजा था, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और उनमें एक बिना घुली प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न देखा उन्होंने। एक मतलब एक बार क्या हुआ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लैब में काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक प्लेट में खाना लगा या कुछ ऐसा था जो कि कुछ दिन के लिए रखा रहेगा, उस पर कुछ मोल्ड मतलब छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो गए और जिस कारण जो था स्ट्रेप्टोकोकस जहाँ जहाँ लगा था उसकी वृद्धि नहीं हो पाई। यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि जहाँ बैक्टीरिया था वहाँ पे वो फंगस ग्रो नहीं किया, बाकी सब जगह फंगस ग्रो कर गया और फंगस की वजह से बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पाया। मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने पाया कि ये प्रभाव मोल्ड द्वारा उत्पन्न रसायन पेंसिलिन की वजह से हुआ और वो मोल्ड कोई और नहीं था, आपका फंजाई था। ठीक है, क्योंकि पेंसिलिन जो है पेंसिलिनियम नोटेटम नाम के मोल्ड से उत्पन्न होती है, नाम उन्होंने पेंसिलिन रखा। और बाद में अर्नेस्ट चैन तथा हॉवर्ड फेलोरे ने इसकी एक शक्तिशाली और प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में इसकी पुष्टि की। और इस एंटीबायोटिक का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाही के उपचार के रूप में व्यापक रूप में किया गया। और फ्लेमिंग चैन तथा फेलोर को इस खोज के लिए 1945 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया, क्योंकि बहुत लोगों की इस एंटीबायोटिक की वजह से जान भी बचाई गई। और अगर हम बात करें कुछ केमिकल्स की, एंजाइम्स की और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की, तो उनके बारे में भी आप लोग समझ लीजिए। कुछ विशेषकर रसायन जैसे कि कुछ केमिकल जो कि लैब में बनाए जाते हैं, जैसे कि कार्बनिक अम्ल हो गया, अल्कोहल हो गया, एंजाइम हो गया, जो कि व्यावसायिक रूप से और औद्योगिक उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, अम्लीय उत्पादन करते हैं जैसे कि सिट्रिक अम्ल और इसके साथ
एस्परजिलस नाइगर नाम का एक कवक है, यानी कि एक फंजाई है, जिससे हम सिट्रिक अम्ल बना सकते हैं। एसिटिक अम्ल जो कि एसिटोबैक्टर एसिटाई यानी कि बैक्टीरिया से बनाया जा सकता है। इसके अलावा बायोट्रिक अम्ल यानी कि जिसे हम क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटी कैल्शियम नाम के बैक्टीरिया से बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे अम्ल हैं, ऐसे एसिड हैं जो घरों में और हर जगह यूज़ किए जाते हैं। आप बाज़ार से देखिए सिट्रिक एसिड की बॉटल खरीद के ला सकते हैं जो कि सेम टू सेम नींबू में होती है। ठीक है, तो चलिए एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के साथ हम आगे बात करेंगे, लेकिन पुराना गाना सुनते हैं जैसा कि अजय ने कहा।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के
1: क्या करना है जीते
0: अरे हो रहना किसी के

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
0: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें

वाले गाने हों चाहे वो नए वाले गाने हों, और इन नए पुराने गानों के बीच हम लोग की जो केमिस्ट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है. नहीं बात करते करते मुझे याद आ गया भाई, गुड इवनिंग जो जो ज्योति ज्योति यस ज्योति, हाय हाय, और कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आगे बात करते हैं. और जैसा कि आप सभी ने सुना कि कुछ हम लोग केमिकल्स की बात कर रहे थे जो कि हमारे बैक्टीरिया और हमारे फंगस बनाने में मदद करते हैं, तभी मैं कुछ और फंगस की बात कर लूँ. जैसे कि सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ये इथेनॉल बनाने में मदद करने वाला एक फंगस है, और इसी के साथ एक बैक्टीरिया है जो कि कई सारे मतलब एंजाइम बनाने में मदद करता है. अब मैं बात कर लूँ लाइपेज, जो कि एक एंजाइम है जो कि हमारे डिटर्जेंट यानी कि जो घर में हम लोग सर्फ यूज़ करते हैं उसमें पड़ता है, और ये हमारे ऑयली स्टेन्स को हटाने में मदद करता है, और ये बनाने में मदद करता है आपके खास माइक्रोब यानी कि ये आपके सैक्रोमाइसिस सर्वेसी. अभी मैं बात करना चाहूँगी, आपने देखा होगा बॉटल जो जूस की होती है उसके ऊपर लिखा रहता है मार्केट में कि क्लियरर एज़ कम्पेयर टू दोज मेड इन होम. आपने जो घर में जूस बनाया होगा, आप संतरे का कभी जूस निकालिए, वो काफ़ी धुंधला सा होता है, लेकिन बाजार वाला लाते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, और ये होता है किसी की वजह से. उस एंजाइम का नाम है पैक्टाइनेज. ये पैक्टाइनेज जो है और ये प्रोटीएज जो है ये जूस के जो कहते हैं ना धुंधलेपन को कम कर देता है, ठीक है. और ये भी हमारे छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव बना के मदद करते हैं. एक और एंजाइम है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज. ये बैक्टीरिया से बनता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, जो कि एक तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग में मदद करता है, यानी कि इसको क्लॉट बस्टर भी बोलते हैं, जो कि हमारे रक्त में जो क्लॉट यानी कि थक्के जम जाते हैं उनको डाइल्यूट करता है और हार्ट स्ट्रोक को रोकता है. आजकल जो हार्ट स्ट्रोक है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, उसको क्या करता है साफ करने में मदद करता है. एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, जो कि इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है. जब किसी इंसान का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, जैसे आपने सुना है ना किसी को ऑर्गन देना है लेना है, तो ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने में ये केमिकल यूज़ होता है जिससे कि इंसान को दिक्कत ना हो, और ये केमिकल है साइक्लोस्पोरिन ए, और ये बनता है एक फंगस से जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉल्सिस्पोरम, ठीक है. इसके अलावा एक और केमिकल है जिसका नाम है स्टेटिन, जो कि ईस्ट से यानी कि मेनिस्कस परप्यूरिस, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है. जब भी हाई बीपी वगैरह होता है तो उस समय स्टेटिन से बनी हुई दवाइयां दी जाती हैं जिससे कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो सके. कोलेस्ट्रॉल एक तरह से फैट में पाया जाता है और हमारे शरीर में आयकर मतलब आए दिन हम सुनते हैं जमा हो जाता है. डियर आरजे बीना, मैं यहां सुन रहा हूं हाई स्पीकर पर, लोग सुन रहे काफ़ी लोग. ओहो क्या बात है, थैंक यू सो मच अजय. तो ये जो इम्पोर्टेंट जानकारी है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खास इसलिए क्योंकि हमें पता होना चाहिए हम क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, हमारी दवाइयों में क्या मिला हुआ है. तो ये दवाइयाँ छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की देन है जो कि हमारी ज़िंदगी को सहज बना रही हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें कि आए दिन हमने सुना होगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शहरों में बने होते हैं, घर का जो सीवेज का पानी होता है जो कि टॉयलेट का पानी होता है वो जाके ट्रीट किया जाता है, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में पानी, कहते हैं कि घर का जो 90% पानी है वो सीवेज में जाता है और बाकी 10% ही हम यूज कर पाते हैं. तो वो पानी जो है बेसिकली कहाँ जा रहा है, उसको हम फिल्टर कर दें, उसको अगर साफ सुथरा कर दें तो वो नदियों में मिल सकता है और वापस से पुनर्चक्रित होके यानी कि बादलों के थ्रू फिर वापस से धरती के अंदर जा सकता है. लेकिन ऐसे गंदा पानी कहीं भी जाएगा तो बीमारियाँ ही फैलाएगा, तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं यानी कि इलाज करते हैं. और इलाज करने के लिए हम दो स्तर से इलाज करते हैं, एक है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो पानी में जो जमा सॉलिड वेस्ट यानी कि कंकड़ पत्थर पॉलिथीन बैग ये सब इन सबको हटाते हैं, फिर उसी पानी में हम लोग क्या करते हैं छोटे छोटे जीवाणुओं को डालते हैं, खासतौर पे बैक्टीरिया. दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक वो होते हैं जो ऑक्सीजन का प्रयोग करके पानी को साफ करते हैं, और दूसरे बैक्टीरिया वो होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के पानी को साफ करते हैं. जो पानी को ऑक्सीजन यूज़ करके साफ करते हैं बैक्टीरिया उनको एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, और जो बिना ऑक्सीजन के साफ करते हैं उन्हें एनएरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है. इसी तरह हम क्या करते हैं पानी को साफ कर लेते हैं, उसमें जो जमा वेस्ट होता है उसको एज अ खाद सेपरेट कर लेते हैं, और वो खाद के रूप में हमारी धरती की जो उर्वरकता है उसे बढ़ाएगा, और बाकी स्वच्छ पानी साफ पानी जो है हमारे जो जल स्रोत है वहाँ जाके मिल जाएगा.
ठीक है। तो जल एक बड़ी समस्या बन गई है, और आपने भी सुना होगा कि

मुंबई में पानी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, पानी की कमी हो गई है और इस साल बारिश भी होने की कम संभावनाएं दिख रही हैं। तो ग्राउंड लेवल का पानी तो भाई बढ़ने से रहा और कोई तरीका है भी नहीं, खेती भी इससे प्रभावित होगी। तो हम अगर चाहें तो पानी को ट्रीट करके साफ़ सुथरा करके यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही बातें काफ़ी हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी, तो याद रखना भी ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि जितना चीज़ें आपको बताई हैं वो आपको याद ना रहे और आप भूल जाएँ, फिर क्या ही मतलब है। लेकिन मैं चलते चलते आप लोग को बहुत प्यारे से गाने सुनाना चाहती हूँ जिनको सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए चलते चलते मुझे दीजिए इजाज़त, ऐसे ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और आपके साथ आगे कुछ ही मिनटों में मैं फिर मिलूंगी आपके शो गोंडा मैसे मसाला आरजे बीना वाला में। और चलिए इन्जॉय करते हैं ये छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक और आगे आपके साथ फिर मौजूद होगी आपकी आरजे बीना एक प्यारी सी लव स्टोरी के साथ। तो सुनना ना भूलिए 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन, अपनी आरजे बीना के साथ।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: डिलीशियस
2: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
1: और क्या क्या है खास?
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
1: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम है आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो की है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9970931251 और 8840098125।

0: एपिसोड 23 मॉडर्न पब्लिक स्कूल निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
0: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 98 38 288 386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: गोंडा शहर की धड़कन।
7: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
8: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी, और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
7: सच में? क्या खास है वहाँ?
8: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
7: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
8: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
7: और फोटोग्राफी वगैरह?
8: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमैटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
7: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
8: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9893-613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
7: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

तो हमारे बस में जो नहीं है वो हमें करना नहीं चाहिए, हाँ जो बस में है उससे पीछे हटना नहीं चाहिए। तो फिलहाल हमारे और आपके बस में है ये प्यारी सी शाम का एक एक लम्हा, जिसे हम करने वाले हैं एक दूसरे के हवाले क्योंकि चिट और पट का तो यहाँ कोई सवाल नहीं, यहाँ तो सभी जीते हैं एक दूसरे के सहारे क्योंकि एक दूसरे से जुड़ती हैं हमारी वाइब्स। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, जिसके साथ शुरू होती है हमारी शाम वाली फाइंड। तो जहां आपकी खोज ख़त्म होती है बस वहीं आपको आपकी आरजबीना शाम को 6 बजे मिल जाती है हर दिन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सुन रहे हैं शो गोंडा बस मसाला आरजबीना वाला अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी 89.6 FM रेडियो यांसली गोंडा शहर की धड़कन पर। और आज की ये खूबसूरत शाम जितनी खूबसूरत हवा बादलों के कहते ना कि स्पर्श से छू रही है, उतना ही ये इंतज़ार भी कर रही है एक प्यारी सी कहानी का जो मोहब्बत से शुरू हो और मोहब्बत पे ख़त्म हो। और मोहब्बत से याद आता है कि मोहब्बत सिर्फ जज्बातों का मिलन ही नहीं है बल्कि ये एहसास है, ये किसी की ज़िंदगी की मुस्कान है, ये किसी के ज़िंदगी का कह सकते हैं एक हर लम्हा है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि ज़िंदगी में आपकी शुरुआत अगर किसी भी रिश्ते से हो रही है तो उसमें प्यार की पहले मतलब बुनियाद होनी चाहिए। प्यार जो है एक दूसरे को समझने में मदद करता है, एक ऐसा फ़िल्टर है जो एक दूसरे की कमियों और अच्छाइयों को दोनों को एक साथ सामने ला के खड़ा कर देता है और हम एनालाइज़ कर पाते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे लिए परफेक्ट है या नहीं। देखिए परफेक्ट मैच कोई भी नहीं होता है, बस ये होता है कि हम कितने ज़्यादा एक्सेप्टेबल इंसान हैं, सामने वाले को किस रूप में कैसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्या उसकी ऐसी कमियां हैं जो इग्नोरेबल हैं तो ऑब्वियसली हम उसके साथ रह सकते हैं। कहते हैं मोहब्बत का कोई मौसम नहीं होता, जो बदल जाए ये वो खुशबू है जो रूह में उतर जाए, जिसे दिल से चाहो उसका नाम ही दुआ बन जाए और उसकी एक मुस्कान पूरी दुनिया को भुला जाए। कुछ रिश्ते किताबों में नहीं मिलते, कुछ किस्से अल्फाजों में नहीं खिलते, जब दो दिल सच्चे एहसास से जुड़ जाते हैं तब प्यार के अफसाने खुद ब खुद बन जाते हैं। तो इस ब्यूटीफुल सी शाम की शुरुआत मैंने कुछ पंक्तियों से तो की है, लेकिन हाँ कि मेरा जब मन करता है प्यार की बात करने का तो मेरे मन में कुछ लव पोइट्रीज़ भी आ जाती हैं जिनको पढ़ने का आप लोग के सामने मन करता है। इस्पेशली मेरी मतलब फेमस राइटर्स की बात करूँ तो उनकी, और चलिए कुछ पंक्तियाँ आप लोग के नाम मैं करती हूँ जिनको सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा। मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि जब प्यार से जुड़ी कविता सुनने को मिलती है तो मज़ा ही आ जाता है।

रहे हैं। किसी भी प्यार की कहानी की शुरुआत के पहले ये फीलिंग तो हमेशा ही आती है ना, दोनों तरफ मतलब इक्वल फीलिंग होनी चाहिए, तभी प्यार की कहानी शुरू होती है। क्या कहा कि फिर से सुनिए कि

मिला है जिस दिन से प्यार उनका, हर एक शय है निसार मुझ पर।

अगले मतले आप लोग के लिए। अमीर बन कर के वो आज आया, ध्यान से सुनिए।

सके हम, मतलब कि एक कंडीशन होती है कि प्यार जब किसी से हो तो वो जैसा था वैसा ही रहे, मतलब उसको आपके सामने किसी भी चीज़ का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर मतलब प्यार में हम लोग क्या करते हैं, सजते हैं सवरते हैं, सामने वाले को आपसे प्यार है, ना कि आपकी खूबसूरती से, ना कि आपकी पर्सनैलिटी से, ना कि आपके कपड़ों से, ना आपकी ज्वेलरी से, ना आपके शूज़ से, ना आपके परफ्यूम से, वो आपसे प्यार करता है। तो गौर फरमाइएगा कि जिससे वो प्यार करती है वो लड़का कुछ और था, अभी वो जो आया है वो अमीर बन के आया है। ध्यान से सुनिए कि अमीर बन करके वो आज आया, साथ है उसके ना चल सके हम।

बस आज हम घर बदल रहे हैं, तुम्हारी नींदें भी उड़ चुकी हैं, हमारे दिल भी बदल रहे हैं। अक्सर लोग पूछते हैं ना कि ऐसा भी क्या हो गया सामने वाले ने सुसाइड कर लिया। हाँ, कुछ ऐसा हो जाता है जब इंसान ज़िंदगी छोड़ने को मजबूर हो जाता है, उसको कोई रास्ता दिखता नहीं है एक्चुअली में। पर मैं ये कहूँगी कि ये कोई अल्टीमेट ऑप्शन नहीं है, पर हाँ उस समय दिमाग

काम नहीं करता होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। और इंसान सोचता है कि अब बस सामने वाले की ज़िंदगी में मैं नहीं हूँ तो फिर ना ही रहूँ, और इसीलिए चला जाता है। और हम चाह के उसे वापस नहीं ला सकते। तो मैं ये कहूँगी कि रिश्तों के जो कहते हैं ना कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई तो होता ही है, आज नहीं कल होगा, या आज नहीं है कल था, तो इन सब चीज़ों को तो आप लोगों ने समझा ही होगा, बहुत बारीकी से समझा होगा। लास्ट मतलब इसके हैं कि शराब ऐसी भी है जहां में जो होश में आदमी को लाए। अभी तक हमने शराबें सुनी थी जो इंसान को होश से बेहोश कर देती हैं, लेकिन अभी इस शराब की बात हो रही है जो आपको होश में लाएगी कि

वो देखो जामे रसूल पीकर बहकने वाले संभल रहे हैं, हमारी नींदें भी उड़ चुकी हैं।

तो ये थी एक कविता जो कि बहुत ही पसंदीदा है मेरी, और जब भी प्यार की भूमिका मुझे निभानी होती है तो मैं इस कविता का एक सहारा लेती हूँ। और आज लव स्टोरी डे है तो इस कविता ने बहुत प्यारी सी भूमिका निभाई है, और इसी की एक और मतलब कविता है, वो कभी और सुनाऊंगी, जिसकी पंक्तियाँ कुछ ऐसे हैं कि मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। तो एक्सपेक्टेशन इंसान करता रहता है, नॉट ओनली मैं लड़कियों की बात नहीं कर रही, मैं लड़कों की भी बात कर रही हूँ, लड़के भी बेइंतहा प्यार करते हैं और कभी कभी उन्हें वो प्यार नहीं मिलता जिसकी उम्मीद होती है। तो प्लीज़ सामने वाले की फीलिंग्स के साथ ना खेलें, जो फीलिंग्स है उसे जेन्युइनली बताएं और अपनी फीलिंग्स को मतलब लेके लॉयल रहें। हम ये कभी नहीं कह सकते कि हमें इस इंसान से जो मतलब इमोशनल कॉन्टैक्ट है वो किसी और से भी हो सकता है, तो मतलब प्यार कपड़े नहीं हैं बिल्कुल भी जिनको आप रोज़ बदलते फिरें। प्यार बहुत सीरियसली निभाएं और सोच समझ के करें, यानी कि किसी से कर भी लिया ये भी नहीं होना चाहिए, बहुत सेलेक्टिव होना चाहिए आपको। तो चलिए आज की कहानी भी शुरू करेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद थोड़े से गाने सुनते हैं प्यार वाले, जो आपके दिमाग में प्यार का डोपामिन बढ़ा दें। और एक गाना जो मुझे बड़ा ही पसंद है सुनाती हूँ, लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुन के बताइए कैसा है।

जाऊं। फिलहाल मुझे इस गाने की लिरिक्स भूली है, लेकिन आप लोग के साथ वापस से मैं प्यार की जो कहते हैं ना नौका में बैठ गई हूँ और आप लोग के साथ दूर जाने की तैयारी है, क्योंकि पानी भी काफ़ी आसपास मौजूद है, तो उसमें बैठ के प्रेम की नगरिया में हम लोग चलेंगे बिना किसी देरी के। तो फिलहाल आज मैं एक तो रियल स्टोरी के बारे में बात करूँगी कि अगर आप प्यार को सेलेक्ट करने में जल्दबाजी या गड़बड़ी कर लें तो आपकी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। तो वो उदाहरण होगा आपके लिए और एक प्यारी सी कहानी जो कि मैंने एक किताब से पढ़ी थी बहुत सालों पहले, उसके बारे में बात करूँगी। तो पहले पॉजिटिव वाली कहानी, जिसको पॉजिटिव तो नहीं है, प्यार मिला ही कहाँ, बस ये कहूँगी, लेकिन हाँ बताऊँगी ज़रूर। गुड इवनिंग लवली, कैसी हैं आप? इस लवली लवली सी शाम में आपका स्वागत है और सुस्वागतम। स्वागत के साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि हम सभी बातें कर रहे थे आज बहुत सारी, और इन सारी बातों के दौरान मुझे ये पता चल रहा है कि हम सब एक दूसरे से कितने कनेक्टेड हैं, क्योंकि हम लोग की जो चॉइसेस हैं वो काफ़ी बहुत मतलब एकदम सिमिलर एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो इन चॉइसेस के साथ सबसे पहले तो हम लव स्टोरी की बात करते हैं आज, कि आज की लव स्टोरी कौन सी होने वाली है। तो सबसे पहले एक इमेजिनेशन वाली स्टोरी जिसके पात्र काल्पनिक होंगे लेकिन कहानी अच्छी होगी। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी ने इस मूवी को तो ज़रूर देखा होगा, सैयारा। और लव स्टोरी अगर ऐसी हो तो लाइफ एकदम झिंगा लाला है ना। कितनी प्यारी सी स्टोरी है, जिसको मूवी को देख लो ना तो इमोशनल फीलिंग तो दिलाती है, लेकिन एंडिंग इन्होंने बहुत बढ़िया सूटेड मतलब बनाई। अब मुझे तो लगा शायद ये लोग कभी ज़िंदगी में मिलेंगे नहीं, लेकिन हाँ सच्ची बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चाह ले तो बहुत अच्छी सी कहानी या बना के लोगों को एंटरटेन भी कर सकता है और एकदम लास्ट वाली मतलब बिछड़ने वाली फीलिंग भी दिला सकता है। ठीक है, तो अगर हम चाह लें तो हमारे साथ महक भी हैं। गुड इवनिंग महक, कैसी हैं आप? और शुरू करते हैं सबसे पहली कहानी से, जिसमें शांति होगी, मौन होगा, लेकिन प्यार भी होगा। कहानी है एक प्यारी सी लड़की की जो अपने बारे में बताती है, और क्या बताती है चलिए उसी के मुंह से जानते हैं। हमारी प्यारी सी लड़की का नाम है सना। सना की कहानी हम सुनते हैं। सबलू जी गुड इवनिंग, ट्रैकिंग बीना जी सुपर लाजवाब आवाज, थैंक यू सो मच। आशु जी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? चाय आपने भेज दी है और हम टेबल पे रख के बैठे हैं और पीने भी जा रहे हैं। और शुरू करती हूँ कहानी, सना की कहानी है, चलिए सुनते हैं, देखते हैं क्या बताती हैं सना अपने बारे में। उस वक्त मैं कॉलेज में थी, प्रथम वर्ष की छात्रा। उम्र के नाजुक मोड़ पर कदम रखने के बावजूद अब तक मेरी जिंदगी में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ था। हाँ आज कुछ नई चीज़ों का समावेश जरूर हो गया था, जैसे डायरी, अधूरी पंक्तियाँ, लेखन विद्या के प्रति मेरा झुकाव और कॉलेज की जो मंथली मैगजीन है उसके रूप में मानो नया आकाश मिल गया हो, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ लिखना था। मेरा अधिकतर वक्त काव्य रचनाओं में ऐसे उड़ जाता था, पता ही नहीं चलता था। हाँ राज उस समय उस पत्रिका के संपादक समूह के सदस्य में से था, कॉलेज में उनका अंतिम वर्ष था। जाने मेरी अधूरी व अपरिपक्व रचनाओं से वो इतना कैसे प्रभावित हुआ। अपने कलम की छुअन से एक नया रूप देकर पत्रिका को एक नया सा रूप दिया, मतलब मेरी जो अधूरी कविताएं होती थी वो उनको पूरा करके तब पत्रिका में छापते थे। कभी कभी संशोधन के बहाने हम दोनों की मुलाकातें हो जाती थी।
धीरे धीरे कब ये संबंध दोस्ती की दहलीज लांग कर प्रिंग की चौखट पे बैठ गया पता ही नहीं चला। हमें खबर ही नहीं हुई हमारे संबंधों में पता नहीं कब इतनी ज़्यादा इमोशनल फीलिंग बढ़ने लगी पता ही नहीं चला, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे। मेरी अधूरी कविताओं को वो ऐसे पूरा करता था मानो उसी ने लिखी हों। कभी मुझे ये फीलिंग ही नहीं आई कि मेरी कविताएं वो कैसे पूरी कर सकता है। इसी बीच पड़ोस की एक लड़की के प्रेम संबंध की खबर ने हमारे घर में एक बहस का मुद्दा छेड़ दिया। वहीं मेरा परिवार भी इस मैटर को लेके काफी ज्यादा सीरियस हो गया। उसी दिन मैं कॉलेज से लौटकर कमरे में जा ही रही थी कि पिताजी ने मुझे बुला लिया। आवाज़ सुनकर मेरे कदम रुक गए और जब भी कुछ चोरी की हो तो डर तो अपने मन में आ ही जाता है। उन्होंने मुझे बुलाया और संस्कारों की बात बताने लगे कि अपने संस्कार मत भूलना और आजकल देखो मोहल्ले में कैसी बात हो रही है और मुझे मेरी बेटियां पे भरोसा है वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती जिससे मेरा विश्वास टूटे या मेरे स्वाभिमान या आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचे। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले थे और परिवारों में बेटियों को समझदार मानना अच्छा तो होता था लेकिन भरोसा भी एक लिमिट से करते थे, क्योंकि हमारे फैमिलीज में लड़कियां दर्द सह लेती थीं लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं थी और इसीलिए सब लोग को लगता था कि हमें तो विश्वास ही कर लेना चाहिए। अब आगे क्या होने वाला था वो तो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, लेकिन सना अपने पिता की इस कहते हैं ना सलाह से या कह सकते हैं इस जो कहते हैं ना कि इंस्ट्रक्शन से या एक सकते हो रिमाइंडर से थोड़ा डर गई थी। उसे डर लगने लगा था ऐसा ना हो कि मतलब वो और राज जो मिलते हैं इसके बारे में इसके पिता को पता चल जाए। तो चलिए प्रेम की नगरिया में हम लोग चलते हैं, अभी तो सना के साथ हम लोग चल रहे हैं, कुछ देर बाद आप मेरे ही साथ ही चलेंगे। फिलहाल मैं ही ले चल रही हूँ लेकिन हाँ सना की कहानी के माध्यम से चल रहे हैं तो सना को तो क्रेडिट देना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले प्रेम नगरिया में इन लोग को ले चलें, उसके बाद कुछ और सोचेंगे। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। प्रेम नगरिया के तुम भी सवरिया चलो।

आज है लव स्टोरी डे और हम सुन रहे हैं सना की कहानी, सना की जुबानी। तो सना ने जैसा कि बताया कि उसके पिता ने उसे हिदायत दे दी क्योंकि मोहल्ले में कांड हुआ था। उसी दिन से उसके व्यवहार में असर आ गया। वो जब भी कॉलेज जाती तो डरी सहमी रहती, जब भी रात से बात करती तो नजरें चुराती रहती। चाय पीते समय कभी वो ये नहीं सोचती कि वो उसके बगल में खड़ी, वो जाके किसी लड़की के बगल खड़ी हो जाती थी जिससे किसी को कोई शक ना हो। और ये असहजता राज भी महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि सना कुछ तो अनकम्फर्टेबल फील कर रही है। 15 दिन बाद मैगजीन छप के आई, लोगों ने पढ़ा, बहुत सराहना दी। तुम दोनों का काम बहुत अच्छा है, उसे लगा कि कॉलेज में लग रहा है इसके बारे में लोग बात करने लगे। एक दिन वो कैंटीन में बैठे बैठे उसके सामने रोने लगी। उसने अपने पिता की दी हुई हिदायतें राज को बताई और राज एक सोलमेट की तरह उसकी आंखों में आंसू देखते ही उसकी आंखों में भी आंसू आ गए क्योंकि वो भी उसकी रूह की तरह था। उसने कहा कि अगर हमारे मिलने या हमारे प्रेम से किसी के परिवार के सम्मान पे आंच आ सकती है तो हमें हमारा ऐसा प्रेम नहीं चाहिए। और मैं इस प्रेम को यहीं विराम लगाना चाहता हूँ और जल्द से जल्द मैं ये शहर छोड़ के चलाऊंगी। शहर छोड़ने के नाम से सना थोड़ा डर सी गई, सहम सी गई। प्यारे, ऐसा होता है कि जब कोई आपसे दूर जाने लगता है ऐसा लगता है कि कोई आपका कोई ऑर्गन लेके जा रहा है, शरीर का कोई अंग काट के ले जा रहा है। सच में अगर आप सीरियसली किसी से प्यार करेंगे, अगर आपका प्यार दूर होगा या प्यार आपसे बात ना करे, आपसे थोड़ा भी मतलब नाराजगी हो, तो आपको यही फील होगा कि ऐसा लगेगा आपके शरीर का कोई अंग निकाल के ले जा रहा है। जाने के नाम से तो सना बिल्कुल डर गई, पर जाने की वजह राज ने जब बताई तो उसे समझ में आया। उसने कहा, जब भी मैं तुम्हारे सामने होऊंगा तो तुम्हें अपने कर्तव्य, अपनी फैमिली और फिर अपने प्यार में हमेशा लगेगा कि तुमने गलत डिसीजन लिया। कभी तुम मेरी तरफ झुकाव महसूस करोगे, कभी परिवार की तरफ। तो मैं नहीं चाहता कि तुम किसी दुविधा में रहो या दो राहों पर खड़ी रहो, इसीलिए मैं जल्द से जल्द ये शहर छोड़ के चला जाऊँगा। इतना कहना था कि किसे पता था कि अगले दिन से ही राज नहीं दिखेगा कॉलेज में। कुछ दिनों तक क्या ताउम्र आंसू बहाने वाली जो दर्द भरी जो कहता है फीलिंग देके गया था सना, आज भी 5 साल बाद अपनी मैगजीन की वो अधूरी कविताएं पढ़ती है जिसे राज ने पूरा कराया था। उसे लगता है अभी भी इन कविताओं के माध्यम से वो उससे बात कर रही है। उसका प्यार तो अधूरा रह गया, लेकिन उसके प्यार ने उसके घर की मर्यादा और जैसा उसकी पड़ोस में हुआ था उसे होने से रोक दिया। और शायद इसीलिए सना कभी अपने प्यार को भूल ही नहीं पाई क्योंकि उसका प्यार उसके लिए त्याग बन के सामने आया था। तो ये थी सना की और राज की कहानी। आप लोग बताइए आपको कैसी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सबसे खास बात यह है कि प्यार आपको कभी भी किसी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता, किसी भी तरह की दो सिचुएशन में नहीं रख सकता अगर सच्चा प्यार है। और सब लोग लिखते हैं कि हर प्रेम कहानी अपने आप में अनूठी होती है। ये अक्सर एक छोटी सी मुलाकात, आंखों ही आंखों में हुए इशारों और फिर अनजाने में हुई बातचीत से शुरू होती है। समय के साथ एक परिचय विश्वास में बदलता है और दोनों एक दूसरे के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। हालांकि हर सच्ची प्रेम कहानी में कुछ चुनौतियां भी आती हैं जिसका सामना दोनों को मिलकर करना होता है। अपने रिश्ते को अधिक मजबूत बनाना होता है। सच्चा प्यार व्यक्ति को एक बेहतरीन इंसान बनाता है। क्या बात है सबलू जी, बहुत बढ़िया लिखा आपने। विनोद मीरा की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन जयपुर में के एक पुराने कैफ़े में हुई थी। एक और कहानी, चलिए अब ये जो कहानी मैं आप लोग के लिए पढ़ रही हूँ ये सबलू सावंत जी मुंबई के रहने वाले हैं, इन्होंने हमें लिख के भेजी है तो मैं ये कहानी आप लोग के साथ साझा कर रही हूँ। तो अभी सना की और राज की कहानी के बाद बारी है विनोद और मीरा के बारे में जानने की, चलिए सुनते हैं। विनोद मीरा की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन जयपुर के एक पुराने कैफे में हुई थी। बारिश की एक सुहानी शाम थी, इत्तेफाक से दोनों एक ही

किताब पढ़ना चाहते थे। मेज पर रखी उस आखिरी किताब को उठाने के लिए जैसे ही उनके हाथ एक दूसरे से टकराए, मानो वक्त वहीं थम गया। पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया। अगले कुछ महीने किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं थे। वे शहर के पर कोटे में घंटों घूमते, नहरगढ़ की पहाड़ियों से सूर्यास्त देखते, एक दूसरे के सपनों में खोए रहते। लेकिन कहते हैं ना कि सच्ची राह कभी आसान नहीं होती, या कहें प्यार की राह कभी आसान नहीं होती। विनोद को अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने रोज वीडियो कॉल संदेशों से अपने रिश्ते की दूरियों को बचाया, लेकिन धीरे धीरे समय और काम के दबाव के कारण उनके बीच गलतफहमियां पैदा होने लगी। एक दिन एक गलतफहमी इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। इस खामोशी में पूरे 3 साल बीत गए, लेकिन उनकी यादें कभी धूमिल नहीं हुई। 3 साल बाद भी विनोद वापस जयपुर लौटा। संयोग से उसी पुराने कैफे में गया जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उसने देखा कि मीरा वहां पहले से मौजूद थी और वही किताब पढ़ रही थी। जैसे ही उनकी नज़रें मिले, सारी दूरियां, गलतफहमियां बर्फ की तरह पिघल गईं। विनोद मीरा के पास गया और अपने घुटनों पर बैठकर एक अंगूठी निकाली और मीरा की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े और उसने बिना एक पल गंवाए हाँ कह दिया। उनकी अधूरी प्रेम कहानी एक खूबसूरत मुकाम पर पहुंच गई। सच्चा प्यार कैसे समय, दूरी और गलतफहमी को पार कर जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, दूरियां, गलतफहमियां, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, सब पार कर लेता है अगर प्यार सच्चा हो। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना इस प्यारी सी कहानी के लिए। एंड थैंक यू सो सो मच, बहुत प्यारी सी कहानी आपने शेयर की। एंड मुझे नहीं लगता था कि ये कहानी इतनी ज़्यादा हैप्पी एंडिंग वाली हो। मुझे लगा शायद दोनों अलग हो जाएंगे, पर अब लगा है कि ये कहानी बहुत प्यारी है। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना हाफ गर्लफ्रेंड से और इन्जॉय करते हैं ये प्यारी सी शाम प्यारी प्यारी कहानियों के साथ। और अगर आपके पास भी कोई लव स्टोरी है तो प्लीज़ लिख भेजिए, हम आपकी स्टोरी को साझा करना चाहेंगे ऑन एयर। और जैसे कि सबलू जी की स्टोरी ऑन एयर गई, मज़ा आया, बहुत बढ़िया स्टोरी थी, लग रहा था कि हाँ प्यारा सही होता है। इतना ही नहीं, अगर आप खुद सुनाना चाहते हैं तो ऑन एयर आके सुना भी सकते हैं।

अगेन आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आज कहानी का दिन था तो कहानियाँ तो हमने सुनी और सुनाई भी। और गुड इवनिंग अगेन आप सभी को। अनिल जी हमारे साथ हैं, सविता जी हैं, महक हैं, सबलू सावंत जी हैं और बाकी सारे लोग जो जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं, वापस से आपको स्वागत है। और जैसे कि मैंने कहा कि एक ख़ास इंसान के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जिसके बारे में हाल ही काफ़ी सारी न्यूज़ भी हमें सुनने को मिल रही हैं। ऐसा क्या हुआ कि ज़िंदगी में उन्हें प्यार में मतलब जो सक्सेस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। एक्चुअली में जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे या कर रही थी वो उन्हें नहीं मिला। तो ये तो उनके बारे में जब समझेंगे जानेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो जानते हैं कैसे प्यार में उनको धोखा मिला। तो सबसे पहले मैं आज एक एक्ट्रेस की बात करना चाहती हूँ। हम सभी ने अपने बचपन में इस एक्ट्रेस को बहुत पसंद किया और बहुत सारी मूवीज़ एंजॉय की इनकी हमने। एक्टिंग भी, डांस भी, स्माइल भी, और दिलों पर राज करती रही थी अपने ज़माने में। नाम है करिश्मा कपूर। करिश्मा काफ़ी सक्सेसफुल एक्ट्रेस में से रही। उनकी हर फिल्म जब भी आती थी गोविंदा के साथ, मोस्टली जो भी मूवीज़ उन्होंने की, और बहुत सारे एक्टर्स के साथ काफ़ी सक्सेसफुल जर्नी रही। और उस जर्नी में तो वो बहुत आगे निकल गई, बहुत अच्छी एक्टिंग भी की उन्होंने, पर अपनी पर्सनल लाइफ में प्यार को कहीं मतलब पूरा नहीं पाया उन्होंने। कभी सगाई टूट गई तो कभी शादी टूट गई। करिश्मा को प्यार नहीं मिला अगर देखा जाए। शुरुआत में करिश्मा को जब देखा गया कि जाना गया कि करिश्मा और अजय देवगन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। शूटिंग के दौरान दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने। जिगर फिल्म की शूटिंग हुई, दोनों को लगा कि हाँ वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लोग पूछते कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो, लेकिन करिश्मा हमेशा इस बात से इनकार कर देती। वो हमेशा ही गाती, नहीं नहीं हम तो दोस्त हैं। और इस दोस्ती को समझते हुए अजय ने भी अपनी दूरी बना ली। फिर करिश्मा का नाम जुड़ा गया गोविंदा और सलमान खान के साथ। और ऑन स्क्रीन तो लोग इनको पसंद ही करते थे, ऑफ स्क्रीन भी लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई, लेकिन बात बनी नहीं एक्चुअली में दोनों के बीच में क्या था ये तो वही लोग जाने। फिर एक ऐसा मोड आया जब लगा कि अब तो परफेक्ट होने वाली लाइफ। अभिषेक बच्चन की सगाई हुई करिश्मा कपूर के साथ, दोनों डेट भी करते थे, दोनों 5 साल तक रिलेशनशिप में रहे, उनकी सगाई हो गई। बच्चन परिवार ने करिश्मा को फैमिली के तौर पे इंट्रोड्यूस भी करा दिया था। सारी चीज़ें ठीक ठाक थी। और फिल्म भी आपने वर्ल्ड देखी है मूवी जिसमें हाँ मैंने भी प्यार किया। चलिए मैं आपको गाना ही सुना देती हूँ। बड़ा अच्छा सा गाना था, बहुत इस गाने से बहुत दोनों हिट हुए थे। फिल्म आप लोग गेस करके बताइए ये किस फिल्म का गाना है। और इस फिल्म में दोनों के बीच में बड़ा तगड़ा वाला प्यार था और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब जुड़े हुए थे। तो मैं सुना देती हूँ गाना। हम यार हैं तुम्हारे, हम प्यार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो। फिलहाल दोनों के प्यार को फील करिए इस गाने से, नहीं तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। भाई 5 साल का रिलेशनशिप था दोनों के बीच में, मतलब मैं प्यार की जर्नी बता रही हूँ कि प्यार की जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। तो चलिए करिश्मा और अभिषेक बच्चन के प्यार को इस गाने से फील करते हैं।

हाँ भाई, इतना प्यारा सा गाना सुन के तो सबका प्यार करने का मन करेगा। लेकिन हाँ, जैसा कि सबलू जी ने कहा कि मतलब पूरी मूवी की स्टोरी सबलू जी को पूरी याद है। हाँ भाई, अक्षय कुमार की और करिश्मा की शादी होने वाली होती है, शादी वाला दिन होता है, करिश्मा को पुरो रही होती ऊपर बैठ के, तब ये गाना गाते हैं। इनको गाना गाने का बड़ा शौक होता है। अभिषेक बच्चन को तो ये गाना गान, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। लेकिन ये लोग मूवी में ही मिलते हैं, हकीकत में नहीं मिलते हैं। दोनों की मतलब जो सगाई है वो टूट जाती है, मतलब फैमिली के तौर पे दोनों की फैमिली एक दूसरे को एक्सेप्ट करती है, लेकिन 2002 में ही जैसे सगाई दोनों कुछ ही दिनों बाद तोड़ देते हैं। फिर फाइनली करिश्मा कपूर को पसंद आते हैं, या जो भी इनकी फैमिली को पसंद आते हैं, संजय कपूर जो कि एक बिजनेस टाइकून है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। और 2003 में दोनों की ग्रैंड सेरेमनी हो जाती है, शादी हो जाती है और अच्छी लाइफ चलती है ठीक ठाक कुछ दिन तक। लेकिन उसके बाद फिर मैसिव कहते हैं ना कि इंटर रिलेशंस ख़राब होने लगते हैं। दो बच्चे भी हैं इनके, एक बेटा और एक बेटी, लेकिन ये भी शादी चल नहीं ज़्यादा पाती। और इतना ज़्यादा मैं कहूँगी हिंसा बढ़ जाती है दोनों के बीच में, इतना ज़्यादा कह सकते हैं टॉक्सिक हो जाता है रिलेशन कि दोनों तलाक लेना चाहते हैं। और फाइनली 2016 में इनका और संजय का तलाक हो जाता है। फिर कुछ दिनों तक करिश्मा बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ती हैं, एंड फाइनली इनके बच्चों की कस्टडी भी करिश्मा कपूर को मिल जाती है। और करिश्मा कपूर का कहना है इनके तलाक को लेके कि इनके साथ घरेलू हिंसा होती थी, यानी कि हाँ मतलब आप घरेलू हिंसा तो समझते हैं, अब इसको मैं क्या ही व्याख्या करूं। ऐसे ही इन्होंने भी एलिगेशंस लगाए, अब कौन सही कौन गलत है ये तो हम लोग नहीं बता सकते, पर अगर घरेलू हिंसा की बात की जा रही है तो मे बी सच्चाई हो सकती है, नहीं भी हो सकती क्योंकि हमने तो देखा नहीं। लेकिन हाँ, घरेलू हिंसा गलत होती है, दोनों को एक दूसरे को समान समझना चाहिए। और जब तक उनके साथ रिलेशन में थी तब तक मुझे लगता है उन्होंने कोई फिल्म भी नहीं की, क्यों नहीं की इसके पीछे का रीज़न मैं नहीं जानती। फिलहाल इनकी जो भावनाएं हैं, करिश्मा की भावनाएं इस गाने समझते हैं, कैसे उनका रिश्ता टूटा, क्यों इतने ज़्यादा मतलब अनस्टेबल रही ये प्यार में, ये तो नहीं हम जानते। लेकिन इनकी स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है, क्या सिखाती है लास्ट में बताऊँगी, पहले ये गाना सुनिए फिर इनकी स्टोरी में जो हैप्पीज टाइम चल रहा है उसकी बात भी करूँगी।

0: ठोकरें खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे।
1: चाबी
2: सर, ऑन स्टेज 5 मिनट्स।
1: ओके, तुम आ रही हो?
2: मैं जा रहा
3: हूं। ये गाना संजय की तरफ से, करिश्मा की तरफ से तो आप लोगों ने सुन लिया।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ

0: ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है, वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतरालो रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: चलिए अब वापस से आप लोग को फिर एक और खबर दे दूं कि एक ज़माने में ये भी बात हुई थी कि मतलब हमारे जो करिश्मा कपूर हैं उन्हें अक्षय खन्ना से प्यार हो गया था। हुआ था या नहीं था ये तो हम नहीं जानते, दोनों के बीच दोस्ती अच्छी थी। फाइनली अब इतने दिनों बाद करिश्मा को उनका परफेक्ट हम सफ़र मिल गया है। अराउंड काफ़ी संघर्ष करना पड़ा उनको एक सच्चे प्यार या हम सफ़र जो भी कह सकते हैं। यहाँ पे शादी की बात नहीं है, यहाँ बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ सच्चे प्यार की। आखिर सच्चा प्यार क्यों नहीं हमें मिलता या क्या कमी रह जाती हमारी तरफ से या सामने वाले की तरफ से, ये तो हम किसी के बारे में क्या ही बता सकते हैं। पर हाँ, सच्चा प्यार नहीं मिलता तो फिर ज़िंदगी बड़ी बेकार हो जाती है। फिलहाल करिश्मा को उनका सच्चा प्यार अक्षय खन्ना के रूप में मिल गया और दोनों ने फाइनली शादी कर ली है। कब की तारीख तो इन लोगों ने अभी डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पे हर जगह ये चीज़ आ रही है कि इन्होंने पहली रसोई बना ली और रसोई में इन्होंने हलवा बनाया। तो फाइनली हम सब भी बना लेते हैं हलवा और खा लेते हैं दोनों की शादी की खुशी में। और बहुत अच्छी चीज़ है, देखिए मौका अगर मिले, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये बात याद रखिए। अगर आपको ज़िंदगी एक बार मिली है तो एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए। अगर लगता है कि दूसरी शादी आपको एक दूसरा मौका दे रही है, लगता है कि आपकी लाइफ परफेक्ट होगी, तो प्लीज़ अपने आप को मौका दीजिए। और आज प्यार पे बहुत सारी बातें हुई, सबने बहुत बहुत ओपिनियंस भी दिए अपने, लेकिन ख़ास चीज़ ये है कि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि करिश्मा के बारे में बात कर रहे थे, काफ़ी मतलब टेढ़ी मेढ़ी सी दास्तान रही है। और इस में फाइनली उनको उनका प्यार मिला, लोगों ने ऐसा बताया, न्यूज़ के माध्यम से पता चला था कि दोनों एक दूसरे से बहुत पहले से प्यार करते थे, लेकिन फाइनली वो प्यार मुकम्मल नहीं हुआ, दोनों दोस्ती में आ गए, लेकिन दोस्ती को फिर से प्यार में कन्वर्ट कर दिया दोनों ने। और चलिए देखते हैं ये प्यार, ये शादी हमेशा चलती है या नहीं। फिलहाल हम लोग तो यही ब्लेसिंग्स देंगे, दोनों हमेशा खुश रहें। जैसे ये हलवे की मिठास इतनी सुपर्ब सी होती है, वैसे ही इनकी लाइफ में भी हलवे की मिठास घुल जाए और ये लोग हमें हैप्पी हैप्पी हमेशा रहें। तो चलिए इनके लिए थोड़ा सा पैचअप वाला सॉन्ग सुनते हैं, मज़ेदार सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है? लेट्स एंजॉय ब्यूटीफुल सॉन्ग।

जैसा कि बारिश हो रही है तो बारिश को मद्देनजर रखते ही मैं ये गाना दोनों को डेडिकेट करना चाहूंगी। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस करिश्मा एंड अक्षय, गॉड ब्लेस यू, हमेशा आप लोग खुश रहें और हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।

मौसम तो रोज आएगा आपका और मेरे मिलने का, क्योंकि रोज शाम के 6 बजेंगे और रोज आरजे भी ना आपके साथ ऑन एयर लाइव होंगी और आपसे करेंगे ढेर सारी बातें हर अलग अलग विषय पे। वैसे कल का दिन अपनी डायरी में लिख लीजिए और ना हो तो मोबाइल में टाइमर लगा लीजिए, कल वेंसडे है। वेंसडे यानी कि आपका दिन, अंताक्षरी वाला दिन, और मैं कोई मदद नहीं करने वाली, लेकिन हाँ रूल्स जरा और बनाने वाली हूँ नए नए, जो आपको आपकी कहते हैं ना जीत से दूर या करीब ला सकते हैं। तो फिर कल मिलते हैं इस बारिश वाले मौसम को एंजॉय करते हुए। चलिए बनाते हैं एक प्लेट पकौड़े और खा लेते हैं और अगली शाम का इंतजार करते हैं। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना वाला रेडियो स्टेशन बजाते रहिए। आप सुन रहे हैं आरजे बीना के साथ शो गुंडा मैसे मसाला, अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी 89.6 FM पर। स्टे ट्यून्ड, कुछ ही देर में आप सुनेंगे अपनी पसंद के गाने आरजे सिंपल के साथ, गीत आपके नाम से।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

सो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने इसी बहुत ही खूबसूरत से गाने की तरह अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बेहतरीन सा गाना टटोल लीजिए एकदम आज के मौसम की तरह, और हमारी फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए, लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ना दोस्तों। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। आशु मिश्रा जी लखनऊ से, मुस्तफा जी सऊदी से, मालवे नगर से राजेश सिंह जी, नवीन राजपूत एमपी से, अनिल वर्मा सैदापुर से, सबलू सावंत मुंबई से, लवली सिंह गोंडा से, शशि सिंह गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, महक, एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सो एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश, और पहली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, उनको सुनना है गाना भूल भुलैया तेरी अखिया सैया। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला अमीरी गरीबी मूवी का नगमा आशु जी की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन स्टेट।

कर जाऊं, कैसे हमने इंजॉय किया है। ये नगमा बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मुस्तफ़ा जी की सऊदी से। मुस्तफ़ा जी को सऊदी से सुनना है गाना, कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, और यारों रब से दुआ करूं मैं उसको भूल जाऊं। इसी के साथ में अनिल वर्मा जी का कहना है कि बहुत खूबसूरत होती है वो मोहब्बत जनाब, जिसकी शुरुआत चेहरे से नहीं सादगी और सीरत से होती है। स्टे ट्यून्ड।

तू तो बेवक्त आती है, याद हर वक्त आती है। हमने एंजॉय किया है तीन गानों का मैशअप दोस्तों, एक ही नगमे में ये दर्द भरा नगमा हमने एंजॉय किया है सिर्फ और सिर्फ हमारे मुस्तफा जी की फरमाइश पर, जो की है सऊदी से। और उदालक शर्मा का कहना है ओ माय गॉड नाइस सॉन्ग, सो मुझे भी ये गाना बहुत अच्छा लगा है। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो उदालक शर्मा मनकापुर से, नीना इंडिया से आपका भी स्वागत है, और सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से स्टे ट्यून्ड। सबलू सावंत का कहना है मुंबई से कि तू पूछ लेना सुबह से, ना यकीन हो तो शाम से, ये दिल धड़कता है बस तेरे ही नाम से, तेरे इश्क ने दिया सुकून इस दिल को, वरना दुनिया तो रूह तक जला देती है, मेरी हर सांस में तेरा नाम है, तू ही मेरी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत मुकाम है, मोहब्बत में शक की कोई जगह नहीं होती, मोहब्बत में शक की कोई जगह नहीं होती, और अगर यकीन ना हो तो सच्ची मोहब्बत भी नहीं होती, और उस मोहब्बत का क्या। सबलू सावंत जी कि जिस मोहब्बत के यकीन को चकनाचूर कर दिया जाता है और फिर उससे सच्ची मोहब्बत की उम्मीद रखी जाती है, क्या वो मोहब्बत सच्ची नहीं होती। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की, उनको सुनना है गाना देखो देखो जी। सो एंजॉय करते हैं लता जी की आवाज में ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड।

कितने अकेले हैं हम तुम, हमने एंजॉय किया है ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा लता जी की आवाज में हमारे मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा और शिवा विद्यानगर मोतीगंज से आपका भी स्वागत है एंड आसिफ खान मुंबई से वेलकम इन योर शो। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है नवीन राजपूत जी की एमपी से। नवीन राजपूत जी हैं ग्रेट ऑपरेटर ग्राम बासला तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर मध्य प्रदेश से। तो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा हमारे नवीन जी की फरमाइश पर। और सच में मौसम तो एकदम गजब का आया है एकदम आपकी तरह।

चिकनी डगर है, गिरने का डर है, थाम के तेरा हाथ चलूं। हमने एंजॉय किया है साधना सरगम उदित नारायण की आवाज में अनाड़ी का ये नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल वर्मा जी की सैदापुर से, और अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है गुंडा राज का गाना एक निगाह में। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। संतोष कुमार जी गिलौली से आपका स्वागत है। स्टे ट्यून्ड।

जरा। गुंडा राज का ये नगमा हमने एंजॉय किया है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है सबलू सावंत की मुंबई से। सबलू सावंत को मुंबई से सुनना है गाना प्यार का अंजाम। सो बेवफा मूवी का ये नगमा एंजॉय करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ हमारे सबलू सावंत जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

मोहब्बत किए जा रहे हैं। सबलू सावंत जी, मैं बस इतना कहना चाहूंगी आपके इस फरमाइशी गीत को सुनने के बाद में कि आपके फरमाइशी गीत ने तो स्टूडियो का पारा बढ़ा दिया। आपके फरमाइशी गीत ने तो स्टूडियो का पारा बढ़ा दिया, धड़कन को एक पल के लिए थमा दिया। गाने तो एक से एक बढ़कर हम सुनते ही रहते हैं, गाने तो एक से एक बढ़कर हम सुनते ही रहते हैं, पर आपने तो सीधे दिल पर ही निशाना लगा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है लवली सिंह की, और लवली सिंह को सुनना है गाना कोई तो साथी चाहिए। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा लवली सिंह की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

उदास है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। हमने एंजॉय किया है कुमार सानू की आवाज में कसूर का ये गाना, लवली सिंह की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा। अब अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों शशि सिंह जी की, उनको सुनना है गाना दाग मूवी का लता जी की आवाज में, जब भी जी चाहे। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा शशि सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

0: एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। हमने इंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा शशि सिंह जी की फरमाइश पर। और इस गाने को सुनने के बाद में शशि सिंह जी से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती, जहाँ दिल मिल जाए वहीं उसकी मंजिल हो जाती है। लेकिन दिल मिलने के बाद भी बहुत प्रोसेसेस होते हैं, उसके बाद ही दिल मिलता है। ये जो हम सोच लेते हैं कि पहले ही कनेक्शन में लव हो गया फिर बाकी सब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों के बाद में लव का कनेक्शन सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। क्योंकि वो कहा जाता है ना कि जैसे हर एक स्कूल में परीक्षा होती है, हर एक चीज़ की परीक्षा होती है, वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि ये प्यार मोहब्बत की भी परीक्षा होती है। जो पास कर ले जाते हैं वही करते हैं सच्ची मोहब्बत। लोगों को भी यही लगता है, मुझे भी यही लगता है, आपको भी शायद यही लगता होगा। और मुझे ऐसा लगता है फिर तो मैं किसी से सच्ची मोहब्बत करने ही नहीं वाली हूँ। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की, और उनको सुनना है गाना आजा सोनी। एंजॉय करते हैं अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में मुझसे शादी करोगी मूवी का ये सुपर डुपर हिट नगमा। स्टे ट्यून्ड।
1: दिल मांगता है दिल दिल दिल मांगता है दिल मांगता है दिलदार सोनिए तू आजा सोनिए।

जी अभी तक सोनिए आई नहीं है ना, अभी तक सोनिए ने प्यार की कदर नहीं की है, प्यार का करार नहीं किया है, इसलिए बोला जा रहा है आ जा सोनिए। एक दिन सोनिए आ जाएगी तो बोला जाएगा कि तू कब जाएगी सोनिए, यहाँ से चली जा सोनिए। और ये वाला भी गाना बन जाता अगर सोनिए आ जाती तो। क्यों सही गाना मैंने, आपको बड़े ऐसे गाने अच्छे लगते हैं अजय मिश्रा जी। हाँ भाभी जी से शिकायत करूं कि भैया जी कैसे कैसे गाने सुनते हैं। फिलहाल मुझे तो मजा ही आ गया आपकी फरमाइश गीत को एंजॉय करके। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है आसिफ खान की। आसिफ खान को सुनना है गाना धीरे धीरे। सो एंजॉय करते हैं धीरे धीरे से, धीरे धीरे वाला गाना। कोई आवाज मत करना, आवाज करना तो धीरे धीरे से करना, क्योंकि ये धीरे धीरे वाला गाना नाराज हो जाएगा, है ना। शायद मैं ये गाना पहली बार सुन रही हूँ, और अगर नहीं तो चैट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिख के बताना कि क्या मैंने ये गाना सुना होगा या फिर नहीं सुना।

धीरे धीरे धीरे धीरे मुझे अपना बना रही है, धीरे धीरे देखो अपना बना रही है, पता चल रहा है तो धीरे धीरे बना रही है, तेजी से खिसक लो भाई, नहीं तो लो चाय उल्फत हो गया, हो जाएगा। हमने एंजॉय किया ये वाला नगमा, बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी आसिफ खान की, अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से। सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से फरमाइश को एंजॉय करेंगे और इस फरमाइशी गीत की उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज़ की दुनिया में, जहाँ हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाना, यहीं बने रहना अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। मिलते हैं सीधे 9 बजे। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है उनसे गुजारिश है कि पेट पूजा करके आना, फिर काम दूजा करेंगे, मींस एंटरटेनमेंट की बौछार लगाएंगे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: मामला सुधार के लिए दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने

0: योजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के

0: कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 168,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
2: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे।

29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। दो दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जैसा कि आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल, हु इज नॉट सो सिंपल, आपकी अपनी परमाइशी शो में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सो कैसे हैं आप सब और क्या आप सभी ने पेट पूजा किया, मुझे ज़रूर चैट बॉक्स में बताना। इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है नीना की, और नीना को सुनना है मोहम्मद रफ़ी लता जी की आवाज़ में नगमा। तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई और खता बख्श दो गर खता हो गई। इंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, मेरा फेवरेट वाला नगमा, मेरे दिल के बहुत करीब रहने वाली धुन, सिर्फ और सिर्फ नीना की फरमाइश पर। और आप सुन रहे हैं आपका अपना फरमाइशी, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट्स

वाओ, हमने एंजॉय करी बहुत ही खूबसूरत सनमा मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी हमारी नीना की, और अगली फरमाइश हमारे पास में है चांदनी की। चांदनी को सुनना है गाना दिल मेरा मुफ्त का, सो एंजॉय करते हैं। यू तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे। क्यों? क्योंकि दिल मेरा मुफ्त का। एंजॉय करते हैं ये गाना चांदनी की फरमाइश पर। वो चांदनी है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड, आई लव दिस सॉन्ग। चांदनी।

हमने एंजॉय किया ये एजेंट विनोद का सुपर डुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से आपका स्वागत है और वेलकम करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल इज नॉट सो सिंपल और इस गाने को डेडिकेट करती है आपको क्योंकि आए आप तुरंत ये गाना बजा और आपने भी दिल से प्रणाम किया तो दिल से भी ये डेडिकेशन है आपके लिए और दिल मेरा मुफ्त का लव यू सो मच एवरीवन एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश और अगली फरमाइश हमारे पास में है सबीहा की सबीहा को सुनना है गाना लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको और तुम याद नहीं हमको हम याद नहीं तुमको याद सबको सब रहते हैं बस ये अपने दिल को बहलाने की बातें होती हैं कि तुम याद नहीं हमको हम याद नहीं तुमको क्यों सही कहा ना मैंने चैट बॉक्स में ज़रूर बताना स्टेडियम

दोस्तों एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। ये तो थी सबीहा की फरमाइश, और अगली फरमाइश हमारे पास में है के गुप्ता जी की तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से, और के गुप्ता जी के साथ में ये फरमाइश है निशा की भी पटेल नगर गोंडा से। सो निशा और के गुप्ता जी की फरमाइश पर एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा नगमा। राज आंखें तेरी सब बयां कर रही, राज रिबूट का ये गाना है, अरिजीत सिंह की आवाज़ में हम इंजॉय करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, रियलिटी चेक कराने वाला नगमा शायद, और मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब रहने वाला नगमा। स्टे ट्यून। वो कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप सिर्फ उनकी आंखों से पढ़ सकते हैं, तो उन कुछ लोगों में मैं भी आती हूँ दोस्तों। अगर आपको मुझे पढ़ना है बस आप मेरी आंखों में देख लो, अगर आपको मेरी आंखों को पढ़ना आ गया ना तो आपने मुझे पढ़ लिया। इसीलिए ये गाना मुझे बहुत

पास बैठे रहो। इश्क की कैसी हैं ये गहराइयाँ और राज आँखें तेरी सब बयां कर रही। हमने इंजॉय किया ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। उसके पहले स्वागत है आपका गीता श्रीवास्तव जी। इनका कहना है कि रेडियो में आंखें नहीं नजर आती हैं मैम, सिर्फ आवाज सुनाई देती है जो बहुत ही मधुर है। लव यू सो मच गीता श्रीवास्तव जी, वेलकम इन योर शो। और आप तो सामने से आ सकती हैं, आप तो बहुत नज़दीक रहती हैं। अगर सामने से देखना है और सामने से आंखों को देखना है तो बताइएगा फटाफट से। जब आप कहेंगे उसके 10-15 मिनट के अंतराल में मैं आपके सामने होंगी और आप मेरी आंखों को पढ़ सकती हैं। और इसी के साथ मैं इट्स कुमार का एमपी रीवा से कहना है कि अरे उनका संदर्भ मन की आंखों से था। अरे आप एकदम गलत हैं इट्स कुमार जी, एमपी रीवा से मेरा संदर्भ बिल्कुल मन की आंखों से नहीं था, मेरा संदर्भ असली आंखों से था। और असली इसका मतलब ये है कि साफ साफ पूर्णता में ये कहना चाहूंगी, जिसको समझना है आरजे सिंपल को वो आ जाए आरजे सिंपल के पास एकदम आंखों के सामने, और आंखों में आंखें डाल के बस आंखें पढ़ ले, फिर कुछ कहने कुछ सुनने कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश एंजॉय करेंगे। और एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी दोस्तों कि आज से आप लोग का फरमाइशी का प्रोग्राम का समय हो चुका है 9:25, 5 मिनट काट लिए गए हैं आपके आरजे मनु की तरफ से। तो जो भी शिकायतें करनी होगी आप अपने आरजे मनु से करिएगा। फिलहाल एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है मोहित की मालवीय नगर गोंडा से और गीता श्रीवास्तव जी की गोंडा से। एंजॉय करते हैं वाली फरमाइश और इसी के साथ में लेना चाहूंगी अलविदा। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल सो मच, केयर सो मच, लव टू यू गाइस, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बिल्कुल जान लीजिए, और मिलते हैं आपसे संगीत में अंतर के उस पार।
1: बस एक बार

जी हाँ, कहिए तो आसमां को जमीन पर उठा के लाए। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। लोग कहते हैं कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ मुश्किल नहीं होता, लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? शायद हाँ और शायद नहीं। मतलब इस बात को हम पूरे भरोसे के साथ नहीं कह सकते कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। कुछ लोगों ने ठाना और ठानने के बाद चीजों को आसान कर दिया, लेकिन ये सबके साथ नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने ठाना और शकील आजमी कहते हैं कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो अगर आप ठान लेंगे तो आप जीत जाएंगे। लेकिन जरा हम विचार करके देखें तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे विषय पर जहां पर हम कभी कभी लगता है कि तकदीर, कभी कभी लगता है कर्म,

इन दोनों में कौन प्रधान है, इसका फैसला कर पाना बड़ा शायद मुश्किल काम होता है। डॉक्टर बशीर बद्र लिखते हैं कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उस पर छत रखी, क्यों हथेली की लकीरों से है आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से है आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत लिखी। तो सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं, कई कई पहलू ये होता है कि हुई है सोई जो राम रच राखा, और कभी कभी यह होता है कि नहीं, कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। तो ये निर्णय कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जे मैसा जुड़ चुके भाई, गीता श्रीवास्तव जी प्रणाम करते हैं आपको, सविता शास्त्री जी आपको भी चरण स्पर्श प्रणाम करते हैं, शुभ संध्या आपको भी। और चलिए, आप हम लोग कहा जाता है मुंडे मुंडे मत भिन्ना, यानी इस दुनिया में जितने प्रकार के लोग हैं उतने प्रकार की उनकी सोच है। डॉक्टर बशीर बद्र साहब क्या कहते हैं, उनकी सोच कभी कभी बहुत अच्छी लगती है, आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। उन्होंने लिखा कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। तो जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता, मतलब वो कहते हैं कि पानी की एक बूंद का अपना एक अस्तित्व है, लेकिन जो दरिया होता है वो अगर समंदर से मिल जाता है तो फिर उस दरिया का कोई मौज अस्तित्व नहीं रह जाता, कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता, मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है, मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। ठीक, मतलब अगर आप अकेले हैं तो ये मान कर चलिए कि आप अकेले नहीं हैं, और इंसान जब भीड़ में होता है तो हो सकता है वो कभी कभी अकेला हो जाए। मतलब सिक्के के दो पहलू हैं, कहने को अगर हम देखें तो एक शब्द होता है कि लोनलीनेस, और एक शब्द होता है सॉलिट्यूड, एकांत। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इन दोनों के अंतर को जरूर क्लियर करेंगे, आपसे भी आपकी राय जानेंगे, लेकिन लेते हैं एक संगीत में अंतराल और मिलते हैं इस प्यारी सी गजल के बाद। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल जी हाँ, आइए जिनके स्वर में साक्षात माँ शारदे का वास है, ऐसा लोग कहते थे।

0: और अभी भी कहा जाता है और ये हमेशा कहा जाता रहेगा। शुरुआत करते हैं एक आशा भोसले जी की आवाज में, हमने आपको गजल सुनाई और अब एक गजल आइए आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर जी और उनके साथ हैं मन्ना डे। सुनते रहिए और रेडियो गणेश स्लेट 9.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।
1: सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है सुनहरे गाने और कुछ यादें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।

जी एक बार पुनः आप सभी का इस्तकबाल अभिनंदन वंदन नमन हो। स्वागत हमारे साथ सविता शास्त्री जी हैं जी, नाइस और बहुत सारे स्टार्स दे दिए। दलक शर्मा जी मौजूद हैं, नमस्कार आपको। दादा अनिल शास्त्री जी है, चरण स्पर्श करते हैं आपको, गुड इवनिंग शुभ संध्या। और उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी शाम अच्छी होगी। जी हाँ, आरजे सोनी जी गोपालगंज से बहुत दिनों के बाद हमको दिखाई पड़ी। गीता श्रीवास्तव ने भाई क्या बात है, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, क्या बात है। और वेरी वेरी गुड इवनिंग सर जी, आपको भी आरजे सोनी जी गोपालगंज से वेरी वेरी गुड इवनिंग। फिर चलते हैं बशीर बद्र साहब की तरफ, जिंदगी के कई सारी पहलुओं को छूती हुई उनकी गज़ल, उनकी नज़में। पता नहीं कितने ऐसी फिल्में बनी जिन फिल्म में उनके डायलॉग को कोट किया गया, उनकी शायरी को कोट किया गया। जैसे हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ये अभी मैं देख रहा था कोई फिल्म, मनोज वाजपेयी ने डायलॉग बोला था। मतलब कहा जाता है कि जो कलाकार होता है, जो गज़लकार होता है, कहानी लिखने वाला कोई व्यक्ति होता है, वो स्वांता सुखाए, मतलब अपने सुख के लिए लिखता है। लेकिन कविता जब तक आपके जहन में है, गज़ल जब तक आपके जहन में है, तब तक वो आपके जहन में है। अगर वो कागज़ पर आ गई और लोगों ने उसको पढ़ लिया, फिर वो जहन की नहीं हो जाती, फिर वो जहान की हो जाती है जी। मतलब उसको फिर कोई भी आम भाषा में हम लोग कोट कर लेते हैं किसी ऐसे मौके पर, जैसे एक फिल्म बहुत अच्छी आई थी अमिताभ बच्चन की, बहुत प्यारी एक्टिंग, शराबी। उसमें उन्होंने गालिब की गजल को शेर को कोट किया। उन्होंने कहा कि सुना था खुल्द का आदम से निकलना, सुना था खुल्द से आदम का निकलना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। उसी के आगे की पंक्तियां हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो कहीं कहीं कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं जो सदा के लिए साहित्य में छा जाती हैं। डॉक्टर बशीर बद्र, अभी हाल ही में जिनका इंतकाल हुआ, उनका गोलोकवासी हुए वो, उन्होंने कहा कि सर से पांव तक वो गुलाबों का शजर लगता है। देखिए, गुलाब का पौधा होता है, लेकिन उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया शजर। शजर कहते हैं पेड़ को, सामान्यतः गुलाब का पौधा होता है, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किया कि अगर वो किसी अपने किसी महबूब की बात कर रहे हैं तो गुलाब का पौधा नहीं, गुलाब का पेड़। सर से पांव तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू होके भी। बावजू बोलते हैं कि जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो उसके पहले हाथ पैर मुंह आँख नाक कान इन सबको धोया जाता है, उसको वजू करना बोलते हैं। अगर आपने गीत सुना होगा, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, तो उसमें एक शब्द आता है, कोई वजू करे मेरे जल से, कोई पंडित प्यास बुझाए। आपने सुनी होगी जरूर ये पंक्तियां। तो बावजू मतलब अपने आप को पवित्र कर लेना। शर से पा तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू होके भी छूते हुए डर लगता है। जिंदगी तूने कब्र से भी कम दी है जमीन। अब देखिएगा जिंदगी की हकीकत, एक तरफ मोहब्बत और दूसरी ओर जिंदगी की हकीकत। मोहब्बत और हकीकत के बीच में कितना फासला है। जिंदगी तूने कब्र से भी कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार में सल लगता है।
मतलब इतना भी नहीं दिया कि अगर मैं पूरा अगर लेटना चाहूँ तो उतनी भी जमीन मेरे नसीब में नहीं थी। तो साहब हम जीते हैं और जीने के लिए जो मुख्य आवश्यकताएं हैं वो रोटी कपड़ा और मकान। इसके बाद जब इन तीन चीज़ों से हम परिपूर्ण होते हैं तो मेरी निगाह फिर कहीं अलग भी जाती है। फिर हम मोहब्बत की बात करते हैं, गुफ्तगू की बात करते हैं। लेकिन अगर इंसान का पेट ना भरा हो ना साहब, तो शायर ने भी कहा कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा।

0: मेरे महबूब तू मुझसे वो पहली सी मोहब्बत न मांग, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। जी तो अब जब बात रोटी कपड़ा मकान तक आ गई है तो क्या बात है भाई, इसी बीच हमारे बीच प्रवल मिश्रा जी आ चुके हैं। गुड इवनिंग सर जी, शुभ संध्या प्रवल जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और रोटी कपड़ा और मकान से बात याद आ गई तो बहारे गज़ल को हम लेकर चल रहे हैं। चलिए आपको इसके बीच में एक कव्वाली सुनाते हैं इसी फिल्म की। आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको दो काम भी दे रहे हैं। पहली चीज़ तो आपको ये बताना है कि इस कव्वाली में कितने गायक कलाकारों की आवाज़ है, उनके नाम। और दूसरा, इस कव्वाली में मार गई शब्द कितने बार आया है। प्रश्न एक बार पुनः सुन लें। अब आप मनोरंजन के साथ साथ आपका मानसिक व्यायाम भी कराते हैं। मैं आपको सुनाऊंगा ये प्यारी सी कव्वाली और आपको बताना है कि इसमें आवाज किसकी किसकी है, क्योंकि हो सकता है दो से ज्यादा लोग हों। और दूसरी बात यह है कि आपको ये गिनना है कि मार गई शब्द कितने बार आया है। देखते हैं हमारे कौन से ऐसे श्रोता हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है और आपने गिन लिया तो भी आप हमको बता दीजिएगा कि हाँ भाई मार गई शब्द इतने बार आ गए हैं। और आवाज़ अगर पहचान लीजिएगा तो आवाज़ भी बता दीजिएगा, हम आपको ऑन एयर करेंगे। क्या इस कव्वाली में इन इन गायक कलाकारों की आवाज़ है और मार गई शब्द इतने बार आया है। अब चलिए आज आपके साथ थोड़ा सा मानसिक व्यायाम भी करा लेते हैं आपको। जी हाँ, देखते हैं कि इस परीक्षा में कौन होता है सफल। बहुत दिनों के बाद श्याम नाम की पगली हमारी माता जी उपस्थित हो गई। चरण स्पर्श करते हैं माता जी आपको और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगी, और उम्मीद ये भी करते हैं कि आपका दर्शन हमको रोज़ाना प्राप्त होता रहेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि मैंने आपको मुद्दतों बाद देखा है। हालांकि अच्छे इंसान से आप दूर रहिए तो कम समय भी ज़्यादा पता चलता है। तो चलिए आपको एक छोटा सा काम दे दिया है, आवाज़ पहचाननी है कौन कौन से गायक कलाकार हैं और मार गई शब्द कितनी बार आया है ये आपको बताना है। आप अगर हमारे साथ मैसेज पर जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और अगर नहीं, आप हमको अगर रेडियो से सुन रहे हैं, फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, तो आपका दूरभाष क्रमांक है 63 93 31 64 29। जी हाँ, तो अब आपकी परीक्षा होती है शुरू, देखते हैं कौन होता है विजेता। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। फिलहाल ये मानसिक अभ्यास आपके कदमों में।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा।

जी हाँ, तो अब भाई प्रश्न था आपके सामने और देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई उत्तर आया अभी तक। जी हाँ, अभी तक हमको लगता है भाई वाह, नितिन सिंह, किशोर कुमार और आशा भोसले जी बिल्कुल, और भी कोई हैं। नितिन सिंह जी हैं, प्लीज प्लेसर जी, हाँ आज मैं उदास हूँ, नाइस जी हाँ, लेकिन प्रश्न का उत्तर देखिए भाई अभी कौन देता है। प्रोड्यूसर ने बहुत सारे स्टार्स दे दिए हैं, कायनात जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भाई, क्या बात है, और अपनी आंखों से इजहार करते हैं आपकी मोहब्बत का एतबार करते हैं हम ठहरे मिश्रा जी, पीछे हटने वालों से नहीं। हाँ सही सुना आपने, आपसे प्यार करते हैं, क्या बात है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट टाइम ज्वाइन विथ रेफरेंस ऑफ आर जे सोनी जी, जी बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत गलत और बहुत सही दोनों वक्त पर, अकेला दिल दिल को लगी बीमारी, क्या बात है भाई। और आर जे अमन भी हैं रेडियो हॉट स्टार, थैंक यू भाई। और इसके पश्चात खुश रहना है तो दिल को पत्थर बना लो, क्योंकि मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो पिघल कर चले जाओगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, नकाब चेहरे पर उनके सजे थे कुछ इस तरह की, हम भूल ही गए थे कि फरेब भी कभी प्यार की चादर ओढ़ सकते हैं। हमको छोड़कर विपिन जी के साथ बात कर रही है, क्या बात है, क्या बात है भाई जी। और इसके पश्चात भाई उत्तर जी, सविता सच ने उत्तर दिया है, चंचल मुकेश लता जी, हाँ नरेंद्र चंचल भी हैं, क्या कोई और सिंगर आपसे छूट नहीं रहा है भाई। अश्विन मिश्रा जी हैं जी, आज उन्होंने कहा है लगभग 32 बार। प्रीति शुक्ला जी ने कहा है 64 या 65। आशा भोसले, किशोर कुमार, आशु मिश्रा जी हैं 36 जी हाँ, अब फिर से भाई, ओहो क्या बात है, मतलब अभी सही उत्तर कायदे से नहीं आया है। और नाम तो सुना ही होगा भाई, बिल्कुल सुना होगा, और आपने कह दिया है तो बिल्कुल सुन लिया होगा। एक बार आपके लिए ये प्रश्न आज छोड़ कर जाते हैं भाई, हमको तो लगता है अभी तक किसी का उत्तर नहीं सही है। कुछ लोग आसपास पहुंचे हैं लेकिन कुछ ज़्यादा हो गया है, कुछ थोड़े से पीछे रह गए हैं, फिर से सुनिएगा, हो सकता है सिंगर कोई आपसे मिस हो गया हो, शुरुआत में किसी ने गाया हो, बीच में किसी ने गाया, एकाद सिंगर आपसे मिस हुए हैं। और मार गई शब्द कितनी बार आया है ये एग्जैक्ट अभी तक इसका उत्तर नहीं आया है, तो उम्मीद है कि इसका उत्तर हमको मिल जाएगा जी। फिलहाल चलते हैं जी, हाँ ये तो आपका एक मानसिक जो है वो श्रम हमने लिया, और अब जब सहारे नहीं मिलते तो इंसान फिर सहारा ढूंढता है, और जो सबसे बड़ा सहारा होता है, आइए सर सवाल पूछे हम, सवाल नहीं सुना जी, हाँ हमने सवाल किया था कि महंगाई मार गई, अभी एक कव्वाली चली थी इस पर, और इसके दो प्रश्न थे। पहला प्रश्न ये था कि इस गीत को कौन कौन से गायक कलाकारों ने गाया है, और दूसरा प्रश्न था कि मार गई शब्द कितनी बार आया है, दो प्रश्न थे, और पूरा जवाब यानी पूरे सिंगर के नाम और मार गई शब्द कितने बार आया, ये अभी तक उत्तर नहीं मिल पाया है। हम उम्मीद करेंगे कि इस गीत को आप दोबारा सुनेंगे, इस कव्वाली को आप दोबारा सुनेंगे और फिर उत्तर देंगे। और जी हाँ, जब कोई सहारा नहीं होता तो एक सहारा होता है, किसका, जी हाँ आइए आपको बताते हैं इसका, सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। कार्यक्रम चल रहा है बाहर ये गज़ल, और आइए अब चलते हैं उस ओर, जब कोई सहारा नहीं होता तब कौन सहारा होता है, जी हाँ सहारा वो होता है जिनकी बात हम इस गज़ल में कर रहे हैं।

जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। खजाने के साथ तैयार रहेगा, कल है कालीन प्रोग्राम। जी हाँ, आसमान वाले ने चाहा तो कल आपसे मिलेंगे ठीक 9:30 बजे यहीं पर कालीन प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।

0: जी हाँ भाई, गीता जी बहन जी ने सही उत्तर दे दिया, बिल्कुल 60 बार आया है जी, बिल्कुल 60 बार आया भाई। मुबारक हो भाई गीता जी के लिए, हम यहाँ से ताली बजा रहे हैं। मार गई शब्द 60 बार आया, बिल्कुल सही उत्तर आपका। अभी मैंने आपका मैसेज देखा और तब मुझे पता चला कि आपने उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार।
1: हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु, आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, रियल कंपेनियन। आपके पापा कहीं चले गए हैं, फोन पर जैसे ही पारस ने ये सुना छनाक से उसके हाथ में पकड़ा पानी का ग्लास नीचे गिर गया। क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं, पापा कहां चले गए और ये कोई उम्र है क्या कि वो गुम हो जाएंगे? एक ही सांस में वो सारे सवाल पूछ गया। वो बिल्कुल हतप्रभ था, हैरानी के सारे बुलबुले फट फट कर उसके सामने फूटने लगे। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है उसके साथ, हद होती है मजाक करने की भी। आपके पापा का नाम अजीत है ना, आप पारस बोल रहे हैं ना? फोन पर जो व्यक्ति था उसे पारस की प्रतिक्रिया सुन लगा कि कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं मिल गया है। हाँ हाँ, मैं पारस ही बोल रहा हूँ, पर आप कौन बोल रहे हैं और किस तरह से आप बात कर रहे हैं? क्या हुआ पापा को, वो ठीक तो है ना? पारस को अब चिंता होने लगी थी। मैं बैंगलोर के ओल्ड एज होम का मैनेजर वर्मा बोल रहा हूँ। आज सुबह से आपके पापा कहीं चले गए हैं ओल्ड एज होम से। चले गए हैं से आपका क्या आशय है, वो कहाँ जाएंगे? अब हो सकता है यहाँ घर पर आ रहे हों, थोड़े मनमौजी प्रकृति के हैं इसलिए आपको बिना बताए दिल्ली आने के लिए निकल गए होंगे। उनके यहाँ आते ही मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा मैं आपको। पारस अब थोड़ा सहज हो गया था, बल्कि उसे हंसी आ रही थी। पापा की हरकतें भी ऐसी होती है ना। अपनी मर्जी से वो माँ के मरने के बाद ओल्ड एज होम में रहने चले गए थे। अभी भी अच्छे खासे फिट थे और अपनी जिंदा दिली की वजह से सबके मन में जगह बना लेते थे। पेंशन भी मिलती थी इसलिए उन्हें पैसों की भी कोई तंगी नहीं थी। पारस तो चाहता ही नहीं था कि वो ओल्ड एज होम में जाकर रहें, पर वो किसी की सुनते ही कहां थे। वो और उसकी पत्नी रमा को उनके जाने से बहुत दिक्कत भी होने लगी थी। बच्चों को संभालने के लिए मेड थी, पर पापा घर पर होते तो वे बेफिक्र रहते कि कोई तो अपना घर पर है मेड पर नजर रखने के लिए। लेकिन अपनी शर्तों पर जीने वाले पापा ने तय किया कि वो कैसे जीना चाहते हैं। पारस बहुत जोर जबरदस्ती कर नहीं सकता था क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम थी, और वैसे भी पापा जो ठान लेते थे वो करके ही रहते थे।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और मेरी आज की कहानी है रियल कंपेनियन। अब तक आपने सुना, पारस के पास ओल्ड एज होम से फोन आया कि उसके पापा अचानक कहीं चले गए हैं। पहले तो पारस बहुत परेशान हुआ, फिर उसे पापा का नेचर याद आया। हमेशा मन मौजी, अपने मन का करने वाले, किसी की भी ना सुनने वाले। तब उसे हंसी आ गई और थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद मन किया होगा घर आने का और चल पड़े होंगे। अब आगे, नहीं नहीं, वो अकेले नहीं गए हैं। इसी ओल्ड एज होम में रहने वाली मिसेस वंदना जोशी को साथ लेकर गए हैं। जाने का मतलब ही होता है किसी के साथ जाना। आप समझ रहे हैं ना मैं जो कहना चाहता हूं? ओल्ड एज होम के मैनेजर के स्वर में हिचकिचाहट थी। 65 साल का बुजुर्ग एक 60 साल की स्त्री को लेकर कहीं चला गया था। बात तो अजीब थी, साथ ही शर्मिंदगी की भी थी। ये क्या बोल रहे हैं आप? कुछ तो सोच समझ कर बोले। पापा भला किसी लेडी को अपने साथ लेकर क्यों जाएंगे? पारस की आवाज में कठोरता थी। फोन पर उसे इतने तेज आवाज में बात करते देख उसकी पत्नी रमा भी उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। उसे देख पारस ने फोन को स्पीकर पर डाल दिया। मिसेस जोशी भी सुबह से दिखाई नहीं दे रही हैं। उधर से आवाज आई, और आपने मान लिया कि पापा उन्हें अपने साथ लेकर कहीं चले गए हैं? हद करते हैं वर्मा जी आप। हो सकता है मिसेस जोशी कहीं बाहर गई हो या जो भी हुआ हो उनके साथ, पर आप क्यों ऐसे जोड़ तोड़ कर रहे हैं? पारस झल्ला उठा था। उधर से मैनेजर साहब ने सफाई दी। असल में वो काफी दिनों से उनके चर्चे यहां हो रहे थे। दोनों अक्सर साथ साथ वक्त बिताया करते थे, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ इतना अच्छा लगता है कि उनका बस चले तो उन दोनों के बीच शायद इंटिमेसी इसीलिए चले गए हों। वैसे भी आपके पापा ना लीक से हटकर काम करते हैं। उनके जैसा मस्त बुजुर्ग हमारे ओल्ड एज होम में इससे पहले कोई दूसरा नहीं आया। सच तो यह है कि उन्होंने नए नए तौर तरीके लागू करके हमारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी थी। 80 साल के वृद्ध तक उनकी सोहबत में बिगड़ने लगे थे। मिसेस जोशी डिवोर्सी हैं और प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई हैं। उनका बेटा विदेश में रहता है, इसीलिए वो अकेलेपन से बचने के लिए यहां आकर रहने लगी थी। अब मैं उनके बेटे को क्या जवाब दूं? वर्मा थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। उसे अपनी संस्था का नाम खराब हो जाने की ज्यादा चिंता हो रही थी। उनके बेटे को तो आप बाद में जवाब देना, पहले मुझे बताएं कि अगर ऐसा कुछ पापा और उनके बीच चल रहा था तो आपने इसकी बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं पापा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता। इतना बोलकर पारस ने गुस्से में फोन का रिसीवर पटक दिया। फोन बंद होते ही रमा बोली, तुम्हारे पापा जो ना करें वो कम है, अब ये क्या सूझी है उन्हें इस उम्र में किसी लेडी को लेकर चले गए? छी, कितनी शर्म की बात है, लोग क्या कहेंगे? मैं अपने मायके वालों को क्या बताऊंगी? ही इज इम्पॉसिबल, बूढ़े हो गए हैं पर जोश में कोई कमी नहीं है। मुझे तो डर है कि पापा कहीं उस मिसेस जोशी से शादी ना कर लें, प्रॉपर्टी में फिर उसका भी हिस्सा हो जाएगा। और क्या पता ये जानने के बाद कि पापा के पास बहुत प्रॉपर्टी है उसी ने उन्हें फंसा लिया हो।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और मेरी आज की कहानी है रियल कंपेनियन। अब तक आपने सुना पारस के पास ओल्ड एज होम से फोन आया कि उसके पापा ओल्ड एज होम की किसी लेडी को लेकर कहीं चले गए हैं। सब परेशान थे कि आखिर उन्होंने क्या किया है, कहाँ गए हैं। पारस और उसकी पत्नी को चिंता हो रही थी बदनामी की और इस बात की कि कहीं उस लेडी ने प्रॉपर्टी के चक्कर में तो पापा को नहीं फंसाया। अब आगे रमा पारस से बोली, ये मत भूलो पारस कि वो खुद प्रिंसिपल रह चुकी हैं, इसीलिए फाइनेंशियली वो भी स्ट्रांग होंगी। यहां बात पैसों की नहीं है, बात तुम्हारे पापा के फितूर की है। बेचारी मिसेस जोशी, वो बेकार ही सवालों के घेरे में आ जाएंगी। समाज तो औरत को ही दोष देता है। तुम अपने पापा को फोन मिलाते रहो, कभी तो मिलेगा, न जाने कहां चले गए हैं। रमा के अंदर का कसैलापन उसके चेहरे पर भी आने लगा था। बैंगलोर से टैक्सी लेकर निकले पारस के पापा और मिसेस जोशी रास्ते में नाश्ता करने के लिए एक ढाबे पर रुके। आगे कुछ सोचा है या ऐसे ही मुझे लेकर चल दिए हैं? मिसेस जोशी ने थोड़े शरारती अंदाज में कचौड़ी खाते हुए बोला। ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, जिंदगी में जब भी जैसे पल आए उन्हें जीना चाहिए। कुछ सोचा तो खास नहीं है, पर यकीन मानिए आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा। आपका साथ मैं नहीं खो सकता। पत्नी के गुजर जाने के बाद आप ही हैं जिनके साथ मैं अपनी हर बात शेयर करते हुए सहज महसूस करता हूँ। आई थिंक आई नॉट ओनली लाइक यू बट आई लव यू ऑल्सो। हंसिएगा नहीं, प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। वैसे भी किसी के साथ किसी भी उम्र में अच्छा लग सकता है, मेरी इस बात से तो आप भी सहमत होंगी। कॉफी का सिप लेते हुए पारस के पापा ने मिसेस जोशी की आंखों में झांकते हुए कहा। वंदना जोशी के गाल लाल हो गए, एक सिरहन सी शरीर में फैल गई। अजीत का चेहरा और शरीर भी कसा हुआ था। एकदम टिप टॉप रहने वाले अजीत इस समय लाल टी शर्ट और जीन्स में बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे। उनके गोरे हाथों पर नजर गई तो उनके अच्छे से तराशे हुए नाखूनों को देख वंदना को रश्क हो आया। उनसे मुलाकात और अपनेपन की लहर चलने के बाद

के जीवन में बदलाव आ गया था। उन दोनों के बीच एक पुल इसलिए भी बना क्योंकि दोनों ही पढ़ने का शौक रखते थे और फिल्मों से लेकर राजनीति और सामाजिक विसंगतियों से जुड़ी बातों पर वाद विवाद ही नहीं विश्लेषण करने में सक्षम थे। जब वे बात करते तो बाकी लोग एकदम मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते ही रहते। बागवानी का शौक भी उनके बीच का कॉमन फैक्टर था और कभी कभी दोनों बैडमिंटन भी खेलते थे। उन्होंने अपने कुर्ते की सिलवटें बेवजह ठीक की। वो सावली जरूर थी पर उनके नए नक्श की तारीफ सभी किया करते थे। शादी के बहुत सालों तक जब तक उनके पति के किसी दूसरी स्त्री से संबंध नहीं बने थे उनकी सुंदरता पर शेर सुना दिया करते थे। तलाक के बाद वो बिखर गई थीं। हर तरह से सक्षम होने के बावजूद उन्हें ये बात खलती थी कि आखिर उनमें कमी क्या है जो पति ने दूसरी स्त्री के लिए उन्हें छोड़ दिया। बेटे ने उन्हें अपने साथ विदेश ले जाने से मना कर दिया क्योंकि उसकी फिरंगी बीवी को इंडियन सास बर्दाश्त नहीं। इसीलिए अपनी कोठी के एक पोर्शन को किराए पर देकर वो ओल्ड एज होम में रहने ये सोचकर आई थी कि शायद कुछ चेंज हो जाए और अपने हम उम्र लोगों के बीच वक्त काटने से वो अपने दुख से बाहर निकल आए। हालांकि उनका तलाक हुए 7 साल हो गए थे फिर भी वो अपनी यादों को तकिए पर रखकर जब भी लेटती आंसू निकल ही जाते थे।

0: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और मेरी आज की कहानी है रियल कंपेनियन। अब तक आपने सुना पारस के पापा ओल्ड एज होम से किसी लेडी के साथ सबको बिना बताए कहीं चले गए थे। पारस और उसकी वाइफ परेशान थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां गए, और उन्हें अपनी इज्जत की भी बहुत चिंता सता रही थी। उधर पारस के पापा और वंदना जी रास्ते में एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। अब आगे आसान नहीं होता रिश्तों के समीकरणों को समझना। हमेशा अंदर एक उथल पुथल मची रहती है और खुद को ही दोष देते हुए बस अपने अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं। खालीपन और निराशा को ही जीवन का एकमात्र पर्याय मान खुद पर ही जुल्म करते रहते हैं, पर जीना छोड़ देना तो जीते जी खुद को मारने जैसा होता है। अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो जिंदगी बोझ बन जाएगी, और हमारे ही बच्चे जब हमारा बोझ उठाने को तैयार नहीं तो सोचिए क्या होगा तब हमारा। वंदना जी, जीने के लिए खुद ही फूल चुनने होंगे, वरना काटे तो हर पगडंडी पर बिखरे मिलेंगे। मैं तो इसीलिए मस्त रहता हूँ और खुश रहता हूँ। अजीत की बातों से जैसे वंदना अपनी पीड़ा के दलदल से बाहर निकल आई थी। ठीक ही तो है, डिप्रेशन में या अपने प्रति लापरवाह रहने में सिर्फ बीमारियां ही घेरेंगी। तभी से वो खिलखिलाकर हंसने लगी थी, और जब अजीत ने कहा कि वो उनके साथ आगे की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो वो उनके साथ निकल पड़ी थी। यहाँ पास ही एक शहर में मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड रहती है, उसी के घर थोड़े दिन रहेंगे फिर अपना बसेरा बना लेंगे। कुछ समय लगेगा सब कुछ व्यवस्थित होने में। वंदना जी ने अजीत का हाथ ये सुन हल्का सा दबा दिया था, मानो आश्वस्त कर रही हो कि सब ठीक है। आपका बेटा न जाने कैसे रिएक्ट करे, वंदना जी बोली। वो तो बस इसी बात से परेशान होगा कि कहीं आप मेरी प्रॉपर्टी ना हड़प लें। अजीत जोर से हंसे। फिर तो उससे कह दो कि मेरी प्रॉपर्टी में भी अब उसे हिस्सा मिल जाएगा, करोड़ों की है मेरी कोठी, वो निश्चिंत रहे। मिसेस जोशी भी ठहाका लगाकर हंस पड़ी, तो टैक्सी वाला हैरानी से पीछे मुड़कर देखने लगा। लोग क्या कहेंगे अजीत? वंदना जी की आंखों में शरारत थी। यही कि बुढ़े पर आशिक की चढ़ी है और बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। खबरदार, मुझे जो बूढ़ी कहा, और माशाल्लाह आप तो अभी बहुत जवान है। सारे रास्ते हैरान परेशान, टैक्सी वाले ने जब बताए रास्ते पर पहुंचकर टैक्सी रोकी तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाया और बोला, तो साहब जी अब आप दोनों शादी करेंगे? हम दोनों साथ रहेंगे, बस अभी तो यही सोचा है। बंधन और रिश्तों की मोहर लगाने से कहीं ज्यादा जरूरी है एक दूसरे का संग, साथ, प्यार और सम्मान देते हुए जिंदगी गुजारना। क्या काफी नहीं है? क्यों, ठीक है ना वंदना?
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं?
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है?
2: क्या है?

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और मेरी आज की कहानी है रियल कंपेनियन। अब तक आपने सुना, पारस के पास ओल्ड एज होम से फोन आया कि उसके पापा किसी लेडी को लेके यहां से बिना बताए कहीं चले गए हैं। पारस को चिंता होने लगी कि कहीं किसी ने प्रॉपर्टी के चक्कर में उन्हें फंसा तो नहीं लिया, और उसकी पत्नी को ये कि अब समाज में हमारी इज्जत का क्या होगा। उधर उसके पापा और वंदना जी इस बात को लेकर बड़े सुकून में थे कि उन्हें जिंदगी जीने का सही तरीका समझ में आ रहा है। जब उनकी किसी को फिक्र नहीं, बच्चे उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते, तो वो किसी के लिए क्यों खुद को कष्ट दें, खुद को सजा दें। रही प्रॉपर्टी की बात, तो बच्चों को उनसे जो लेना हो ले लें, बस उन्हें चैन से जीने दें। वो दोनों अजीत के एक दोस्त के घर पहुंचे ताकि कुछ दिन वहां रुक के आगे की प्लानिंग कर सके। अब आगे वो लोग गाड़ी से उतरे, घर की तरफ चल दिए। वंदना जी कुछ कहना चाहती थी, पर इससे पहले वो कुछ कहती, अजीत की दोस्त शालिनी घर से बाहर आ गई और उनका स्वागत करते हुए कहा, वेलकम माय ओल्ड बडी। उनके पीछे खड़े व्यक्ति को देख वंदना भौचक्की रह गई। मीट माय हस्बैंड, शालिनी ने जैसे ही कहा, वंदना जी को लगा जैसे उनका पूरा सर्वांग जड़ हो गया हो। अजीत जी ने वंदना जी के चेहरे पर छाई वेदना और पसीने की बूंदों को देख कसकर उनका हाथ थाम लिया। वो समझ गए थे कि वो व्यक्ति वंदना का पूर्व पति ही है। मीट माय फ्रेंड, कंपेनियन एंड वुड बी वाइफ। अजीत मुस्कुराए। उन्हें देख वंदना को लगा कि चारों तरफ केवल फूलों की चादर बिछी हुई है और भीतर उग आई उदासी को उन्होंने झटक दिया। And I feel I am on top of the world when he is with me. वंदना जी ने अपने एक्स हस्बैंड की आंखों में आंखें डालकर जवाब दे दिया। उनकी इस बात के जवाब में अजीत जी बोले, I am always with you, वंदना। अंदर आए शालिनी कि यहीं खड़े रखोगी? अजीत जी ने हाथ घुमाकर वंदना जी के कंधे पर रखा और उन्हें अपने करीब कर लिया। शालिनी के पति को अनदेखा करके वंदना जी अजीत जी के साथ घर में प्रवेश कर गईं। ये प्रवेश उनके नए जीवन की शुरुआत थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और मेरी आज की कहानी थी रियल कंपेनियन। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। नमस्कार दोस्तों, एक और भीगी रात, बारिश की वो धीमी फुहारे, खिड़की से टपकती बूंदें और दिल में उठती वो मीठी सी कसम। मैं हूँ आपकी सुकून, ठंडक, गर्मी, बरसात और हर मौसम और हर मिजाज की आपकी रेडियो साथी अनोखी। और आज भूले बिसरे गीत के इस खास मानसून स्पेशल में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे संगीत के सफर पर, जहां हर बूंद के साथ एक याद, एक झोंके के साथ एक तराना जुड़ा है, जो रात के सुरीले और भीगे भीगे मूड को समर्पित है। और दोस्तों, आपकी अनोखी ने तो आज के एपिसोड का नामकरण तक कर रखा है। हाँ जी, हमने नाम रखा है आज के एपिसोड का भीगी रातों के तराने, एक यादगार सफर। तो चलिए पहली बूंद के साथ सुनते हैं एक ऐसा गीत जो खुद बारिश की तरह हर दिल को छू जाता है। आज के शो का पहला सॉन्ग भीगी भीगी, हाँ जी भीगी भीगी क्या, भीगी भीगी रातों में। और ये सॉन्ग है आवाज से जिसको सजाया है आशा भोसले जी और किशोर कुमार ने। तो चलिए सुनते हैं ये नगमा। और उससे पहले आपको बता दूं कि इस नगमे को सुनते हुए इन ख्यालों में जरूर डूबिएगा। ख्याल कुछ यूं है, रात थी, बारिश थी और खामोशियां थी। रात थी, बारिश थी और खामोशियां थी, उसके साथ बिताई हर शाम की याद इन बूंदों में बह रही थी। वो भीगी हुई रातें सिर्फ मौसम नहीं थी, वो अधूरे ख्वाबों का गीत था। और दिल कह उठा, क्या
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, हल्की बरसातों में, कैसा लगता है।
0: जैसा भी लगता है आप खुद ही एंजॉय करिए ना इस गाने के माध्यम से।

तो अभी हमने एंजॉय किया ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि बताएंगे नहीं, चलिए एक प्रश्न की ओर रुख करते हैं और उसके बाद में थोड़ी गहराइयों में उतरते हैं। क्या आपने कभी भीगी किसी का इंतज़ार किया है, या किसी के साथ बैठकर खामोशी से बारिश को महसूस किया है? बस यही एहसास बनता है ये अगला नगमा, जिसका आनंद अभी आपने लिया। और अब सुनिए एक और तराना जो बारिश में भीगी एक मासूम सी लड़की की कहानी कहता है। सॉन्ग बताएंगे ना, उससे पहले थोड़ी सी और गहराई में उतरते हैं। एक लड़की जो भीगी भी है और शायद भीगी हुई और भागी हुई भी है, कहाँ से आई कहाँ जाएगी कोई पता नहीं, पर एक बात का पूरा पता है कि इस बारिश ने उसे और भी हसीन बना दिया है। एक ऐसी लड़की जो भीगी सी है, भागी सी है, हवा में लहराती एक कहानी सी है। उसकी आंखों में कुछ अनकहे पल हैं जो किसी मुलाकात का जिक्र करना चाहते हैं। जी हाँ, और वो सॉन्ग कोई और नहीं, वो सॉन्ग है एक लड़की भीगी भागी सी, और आवाज से इसको सजाया है किशोर कुमार जी ने। आइए चलिए सुनते हैं और लुत्फ़ में खो जाते हैं इस सॉन्ग के साथ।

सजन दूर था पर सावन पास था, बदन में जैसे हर बूंद के साथ उनके होने का एहसास था, सांसों में उनकी यादें और इस मौसम का जादू। अब अगला गीत कुछ शरारत लिए, कुछ अदाएं लिए आपसे मिलना चाहता है और गुनगुनाता है

ये वो सॉन्ग है जो बदन में सिहरन दौड़ा दे और असली सावन के जादू को याद दिला दे। मीठी सी तड़प और मिलन की दरकार के एहसास के साथ 1975 में आई फिल्म चुपके चुपके से लता मंगेशकर की आवाज का सुहाना सफर। हाँ जी, तो चलिए एंजॉय करते हैं मिलकर।

श्रोताओं, अब आपको ले चलते हैं उस गीत की ओर, जो गीत ना सिर्फ अपनी ओर खींचता है बल्कि बारिश को रुमानी बना देता है। और जब हवाएं चलती हैं और बारिश के साथ पत्तों की सरसराहट होती है, तब दिल गाता है। हाँ जी, दिल गाता है। क्या गाता है? सावन का महीना पवन करे शोर। इस गाने में ना जाने कितनी बार हमारे हीरो ने, यानी सुनील दत्त साहब ने, हमारी अदाकारा के अल्फाजों को सुधारने की कोशिश की है, लेकिन हम बिना सुधारे ही गा सकते हैं? गा नहीं सकते, दो साथ में एंजॉय तो कर ही सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इस गीत की ओर। एक ऐसा गीत जो पनघट की हंसी, झूले की टुनक, सावन का शोर जैसे दिल की धुन को साथ ले चले। पवन बोले पेड़ गाए, ये गीत गांव के हर आंगन में छाए। शोर मूवी से किशोर दा और लता जी की आवाज में ये एवरग्रीन सॉन्ग।

अब मैं आपसे जिस गीत की बात करने वाली हूँ, उस गीत में छुपा है गांव का वो सौंदर्य, वो कच्ची सड़कें, वो पनघट, वो बारिश के संग झूमती प्रकृति, जो मन के भीतर मयूरी बन नाच उठती है। और जब बात झूमने की हो तो ये आया सावन झूम के, गीत कैसे पीछे रह सकता है। झूले पत्तों पे झूमे, बच्चे गलियों में घूमे, दिल ने फिर से सपना बुना, आया सावन झूम के, प्यार हर दिल में चुपके से घूमे, के आया सावन झूम के।

0: तो अभी हमने इस गीत के माध्यम से उस पल को महसूस किया जो सावन का मौसम जैसे ही आता है, अपने साथ बचपन की यादें, पहली बारिश, भीगे पैर और वो नाचते हुए घर लौटना, सब कुछ लौटा आता है। अब एक ऐसे मस्ती भरे गीत की तरफ चलते हैं जिसमें दिल धड़कता है और कहता है, रामा रामा गजब हुई गवारे, हाल हमरा अजब हुई गवारे। हाँ जी, आज तो दिल सच में सावन बना बैठा है, ये ना जाने क्या हुई गवा है, ना जाने सावन में कौन सा जादू है, हर कोई दीवाना, हर चेहरा बावला बन बैठा है। तो चलिए मोहम्मद रफी साहब की और साथ ही साथ में लता जी की आवाज में सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।
1: हाय राम।

0: बूंदों की ताल पे झूमे हैं अरमा, हर एक बूंद में छिपा है एक गुमनाम अंजाम। रिमझिम राग मन का साज, बारिश ने छेड़ा वो मीठा अंदाज। क्या गजब बात है, बारिश और मस्ती एक साथ आ जाए तो बस दिल भीग जाता है। और अब एक गीत जिसमें बारिश मन की हर तार को छूती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों की हर लय से निकले सुर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, बन जाते हैं हमारे खुश होने का कारण, जिसमें बरखा बहार के साथ आती है और बूंदे अपनी फ्रेंड रिमझिम जी के साथ, जिसको अपनी आवाज के जरिए मिलाने का काम किया है लता मंगेशकर जी ने। तो चलिए हम भी मिल लेते हैं इस प्यारे से गीत से।
1: ओ सजना।

घटाएं घिरी थी जैसे यादें मुड़ी हों, सांवली सी वो शाम जिसमें उसके कहे बिना सब कह दिया था मैंने, और दिल ने बस इतना ही कहा। क्या कहा? ओ घटा सांवरी थोड़ी थोड़ी बावरी, तो बिना देरी किए चलिए एंजॉय कर लेते हैं ये वाला सॉन्ग, जिसमें आप याद करेंगे अपने उन दिनों को जब किसी के साथ में आपने एक प्यारी सी शाम बिताई होगी।

इतने सारे सॉन्ग्स तो हमने एंजॉय कर लिए जी हाँ मॉनसून स्पेशल वाले शो में। और मॉनसून स्पेशल शो मैंने इसलिए रखा था क्योंकि एक जो सॉन्ग है वो मेरे जहन में यूं आया था कि हमने किसी से फरमाया कि जनाब हमको थोड़ा सा वक्त चाहिए आपका, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है तो थोड़ा सा वक्त तो बनता है ना आपके साथ में, बिल्कुल कॉफ़ी बनती है, चाय बनता है और थोड़ा घूमना शूमना भी बनता है। लेकिन जनाब ने इनकार कर दिया, और इनकार करने का कारण वही जो आमतौर पर हर एक महापुरुषों का होता है, नॉर्मल पुरुष तो ना नहीं करते हैं। हाँ जी, तो उन्हीं में से थे वो जिनसे हमने दरकार की। लेकिन जब हमको ये आइडिया हमारे जहन में आया तो हमने कहा कि इस सॉन्ग को भी आप तक पहुंचाना जरूरी हो गया है। और इस सॉन्ग के जो बोल हैं वो कुछ यूं हैं, हाँ हाँ हाँ वही वाला सॉन्ग कि तेरी दो टकिया दी नौकरी पे मेरा लाखों का सावन जाए। वैसे सावन केवल लाखों का नहीं होता है जनाब, इतना कीमती होता है ना कि बस उसका कोई भी हम पेमेंट नहीं कर सकते। फिलहाल बढ़ते हैं इस सॉन्ग की ओर। जी हाँ, रोटी कपड़ा और मकान मूवी का ये उम्दा वाला सॉन्ग एवरग्रीन सॉन्ग, चलिए मिलके एंजॉय करते हैं।

तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रेडियो गैनेस्ले 89.6 एफएम पे अपना फेवरेट वाला शो जिसका नाम है भूले बिसरे गीत, जहाँ पे गीत तो होते हैं लेकिन उस दौर के, उस जमाने के, जो आपको अपने तक बुला ही लेते हैं और हम कहीं जाके गुम से हो जाया करते हैं। और आज का सफर यहीं पे हमको कहता है कि थोड़े से थम जाते हैं ताकि फिर से हम आपसे आके किसी नए सफर पे आपको ले चलें। आज की ये भीगी रात और ये भूले बिसरे तराने उम्मीद है आपके दिल को भी भीगो गए होंगे। मैं आरजे अनोखी अब लेती हूँ आपसे इजाजत, लेकिन जाते जाते आज कहूंगी, हर फुहार में छिपा होता है एक जज्बात, हर फुहार में छिपा होता है एक जज्बात, और हर पुराने गाने में हमारी अधूरी बात। तो ये अधूरी बात हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन बतौर तोहफा ये वाला सॉन्ग स्पेशली आपके लिए, जो कि बहुत बहुत बहुत बहुत आला है। और इसी के साथ, भीगी बातों के साथ, शुभ रात्रि और प्यार भरी बारिश की शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी वक्त और एक नए चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
8: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

मगर